मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़, डीटीएच, डीआरएम 1233 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 18वीं तिथि। तदनुसार दिनांक 8 मई सन 2026। सुबह के 5:57 होने वाले हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

0: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। 6 बजने वाले हैं। अब हिंदी में समाचार होंगे जिसे हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक हो गया है। ये मात्रा बफर स्टॉक यानी अनिवार्यता के समय की आवश्यक मात्रा से लगभग 3 गुना अधिक है। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गेहूं और चावल के सुरक्षित भंडार से देश में कल्याणकारी योजनाओं तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित हो रही है। अधिक खरीद, अच्छी फसल और किसानों की पर्याप्त सहायता से खाद्य सुरक्षा, किसानों के हित तथा सुरक्षित भविष्य के लिए देश की प्रतिबद्धता मजबूत हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की खाद्य सुरक्षा लगातार बढ़ रही है। इस बीच सरकार ने कहा है कि 6 मई तक मंडियों से 78,96,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई। पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ा 75,63,000 मीट्रिक टन था। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि कम आवक के बावजूद इस साल गेहूं की खरीद पिछले साल से बेहतर है। मंत्रालय ने यह स्पष्टीकरण उन खबरों के जवाब में दिया है जिनमें दावा किया गया था कि मंडियों में गेहूं की अधिकता जैसी स्थिति है। मंत्रालय ने कहा कि पंजाब में अब तक लगभग 122 लाख मीट्रिक टन गेहूं मंडियों में आया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में वाणिज्य विभाग और उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक में निर्यात और निवेश बढ़ाने, नए निर्यातकों के लिए आवश्यक अवसर तैयार करने और वैश्विक बाजारों में नई संभावनाएं तलाशने पर चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन की तैयारियों के बीच विधानसभा को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया है। राज्यपाल आरएन रवि ने संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मौजूदा विधानसभा को भंग करने का आदेश जारी किया। इस बीच गृहमंत्री अमित शाह आज कोलकाता जाएंगे। वे नव निर्वाचित भाजपा विधायकों के साथ बैठक में शामिल होंगे, जिसके बाद पार्टी के विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। समारोह की तैयारियों के लिए गुवाहाटी में एक उच्चस्तरीय बैठक हुई। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। उधर तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी तमिलक वेत्री कड़गम पार्टी का सरकार गठन के लिए बहुमत सिद्ध करने के मुद्दे पर गतिरोध बना हुआ है। 234 सदस्यों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 118 विधायकों की आवश्यकता है। विधानसभा चुनाव में अभिनेता विजय की टीवीके पार्टी ने 108 सीटें जीती हैं। इस बीच केरल में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय की घोषणा करेगी। वियतनाम के राष्ट्रपति तोलाम ने कहा है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत

0: वियतनाम के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का एक बड़ा अवसर है। मुंबई में भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री लाम ने कहा कि पहले भी दोनों देशों ने आपसी सहयोग में कई चुनौतियों का सामना किया है। उन्होंने भारतीय कंपनियों को वियतनाम में निवेश के लिए आमंत्रित किया। वियतनाम के राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पूर्व वियतनामी राष्ट्रपति हो ची मिन और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं की दूरदृष्टि पर आधारित हैं। सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच रोक दी है। इससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हॉर्मुज जल डमरों मध्य में जहाजों पर निगरानी रखने की अपनी योजना छोड़ने पर बाध्य होना पड़ा है। दो अमरीकी अधिकारियों ने इस खबर की पुष्टि की है। सऊदी अरब के इस कदम से खाड़ी देशों को लेकर अमरीकी रणनीति को झटका लगा है। आकाशवाणी की स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज सुबह राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया गया है। लगभग 3.5 किलोमीटर की ये दौड़ आकाशवाणी भवन से शुरू होकर कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व भवन होते हुए आकाशवाणी भवन में ही संपन्न होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन सहित प्रसार भारती में कार्यरत सभी कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्य इस मैराथन में भाग ले सकेंगे। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला शाम 7:30 बजे कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें। इस कार्यक्रम में मृदा में जीवांश का महत्व, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं दिनेश कुमार सिंह।
2: किसान भाइयों, आज हम मृदा में जीवांश के महत्व के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। जीवांश क्या है और इनसे हमारे पेड़ पौधों को क्या लाभ है? इस मिट्टी में बहुत सी वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे उगते हैं तथा बहुत से जीव जंतु भी इस पर आश्रित हैं। जीवन के अंत में ये जब मिट्टी में मिलते हैं तो सड़ गल कर जैवांश बनाते हैं। वास्तव में जैवांश का दायरा बहुत बड़ा है। ये ज़मीन को उपजाऊ बनाते हैं तथा पौधों के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। ये जैवांश कई तरह के होते हैं और ज़मीन में इनकी मात्रा भिन्न भिन्न होती है। जब ये विघटित होते हैं तो अनेक पोषक तत्व इनसे बनते हैं जो कि पौधों के लिए उपयोगी होते हैं। आइए अब यह जानें कि ये जीवांश किन किन स्रोतों से ज़मीन में आते हैं। जीवांश के सबसे बड़े स्रोत हमारे पेड़ पौधे हैं। जब हम कोई फसल लेते हैं तब उनकी जड़ों तथा तनों का कुछ भाग ज़मीन में ही रह जाता है जो कि ज़मीन में मिलकर सड़कर जीवांश बनाता है। दूसरा, जब पौधा बढ़ता है तो इनकी जड़ों से एक रिसाव होता है, यह भी एक प्रकार का जीवांश है। जीवांश का तीसरा एवं मुख्य स्रोत है गोबर एवं कंपोस्ट की खाद। इन्हें जब हम मिट्टी में डालते हैं तो इनका विघटन होता है और फिर विभिन्न पोषक तत्व उपलब्ध हो जाते हैं। हम मिट्टी में हरी खाद भी डालते हैं। इसके अतिरिक्त जहाँ जानवर बांधते हैं वहाँ का बिछावन मलमूत्र से सड़कर जीवांश का निर्माण करता है। जो भी जीव जंतु जानवर इस जमीन पर पलते बढ़ते हैं वह भी अपनी जीवन लीला समाप्त करके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में मिट्टी में ही मिलते हैं और जीवांश कहलाते हैं। अगर हम मिट्टी में जीवांश की मात्रा बढ़ाते हैं तो इसका मतलब ये कि हम मिट्टी की उर्वरता बढ़ा रहे हैं। जीवांश से अनेक फायदे हैं। इनसे पहला लाभ यही है कि उपयोगी पोषक तत्वों की उपलब्धि होती है। जब मिट्टी में जीवांश पदार्थ डाले जाते हैं तो मिट्टी में उपस्थित सूक्ष्म जीवों के द्वारा इनका विघटन होता है। फलस्वरूप विभिन्न पोषक तत्व जमीन में उपलब्ध होकर पौधों को प्राप्त होते हैं। मिट्टी में बहुत से तत्व होते हैं। अगर इनमें जीवांश पदार्थ नहीं डाले जाते तो ये नष्ट जल्दी होते हैं और यदि जीवांश पदार्थ रहते हैं तो ये इन तत्वों के साथ मिलकर ऐसा पदार्थ बनाते हैं जो नष्ट नहीं होने पाते और मिट्टी में बने रहते हैं। मृदा जीवांश मिट्टी की भौतिक दशा में भी सुधार होता है, उसकी संरचना में सुधार होता है तथा उसमें हवा पानी की उचित मात्रा रहती है। यदि ज़मीन में जीवांश की पर्याप्त मात्रा है तो

0: उसमें मौजूद सूक्ष्म तत्वों की क्रियाशीलता भी बेहतर होती है, जो कि अधिक उपज के लिए जरूरी होता है। इनके प्रयोग से मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ती है। अगर हम इनका प्रयोग करें तो ज़्यादा बलुअर मिट्टी में चिपकने की शक्ति एवं ज़्यादा चिकनी मिट्टियों में भुरभुरापन आता है। हाँ, अगर मिट्टी में जीवांश की कमी है तो सचेत हो जाएं, उसमें गोबर की खाद डालें, कंपोस्ट की खाद डालें, हरी खाद डालें, या कुछ नहीं तो खेत में भेड़ ही बैठाएं, लेकिन करें कुछ ज़रूर। अगर आप फसल चक्र अपनाते हैं तो एक आदर्श फसल चक्र के अनुसार उसमें दलहनी फसलों का समावेश करें, इससे भी कुछ जीवांश की पूर्ति होगी। अगर आपके खेत में फसलों के अवशेष पड़े हैं तो उन्हें आप बाहर निकालने की कोशिश न करें और न उन्हें जलाकर नष्ट करें, बल्कि जहाँ तक संभव हो उसे उसी खेत में सड़ा दें। ये जीवांश ही मिट्टी का भोजन है। अगर मृदा में जीवांश रहता है तो उसका कटाव भी कम होता है, क्योंकि ऐसी मिट्टी के कण एक दूसरे से चिपके रहने के कारण अलग होकर बह नहीं पाते। अंत में हम यही कह सकते हैं कि मृदा में जीवांश का वही महत्व है जो कि शरीर में खून का है।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बातें, जिसमें मृदा में जीवांश का महत्व इस विषय पर जानकारी दे रहे थे दिनेश कुमार सिंह। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। 6:10 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम आराधना। माँ दुर्गा शक्ति, करुणा और कृपा की प्रतीक हैं। उनकी आराधना से आत्मा को अपार शक्ति मिलती है।

कर्ता करे न कर सके, शिव करे सो होय। तीन लोक नौखंड में महाकाल से बड़ा न कोई।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। आज के कलाकार थे संजय तलवार, नरेंद्र चंचल और अनूप जलोटा। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। 6:25 हुए हैं। लीजिए सुनिए गांधी चर्चा, बापू की आत्मकथा, सत्य के प्रयोग का धारावाहिक पाठ। वाचन एवं प्रस्तुति है अरुण पांडे की।

गांधी चर्चा कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं बापू की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का धारावाहिक पाठ। आज सुनिए इसकी 128वीं कड़ी।

जब मैं पहाड़ से दिखने वाले महात्मा मुंशी राम जी के दर्शन करने और उनका गुरुकुल देखने गया तो मुझे वहां बड़ी शांति मिली। हरिद्वार के कोलाहल और गुरुकुल की शांति के बीच का भेद स्पष्ट दिखाई देता था। महात्मा ने मुझे अपने प्रेम से नहला दिया। ब्रह्मचारी मेरे पास से हटते ही न थे। रामदेव जी से भी उसी समय मुलाकात हुई और उनकी शक्ति का परिचय मैं तुरंत पा गया। यद्यपि हमें अपने बीच कुछ मतभेद का अनुभव हुआ, फिर भी हम परस्पर स्नेह की गांठ से बंध गए। गुरुकुल में औद्योगिक शिक्षा शुरू करने की आवश्यकता के बारे में रामदेव जी और दूसरे शिक्षकों के साथ मैंने काफी चर्चा की। मुझे गुरुकुल छोड़ते हुए दुख हुआ। मैंने लक्ष्मण झूले की तारीफ बहुत सुनी थी। बहुतों

उन्होंने मुझे सलाह दी थी कि ऋषिकेश गए बिना मैं हरिद्वार न छोड़ूं। मुझे वहां पैदल जाना था, इसलिए एक मंजिल ऋषिकेश की और दूसरी लक्ष्मण झूले की थी। ऋषिकेश में अनेक सन्यासी मुझसे मिलने आए थे। उनमें से एक को मेरे जीवन में बड़ी दिलचस्पी पैदा हुई। फिनिक्स मंडल मेरे साथ था। उन सबको देखकर उन्होंने अनेक प्रश्न पूछे। हमारे बीच धर्म की चर्चा हुई। उन्होंने देखा कि मुझमें धर्म की तीव्र भावना है। मैं गंगा स्नान करके आया था, इसलिए शरीर खुला था। मेरे सिर पर शिखा और जनेऊ न देखकर उन्हें दुख हुआ और उन्होंने मुझसे कहा, आप आस्तिक होते हुए भी जनेऊ और शिखा नहीं रखते हैं, इससे हमारे समान लोगों को दुख होता है। ये दो हिंदू धर्म की बाह्य संज्ञाएं हैं और प्रत्येक हिंदू को इन्हें धारण करना चाहिए। लगभग 10 साल की उम्र में पोरबंदर में जनेऊ में बंधी हुई चाबियों की झंकार सुनकर मुझे उनसे ईर्ष्या होती थी। मैं सोचा करता था कि झंकार करने वाली कुंजियां जनेऊ में बांधकर मैं भी घूमूं तो कितना अच्छा हो। उन दिनों काठियावाड़ के वैश्य परिवारों में जनेऊ पहनने का रिवाज नहीं था, पर पहले 3 वर्णों को जनेऊ पहनना चाहिए, इस आशय का नया प्रचार चल रहा था। उसके फलस्वरूप गांधी कुटुंब के कुछ व्यक्ति जनेऊ पहनने लगे थे। जो ब्राह्मण हम 2-3 भाइयों को राम रक्षा का पाठ सिखाते थे, उन्होंने हमें जनेऊ पहनाया और अपने पास कुंजी रखने का कोई कारण न होते हुए भी मैंने 2-3 कुंजियां उसमें लटका ली। जनेऊ के टूट जाने पर उसका मोह उतर गया था या नहीं सो तो याद नहीं, पर मैंने नया जनेऊ नहीं पहना। बड़ी उम्र होने पर हिंदुस्तान और दक्षिण अफ्रीका भी दूसरों ने मुझे जनेऊ पहनाने का वहां प्रयत्न किया था, पर मेरे ऊपर उनकी दलीलों का कोई असर नहीं हुआ था। यदि कोई खास वर्ग समाज का जनेऊ ना पहन सके तो बाकी को उसे पहनने का क्या हक है, मेरी तो यही सोच थी। जिस बाह्य वस्तु की प्रथा हमारे कुटुंब में नहीं थी, उसे आरंभ करने का मुझे एक भी सबल कारण प्रतीत नहीं हुआ। मेरा जनेऊ पहनने से कोई विरोध नहीं था, परंतु उसे पहनने का कोई कारण भी नहीं दिखाई देता था। वैष्णव होने के कारण मैं कंठी पहनता था। शिखा तो गुरुजन हम भाइयों के सिर पर रखवाते ही थे, पर विलायत जाते के समय मैंने इस शर्म के मारे शिखा कटवा दी थी कि वहां सिर खुला रखना होगा, गोरे शिखा को देखकर हंसेंगे और मुझे जंगली समझेंगे। मेरे साथ रहने वाले मेरे भतीजे छगन लाल गांधी दक्षिण अफ्रीका में बड़ी श्रद्धा से शिखा रखते थे। यह शिखा उनके सार्वजनिक काम में बाधक होगी, इस भ्रम के कारण मैंने उनका मन दुखाकर भी उसे कटवा दिया था। यूं शिखा रखने में मुझे शर्म लगती थी। मैंने स्वामी जी को ये बातें कह सुनाई और कहा, मैं जनेऊ तो धारण नहीं करूंगा, जिसे न पहनते हुए भी बाकी लोग उसी वर्ण के माने जाते हैं, उसे पहनने की मैं अपने लिए कोई जरूरत नहीं देखता। फिर जनेऊ धारण करने का अर्थ है दूसरा जन्म लेना, अर्थात स्वयं संकल्प पूर्वक शुद्ध बनना, ऊर्ध्वगामी बनना। आजकल समाज और हिंदुस्तान दोनों जिस हालत में है, उसमें जनेऊ धारण करने का हमें अधिकार ही कहां है। समाज को जनेऊ का अधिकार तभी हो सकता है जब वो समानता में विश्वास करे। इसलिए जनेऊ धारण करने की आपकी बातें मेरे गले नहीं उतरती, किंतु शिखा के संबंध में आपकी बात मुझे अवश्य सोचनी होगी। शिखा तो मैं रखता था, लेकिन उसे मैंने शर्म और डर के मारे ही कटा डाला है। मुझे लगता है कि शिखा धारण करनी चाहिए। मैं इस संबंध में अपने साथियों से अवश्य चर्चा करूंगा। स्वामी जी को जनेऊ के बारे में मेरी दलील अच्छी नहीं लगी। जो कारण मैंने न पहनने के लिए दिए थे, वे उन्हें पहनने के पक्ष में दिखाई पड़े। जनेऊ के विषय में ऋषिकेश में मैंने जो विचार प्रकट किए थे, वे आज भी लगभग उसी रूप में कायम हैं। जब तक अलग अलग धर्म मौजूद हैं, तब तक प्रत्येक धर्म को किसी विशेष बाह्य चिन्ह की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन जब बाह्य संज्ञा केवल आडंबर बन जाती है अथवा अपने धर्म को दूसरे धर्म से अलग बताने के काम आती है, तब वो त्याज्य हो जाती है और मैं इस बारे में तटस्थ हूं। शिखा का त्याग स्वयं मेरे लिए लज्जा का कारण था, इसलिए साथियों से चर्चा करके मैंने उसे धारण करने का निश्चय किया। पर अब हमें लक्ष्मण झूले की ओर चलना चाहिए। ऋषिकेश और लक्ष्मण झूले के प्राकृतिक दृश्य मुझे बहुत भले लगे। प्राकृतिक कला को पहचानने की पूर्वजों की शक्ति के विषय में और कला को धार्मिक स्वरूप देने की उनकी दीर्घ दृष्टि के विषय में मैंने मन ही मन अत्यंत आदर का अनुभव किया।

किंतु मनुष्य की कृति से चित्त को शांति नहीं मिली। हरिद्वार की तरह ऋषिकेश में भी लोगों को रास्ते और गंगा के सुंदर किनारों को गंदा करते हुए मैंने देखा था। गंगा के पवित्र जल को दूषित करने में भी उन्हें संकोच नहीं था। मुझे ये देखकर हृदय को बहुत आघात पहुंचा। लक्ष्मण झूला जाते हुए लोहे का झूलता पुल देखा। लोगों से सुना था कि ये पुल पहले रस्सियों का था और बहुत मजबूत था। उसे तोड़कर एक उदार हृदय मारवाड़ी सज्जन ने बड़ा दान देकर लोहे का पुल बनवा दिया और उसकी चाबी सरकार को सौंप दी। रस्सियों के पुल की मुझे कोई कल्पना नहीं है, पर लोहे का पुल प्राकृतिक वातावरण को कलुषित कर रहा था और बहुत अप्रिय मालूम होता था। यात्रियों के इस रास्ते की चाबी सरकार को सौंप दी गई, ये चीज उस समय की वफादारी को भी असह्य लगी। वहां से भी अधिक दुखद दृश्य स्वर्गाश्रम का था। टीन की चादरों की तबेले जैसी कोठरियों को स्वर्गाश्रम बना दिया गया था। मुझसे बतलाया गया कि ये साधकों के लिए बनवाई गई थी। उस समय उनमें शायद ही कोई साधक रहता था। उनके पास बने हुए मुख्य भवन में रहने वालों ने भी मुझ पर अच्छा असर नहीं डाला था, पर हरिद्वार के अनुभव मेरे लिए अमूल्य सिद्ध हुए। मुझे कहाँ बसना और क्या करना चाहिए, इसका निश्चय करने में हरिद्वार के अनुभवों ने मेरी बड़ी मदद की।

अभी आप सुन रहे थे गांधी चर्चा, बापू की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का धारावाहिक पाठ। वाचन एवं प्रस्तुति थी अरुण पांडे की। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। 6:40 हुए हैं। आइए सुनते हैं श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ।

श्री रामचरितमानस का एक अत्यंत मार्मिक प्रसंग है अहल्या उद्धार का। जनकपुर से सीता स्वयंवर का निमंत्रण पाकर मुनि विश्वामित्र दोनों कुमारों को राजा जनक का धनुष यज्ञ दिखाने ले चले। मार्ग में एक सूना आश्रम दिखाई पड़ा जहां पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं था। वहां एक शिलाखंड पड़ा था जिसके विषय में श्री राम की जिज्ञासा सुनकर ऋषिवर ने उन्हें गौतम पत्नी अहल्या के अभिशप्त होने की कथा सुनाई और बोले, ये पत्थर की देह धारण किए युगों से बड़े धीरज के साथ आपके चरणों की धूल की प्रतीक्षा कर रही है। हे रघुवर, इस पर कृपा कीजिए। श्री राम के चरण का स्पर्श पाते ही तपोमूर्ति अहल्या अपने सुंदर नारी रूप में हाथ जोड़े प्रकट हो गई। अत्यंत प्रेमवश उसका शरीर पुलकित था और आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। आज के गायक कलाकार थे आशा भोसले और जगजीत सिंह। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। सुबह 9:30 पर आप सुनेंगे उर्दू कार्यक्रम हमारे लखनऊ केंद्र से। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे पंडित जसराज का गायन। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत दिन में 12:45 पर एवं सुबह 7:31 पर आप सुनेंगे डालिया मुखर्जी का गायन। विज्ञान पत्रिका, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 10:00। रात्रि 9:30 पर सुनिएगा गैर फिल्मी गीत एवं गजलों पर आधारित कार्यक्रम अंजुमन। सुगम संगीत के कार्यक्रम में रात्रि 8:00 आप सुनेंगे गजल। कलाकार होंगे भूपेंद्र सिंह। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत दिन 12:30 पर आप सुनेंगे रश्मि चौधरी के गाए भजन।

सुबह 9:50 पर और दिन में 1:45 पर हम आपको सुनवाएंगे लोक संगीत का कार्यक्रम। कलाकार होंगे शेर सिंह और साथी। इनके गाए लोकगीत आप कृषि जगत कार्यक्रम में भी सुन सकते हैं। समय होगा शाम 6:30। कृषि जगत कार्यक्रम में डॉक्टर अनिल कुमार सिंह की बातचीत हम आपको सुनवाएंगे। विषय होगा गेंदे की व्यावसायिक खेती। युवा साथी अपना पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी सुनेंगे शाम 5:15 पर, जिसमें आज के आकर्षण होंगे आज की बात, सिने दर्पण, यूथ डायरी, इतिहास में आज का दिन और रोजगार सूचना। दिन 2:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम एक ही कलाकार। महिलाएं अपना पसंदीदा कार्यक्रम गृहलक्ष्मी सुनेंगी दिन 1:15 पर, जिसमें चर्चा गीत संगीत के साथ ही होगा फोन इन कार्यक्रम, जिसमें विषय होगा आकाशवाणी के 90 वर्ष, यादें, बातें और आप। दिन में 11:00 श्रोता सुनेंगे व्हाट्सएप पर आधारित कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस। फिल्म संगीत आप सुन सकेंगे सुबह 10:00 झंकार में, शाम 6:10 पर, शाम 7:00, शाम 7:31 पर

रसरंग में और रात्रि 8:15 पर रस माधुरी में। सुबह 8:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम मधुरिमा और अब से थोड़ी देर बाद यानी 7 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस। ये थी आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: गुड मॉर्निंग बनारस।
1: गुड मॉर्निंग बनारस, कैसे हैं आप सब? बाबा विश्वनाथ की कृपा, आप सबके प्यार और उसी प्यार के विश्वास से मैं ये पूरी उम्मीद के साथ कह सकता हूँ कि आप सब जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। तो बस देर किस बात की, बनारस की इस प्यारी सी गुड मॉर्निंग में स्वीकार कीजिए मेरा यानी अपने दोस्त शैलेश दुबे का प्यार भरा नमस्कार। बनारस, क्या आप भी बड़ी शिद्दत से महसूस करते हैं उस प्यारे और खूबसूरत से रिश्ते को जो आपके और हमारे बीच में है? करते हैं ना, मुझे पूरा यकीन है कि आपकी चाहत भी हमारी तरह ही हर सुबह हमसे पहले ही जग जाती होगी एक दूसरे से मिलने के लिए। और फिर ऐसा हो भी क्यों ना, प्यार के इस रिश्ते की तलब ही कुछ ऐसी होती है कि बिना मिले रहना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। बनारस, देखा जाए तो ये मुश्किलात ही वो पैमाना बन जाता है जहाँ खुशियों की लहरें हर पल टकराकर फिर से टकराने की चाहत रखती हैं। बनारस, जब मुश्किलें हमारे हौसलों को तोड़े नहीं बल्कि और मजबूत करें, जब खुद से दूर होने की बात मंजिल के और करीब ले जाए और जब राह के कंकड़ हमारे पांव को और मजबूती से रखने की ताकत पैदा करने लगे, तो यकीन मानिए दोस्तों, जिंदगी ने हमें सवारना शुरू कर दिया है। वैसे हमारे घर के, परिवार के और समाज के बड़े बुजुर्ग भी तो यही सिखाते रहे हैं कि हमें हमेशा एक दूसरे के लिए जब भी मौका मिले खड़ा जरूर होना चाहिए। और सबसे अहम बात कि ये खड़ा होना सामने वाले के लिए सहारा ना बनकर बल्कि उसका हौसला बन जाए, तब उसकी जिंदगी में आपके होने का मतलब सही मायने में है। फिर रिश्ते का नाम चाहे जो भी हो। तो बनारस, अब बात कर लेते हैं देश दुनिया और अपने शहर बनारस की कुछ खास खास खबरों का। 16 नए उपकेंद्र बनने से बिजली संकट से लोगों को मिलेगी राहत। जी हाँ बनारस, उपभोक्ताओं की तेजी से बढ़ रही संख्या, उपकेंद्रों से बार बार बिजली ट्रिप होने और बिजली संकट से जूझ रहे उपभोक्ताओं को राहत पहुंचाने के लिए जिले में 16 नए उपकेंद्र बनाने का काम शुरू हो गया है। हालांकि 4 उपकेंद्रों के काम जमीन अभाव में शुरू नहीं हो पाए हैं। बिजली विभाग ने उपकेंद्रों के लिए जमीन उपलब्ध कराने को जिला प्रशासन और नगर निगम को पत्र लिखा है। इन उपकेंद्रों को बनाने में 584 करोड़ रुपए खर्च होंगे। जिले में 33 केवी के 87 उपकेंद्र हैं। इन 16 उपकेंद्रों के साथ जनपद में उपकेंद्रों की संख्या बढ़कर 103 हो जाएगी। नए उपकेंद्र बनने के साथ पास के उपकेंद्रों से 1-2 फीडर को हटाकर जोड़ा जाएगा। साथ ही नए फीडर बनाने के साथ ट्रांसफार्मरों से जोड़ने का काम होगा। अगली खबर है बनारस की। BSNL अपने उपभोक्ताओं तक बेहतर इंटरनेट सेवा पहुंचाने के लिए लगातार बेस ट्रांसीवर स्टेशन यानी BTS के टावरों की संख्या बढ़ाने के साथ साथ पुराने टावरों को अपडेट भी कर रही है। इसके लिए वाराणसी, चंदौली और भदोही के 81 टावरों का कार्य प्रगति पर है। इन टावरों को 4G से समृद्ध किया जा रहा है। इसमें 2G व 3G के 33 पुराने टावर हैं जो शहरी और अर्धशहरी क्षेत्रों में लगे हैं। वहीं 4G के 48 नए टावर वाराणसी, भदोही और चंदौली

चंदौली जनपद के ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में लगाए जा रहे हैं जहां इंटरनेट की सेवाएं बहुत धीमी थी। बनारस, इसी क्रम में हम आपको ये भी बताते चले कि पश्चिमी विक्षोभ के गुजर जाने के बाद भी बादलों का साया तथा आना जाना बना रहा, इसके चलते तापमान में कमी आई है। मौसम विज्ञानियों का अनुमान है कि शुक्रवार से यानी आज से आसमान प्रायः साफ रहेगा। दोस्तों, आज है शुक्रवार और तारीख है 8 मई सन 2026। तो आइए जान लेते हैं कि 8 मई इतिहास के पन्नों में किन रूपों में दर्ज है। 8 मई सन 1360 में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच ब्रिटिगनी की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। आज ही के दिन यानी 8 मई सन 1521 में वर्म्स की संसद में मार्टिन लूथर के खिलाफ नियम लागू किए गए। आज ही के दिन सन 1541 में मिसिसिपी नदी की खोज हर्नाडो डी सोटो ने की थी। रोमन सम्राट फर्डिनेंड द्वितीय और राजा बेथलेन कैबोर के बीच वियना की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे 8 मई सन 1624 को। 8 मई सन 1660 में संसद द्वारा चार्ल्स स्टुअर्ट को इंग्लैंड का राजा चार्ल्स द्वितीय घोषित किया गया। 8 मई सन 1741 में फ्रांस और बवेरिया के बीच निम्फेनबर्ग की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। आज ही के दिन सन 1949 में पश्चिम जर्मनी के संविधान को मंजूरी दी गई थी। 8 मई सन 1963 में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने पड़ोसी देशों के हमलों से इसराइल को समर्थन देने की पेशकश की थी। और आज ही के दिन यानी 8 मई सन 1985 में फ्रांस ने मरुओवा एटोल में एक परमाणु परीक्षण किया था। यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध 8 मई सन 1945 को समाप्त हुआ, जब जर्मन सेनाओं ने बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया, जिससे यूरोप में युद्ध का अंत हुआ। इस दिन को यूरोप विजय दिवस यानी वीई दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 8 मई सन 2000 को भारतीय मूल के 69 वर्षीय लॉर्ड स्वराजपाल ब्रिटेन के चौथे सबसे बड़े विश्वविद्यालय ब्रिटिश यूनिवर्सिटी के कुलपति नियुक्त किए गए थे। 8 मई सन 2001 को अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय मादक द्रव्य नियंत्रण बोर्ड से भी बाहर कर दिया गया। 8 मई सन 2004 को श्रीलंका के मुरलीधरन ने 521 विकेट लेकर सर्वाधिक टेस्ट विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया था। सन 1933 में महात्मा गांधी ने 8 मई को अपना 21 दिवसीय उपवास शुरू किया। बीटल्स का आखिरी स्टूडियो एल्बम लेट इट बी 8 मई सन 1970 को रिलीज हुआ था। लेट इट बी बैंड द्वारा रिलीज किया गया आखिरी एल्बम था और एबी रोड बैंड द्वारा 1969 में रिकॉर्ड किया गया आखिरी एल्बम था। कोका कोला का जन्म 8 मई सन 1886 को अटलांटा जॉर्जिया में हुआ था। इसी दिन डॉक्टर जॉन पेम्बर्टन अपने तैयार किए गए सिरप को अटलांटा के जैकब्स फार्मेसी में ले आए, जहां कोका कोला का पहला गिलास परोसा गया। कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर बताया कि इसका चखने के बाद इसे उत्कृष्ट बताया गया और 5 सेंट प्रति गिलास की दर से सोडा फाउंटेन पे बिक्री के रूप में रखा गया। और बनारस, अब जानकारी ले लेते हैं कि 8 मई को किन किन व्यक्तित्वों का जन्मदिन है। 8 मई सन 1932 को जन्म हुआ था सत्यव्रत मुखर्जी, जो कि पद्म भूषण से सम्मानित भारतीय राजनीतिज्ञ और लोक सेवी थे। भारत की प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जन्म हुआ था 8 मई सन 1929 को। भारत के प्रसिद्ध आध्यात्मिक चिंतक तथा वेदांत दर्शन के विश्व प्रसिद्ध विद्वान स्वामी चिन्मयानंद का जन्म हुआ था 8 मई सन 1916 को। उड़ीसा के प्रसिद्ध क्रांतिकारी तथा गांधीवादी कार्यकर्ता गोपबंधु चौधरी का जन्म हुआ था 8 मई सन 1895 को। प्रसिद्ध इतिहासकार तपन राय चौधरी का जन्म हुआ था 1926 में 8 मई के दिन। मानव सेवा के कार्यों के लिए पहला नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त हुआ था जीन हेनरी ड्यूनेंट को, और इनका जन्म हुआ था 8 मई सन 1828 को। 8 मई सन 1926 को जन्म हुआ था डेविड एटनबरो का, जो कि एक अंग्रेजी प्रसारक और प्रकृतिवादी रहे। इनको द ब्लू प्लैनेट और प्लैनेट अर्थ जैसे प्रकृति वृत्त चित्रों पर अपने काम के लिए सबसे ज्यादा और अच्छी तरह से जाना जाता है। अमेरिकी अभिनेत्री मेलिसा गिलबर्ट का जन्म हुआ था 8 मई सन 1964 को। स्पेनिश गायक, गीतकार और अभिनेता एनरिक इग्लेसियस का जन्म हुआ था 8 मई सन 1975 को, और स्टीफन एमेल, जो कि कनाडाई अभिनेता हैं और टीवी श्रृंखला एरो में ओलिवर क्वीन की भूमिका निभाने के लिए इनको सबसे ज्यादा पसंद किया गया, इनका जन्म हुआ था 8 मई सन 1981 को। बनारस, अगर खेल आयोजनों की हम बात करें जो कि 8 मई से संबंधित हैं, तो 8 मई सन 1919 में एपिंगेडम
फुटबॉल टीम का गठन हुआ।

हुआ था और 8 मई सन 1970 में एनबीए चैंपियनशिप में निक्स ने लेकर्स को 113 और 99 से हरा दिया था। लेनोक्स लुइस ने टोनी टगर को हराकर हैवीवेट बॉक्सिंग खिताब जीता था 8 मई सन 1993 को। कला और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की अगर हम बात करें तो 8 मई सन 1952 में ला रोंडे ने 5वें ब्रिटिश फिल्म और टेलीविजन पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता था। पहली जेम्स बॉन्ड फिल्म डोनो का प्रीमियर अमेरिका में हुआ था 8 मई सन 1963 को और 2001 में 8 मई को डिक्सी चिक्स टोबी कीथ और फेथ हिल ने 36वां एकेडमी ऑफ कंट्री म्यूजिक अवार्ड जीता था। बनारस आज हम मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस यानी कि विश्व रेड क्रॉस दिवस। लगभग 150 वर्षों से पूरे विश्व में रेड क्रॉस के स्वयं सेवक असहाय और पीड़ित मानवता की सहायता के लिए काम करते आ रहे हैं। भारत में वर्ष 1920 में पार्लियामेंट्री एक्ट के तहत भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का गठन हुआ। तब से रेड क्रॉस के स्वयं सेवक विभिन्न प्रकार के आपदाओं में निरंतर निस्वार्थ भावना से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस ने इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का फाइंड द वॉलंटियर इन साइड यू यानी अपने अंदर के स्वयं सेवक को पहचाने का नारा दिया है। विश्व के लगभग 200 देश किसी एक विचार पर सहमत हैं, तो वो है रेड क्रॉस के विचार। युद्ध के मैदान में घायल सैनिकों की चिकित्सा के साथ प्रकृति के महाविनाश के बीच फंसे हुए लोगों की मदद के लिए हमेशा डटा रहता है रेड क्रॉस। इसके उद्देश्य की अगर हम बात करें तो रेड क्रॉस एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है जिसका मुख्य उद्देश्य रोगियों, घायलों तथा युद्धकालीन बंदियों की देखरेख करना है। पीड़ित मानवता की सेवा बिना भेदभाव के करते रहने का विचार देने वाले तथा रेड क्रॉस अभियान को जन्म देने वाले महान मानवता प्रेमी जीन हेनरी ड्यूनेंट का जन्म 8 मई सन 1828 में हुआ था। उनके जन्म दिवस यानी 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में पूरे विश्व में मनाया जाता है। उन्होंने समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया और पूरे विश्व के लोगों को मानवतावादी सेवक के रूप में स्थापित करने के लिए प्रेरित किया। सेवा कार्य के लिए उनके द्वारा गठित सोसाइटी को रेड क्रॉस का नाम दिया गया। वर्तमान में विश्व के 186 देशों में रेड क्रॉस सोसाइटी कार्य कर रही है। वर्ष 1901 में हेनरी ड्यूनेंट को उनके मानवता और मानव सेवा के कार्यों के लिए पहला नोबेल शांति पुरस्कार मिला। युद्ध में घायल सैनिकों की स्थिति से विचलित हेनरी ड्यूनेंट ने 9 फरवरी 1863 को जिनेवा में 5 लोगों की एक कमेटी बनाई। हेनरी की इस परिकल्पना का नाम था इंटरनेशनल कमेटी फॉर रिलीफ टू द वाउंडेड। उसी वर्ष अक्टूबर में जिनेवा में ही एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। इसमें 18 विभिन्न देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। इसी में रेड क्रॉस को अमली जामा पहनाने का मसौदा तैयार किया गया। इस संस्था की पहचान के लिए सफेद पट्टी पर लाल रंग के क्रॉस चिन्ह को मान्यता दी गई। आज यह चिन्ह पूरे विश्व में पीड़ित मानवता की सेवा का प्रतीक बन गया है। इसके साथ यह भी अति महत्वपूर्ण है कि विश्व का पहला ब्लड बैंक रेड क्रॉस की पहल पर अमेरिका में 1937 में खुला। आज विश्व के अधिकांश ब्लड बैंकों का संचालन रेड क्रॉस और उसके सहयोगी संस्थाओं के द्वारा किया जाता है। रेड क्रॉस द्वारा चलाए गए रक्तदान जागरूकता अभियान के कारण ही आज थैलेसीमिया, कैंसर, एनीमिया जैसी अनेक जानलेवा बीमारियों से हजारों लोगों की जान बच रही है। दोस्तों, बातचीत के इस सिलसिले में हम आपको ये भी बताते चलें कि आज यानी 8 मई को मनाया जाता है विश्व थैलेसीमिया दिवस। थैलेसीमिया रोग के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। यह बीमारी आनुवांशिक है और रिश्तेदारी के साथ साथ पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। बीमारी का जन्म शिशु के साथ होता है जो उम्र भर साथ नहीं छोड़ता। इसका सिर्फ एक समाधान है, रिश्तों में सावधानी। यह बीमारी कुछ विशेष समुदायों में है। उन समुदायों के रिवाज ही इस बीमारी को रोक सकते हैं। थैलेसीमिया एक आनुवांशिक बीमारी है जो माता पिता से संतान को होती है। इस बीमारी से ग्रस्त शरीर में लाल रक्त कण बनने बंद हो जाते हैं। इससे शरीर में रक्त की कमी आ जाती है, बार बार खून चढ़ाना पड़ता है, रंग पीला पड़ जाता है। इस रोग से बच्चों में जिगर, तिल्ली और हृदय की साइज बढ़ने, शरीर में चमड़ी का रंग काला पड़ने जैसी विकट स्थितियां पैदा होती हैं। इस रोग को लेकर
महिला

के प्रसव से पूर्व ध्यान रखने की जरूरत है। एक शोध के मुताबिक भारत में प्रति वर्ष लगभग 8 से 10 थैलेसीमिया रोगी जन्म लेते हैं। वर्तमान में भारत में लगभग 2,25,000 बच्चे थैलेसीमिया रोग से ग्रस्त हैं। बच्चे में 6 माह 18 माह के भीतर थैलेसीमिया का लक्षण प्रकट होने लगता है। बच्चा पीला पड़ जाता है, पूरी नींद नहीं लेता, खाना पीना अच्छा नहीं लगता है, बच्चे को उल्टियां, दस्त और बुखार होने लगता है। आनुवंशिक मार्गदर्शन और थैलेसीमिया माइनर का दवाइयों से उपचार संभव है। थैलेसीमिया रोग से बचने के लिए माता पिता का डीएनए परीक्षण कराना अनिवार्य होता है। साथ ही रिश्तेदारों का भी डीएनए परीक्षण करवाकर रोग पर प्रभावी नियंत्रण संभव है। HBG2 का टेस्ट कराना चाहिए। इस रोग से बचने के लिए अगर सावधानियों की हम बात करें तो रोगी को बार बार खून चढ़ाने से शरीर में लौह तत्व की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है। इसलिए रोगी को हरी पत्तेदार सब्जी, गुड़, अनार, तरबूज, चीकू कम देना चाहिए। इसके अगर हम इलाज की बात करें तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट से इसका इलाज संभव है। इलाज की यह पद्धति थोड़ी महंगी है, इसीलिए वैज्ञानिक नई तकनीक पर प्रयोग कर रहे हैं जिसका नाम स्टेम सेल थेरेपी है।

0: गुड मॉर्निंग बनारस।
1: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारा अगला प्रसारण।

0: पर प्रतिबंध लगाएं, पर्यावरण को हम सब बचाएं। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है प्रदूषण, इसका परिणाम होता है भीषण। प्रदूषण के हैं कई कारण, धुआं, कचरा इत्यादि उदाहरण। देश को प्रदूषण मुक्त बनाएं, मन में ये संकल्प बनाएं।
1: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम।
0: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार

0: तैयार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
1: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
0: बढ़ते हुए या धीमे से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, श्वास लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाए।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से किया जनगणना 2027 का शुभारंभ। प्रदेश भर में शुरू हुई स्वगणना प्रक्रिया, पहले दिन 1,00,000 से अधिक लोगों ने की स्वगणना। मुख्यमंत्री ने सहारनपुर में 2,131 करोड़ रुपए की 325 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, समाज के सभी वर्गों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है डबल इंजन सरकार। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लखनऊ में फ्रूट होराइजन 2026 के उद्घाटन सत्र को किया संबोधित। कहा, बागवानी क्षेत्र में निर्यात बढ़ाने के लिए गठित होगा कार्यबल। और रेलगाड़ियों को उन्नत यात्री आरक्षण प्रणाली में बदलने लगा रेल मंत्रालय, अगस्त माह में होगी प्रक्रिया की शुरुआत। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में जनगणना 2027 का शुभारंभ किया। इसके साथ ही प्रदेश भर में स्वगणना की भी शुरुआत हो गई। कल शाम 6 बजे तक प्रदेश में 1,00,000 से अधिक लोगों ने स्वगणना कर ली थी। जनगणना के शुभारंभ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह केवल जनसंख्या की गणना भर नहीं है, बल्कि समग्र समावेशी और सुनियोजित विकास का सशक्त आधार है।
3: प्रदेश में 21 मई तक होने वाली स्वगणना के माध्यम से नागरिक स्वयं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपनी जानकारी दर्ज कर सकेंगे। इसके उपरांत फील्ड कार्य के अंतर्गत जनगणना कार्मिक घर घर जाकर सूचीकरण का कार्य करेंगे। जनगणना के पहले चरण में 22 मई से मकानों की गणना शुरू होगी। दूसरे चरण में प्रत्येक व्यक्ति की गणना की जाएगी। इस बार जनगणना में जाति गणना को भी सम्मिलित किया गया है। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
2: राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कल जनभवन में डिजिटल माध्यम से अपनी जानकारी दर्ज कर स्वगणना प्रक्रिया में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने अपील की कि प्रदेशवासी जनगणना अधिकारियों द्वारा मांगी जाने वाली समस्त जानकारी पूर्ण, सही एवं तथ्यात्मक रूप से उपलब्ध कराएं।
4: जनगणना लोकतंत्र की आधारशिला है। इसके माध्यम से प्राप्त आंकड़े देश और प्रदेश की नीतियाँ, विकास कार्यों तथा कल्याणकारी योजनाओं के निर्माण का आधार बनते हैं। आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, संस्थानों के वितरण और शहरी योजना जैसे अनेक क्षेत्रों में जनगणना की महत्वपूर्ण भूमिका है। आपकी दी गई सही जानकारी न केवल प्रदेश बल्कि पूरे देश के विकास की दिशा तय करने में मदद करेगी।
2: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर में 2,131 करोड़ रुपए की लागत वाली 325 लोक कल्याणकारी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार की नीतियों ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तस्वीर व तकदीर दोनों बदली है। उन्होंने कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुँचा है।
5: प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में विकास के समग्र विकास के कार्यक्रमों को भी आगे बढ़ाया है और बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ समाज के प्रत्येक तबके को बांटा है। वंचित को वरीयता मिली है, पिछड़ों को प्राथमिकता मिली है, हर वंचित के घर तक उसकी योजना पहुंचाने का कार्य किया है और उसका परिणाम आज हमारे सामने है।
2: मुख्यमंत्री

0: योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में आयुष विभाग, व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास विभाग तथा दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के लिए चयनित 481 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जवाबदेही, तकनीक और पारदर्शिता के कारण यूपी देश में सबसे अधिक नियुक्तियां देने वाला राज्य बन चुका है।
1: पिछले 9 वर्ष के अंदर हमारी सरकार ने लगातार नियुक्ति पत्र वितरण के नए कीर्तिमान को स्थापित किया है। कोई सोचता भी नहीं था कि उत्तर प्रदेश में भर्ती की प्रक्रिया इतनी निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो पाएगी। प्रदेश में हम लोगों ने जो प्रक्रिया बनाई, अलग अलग आयोग बोर्ड को जवाबदेही के साथ तकनीक का उपयोग करते हुए किसी भी प्रकार के किसी भी उस नौजवान के साथ जो योग्य है उसके साथ अन्याय न होने पाए, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए जब बाध्य किया, परिणाम है 9 लाख से अधिक नौजवानों को हम लोगों ने सरकारी नियुक्ति पत्र के माध्यम से नियुक्ति पत्र उपलब्ध करवाए।
0: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 15 जून को पहली फ्लाइट बेंगलुरु के लिए उड़ान भरेगी। यह फ्लाइट लखनऊ से नोएडा एयरपोर्ट होकर बेंगलुरु जाएगी। यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण के CEO राकेश कुमार सिंह ने बताया कि इसके लिए टिकट की बुकिंग कल दोपहर बाद से शुरू हो गई। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल लखनऊ में फ्रूट होराइजन 2026 के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि निर्यात बढ़ाने के लिए बागवानी क्षेत्र के सभी पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए समग्र सरकारी दृष्टिकोण के साथ काम करने के लिए एक कार्यबल का गठन किया जाएगा। कृषि मंत्री ने कहा कि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए फलों की शेल्फ लाइफ बढ़ाना आवश्यक है।
2: किसानों ने मांग की कि सेल्फ लाइफ बढ़े तो हम बेच पाएंगे, नहीं तो हमारा खराब ही हो जाता है। तो एक, हम सेल्फ लाइफ बढ़ाने पर काम कर रहे हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कई फलों की सेल्फ लाइफ बढ़ाने में सफलता प्राप्त की है और उस पर और काम चल रहा है। तो हम सेल्फ लाइफ बढ़ाएंगे, विदेशों में रिजेक्शन ना हो इसलिए क्वालिटी को इम्प्रूव करने का काम। क्वालिटी इम्प्रूव का एक उदाहरण यही मिलेगा आपको बागवानी संस्थान में, जब फलों की बैगिंग की गई है।
0: केंद्रीय मंत्री ने बताया कि भारत सरकार स्वच्छ पौध केंद्र स्थापित कर रही है। उन्होंने बताया कि उच्च गुणवत्ता वाली पौध सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ऐसे 9 केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इनमें से एक केंद्र उत्तर प्रदेश में भी खोला जाएगा। रेल मंत्रालय ने कहा कि रेलगाड़ियों को उन्नत यात्री आरक्षण प्रणाली में बदलने की प्रक्रिया अगस्त में शुरू हो जाएगी। नई दिल्ली में कल समीक्षा बैठक में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि रेलगाड़ियों को 40 वर्ष पुरानी आरक्षण प्रणाली से नई प्रणाली में बदलने के दौरान यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए।
3: भारतीय रेलवे ने वर्ष 2002 में इंटरनेट आधारित टिकट सेवा शुरू होने के बाद से लगातार डिजिटल परिवर्तन को अपनाया है। इसी परिवर्तन के अंतर्गत भारतीय रेलवे ने पिछले वर्ष जुलाई में रेल वन मोबाइल ऐप लॉन्च किया था। रेल मंत्रालय ने बताया कि यह ऐप यात्रियों के बीच तेजी से लोकप्रिय हुआ है। रेल वन ऐप में अब AI आधारित कन्फर्मेशन की संभावना की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। यह नई सुविधा इस साल की शुरुआत से ही लागू की गई है, जिसे लोगों द्वारा काफी पसंद किया जा रहा है। इस पर वेटिंग टिकट के कन्फर्म होने के मान की सटीकता पहले के 53% से बढ़कर अब 94% तक हो गई है। अक्षत कुमार वेद्यान के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
0: हमीरपुर के कुरारा थाना क्षेत्र में यमुना नदी में नाव पलटने की घटना में कल 5 शव बरामद हुए। यह हादसा 6 मई की रात में उस समय हुआ जब एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए आए नाविक सहित 10 लोग नाव पलटने के कारण नदी में गिर गए थे। हादसे के शिकार 4 लोग सुरक्षित बच गए, जबकि अंतिम समाचार मिलने तक एक की तलाश जारी थी। IPL क्रिकेट में लखनऊ के इकाना स्टेडियम में कल हुए मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु RCB की टीम को 9 रनों से हरा दिया। लखनऊ की टीम ने बारिश के कारण बाधित मैच में 19 ओवर में 3 विकेट पर 209 रन बनाए, लेकिन डकवर्थ लुइस नियम के तहत RCB को 19 ओवर में दो

113 रन का लक्ष्य मिला। आरसीबी की टीम 6 विकेट पर 203 रन ही बना सकी। प्रदेश में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। गोरखपुर और आसपास के जिलों में कुछ स्थानों पर कल बारिश के साथ ओले भी पड़े। कई जिलों में आज भी सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए हैं और हल्की बूंदाबांदी हो रही है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से किया जनगणना 2027 का शुभारंभ। प्रदेश भर में शुरू हुई स्वगणना प्रक्रिया, पहले दिन 1 लाख से अधिक लोगों ने की स्वगणना। मुख्यमंत्री ने सहारनपुर में 2131 करोड़ रुपए की 325 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, समाज के सभी वर्गों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है डबल इंजन सरकार। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लखनऊ में फ्रूट होराइजन 2026 के उद्घाटन सत्र को किया संबोधित। कहा, बागवानी क्षेत्र में निर्यात बढ़ाने के लिए गठित होगा कार्यबल। और रेलगाड़ियों को उन्नत यात्री आरक्षण प्रणाली में बदलेगा रेल मंत्रालय, अगस्त माह में होगी प्रक्रिया की शुरुआत। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
2: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत।

0: निखार। इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
2: शास्त्रीय संगीत में आज हम आपको सुनवा रहे हैं गायन। कलाकार हैं डालिया मुखर्जी, राग है बैरागी भैरव। आपके साथ तबले पर संगति कर रहे हैं गौरव बनर्जी।

0: कलाकार थी डालिया मुखर्जी, राग था बैरागी भैरव, आपके साथ तबले पर संगति थी गौरव बनर्जी की। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं, 8 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार प्रभात हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक अमित शाह आज कोलकाता में विधायक दल का नेता चुनने के लिए पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों से मुलाकात करेंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर गतिरोध जारी, सबसे बड़ी पार्टी को समर्थन देने के मुद्दे पर वीसी के, सीपीआई और सीपीआईएम के विधायकों की आज बैठक। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम ने मुंबई में व्यापार फोरम में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत और वियतनाम की भूमिका पर बल दिया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने वैश्विक कृषि परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत करने के उपायों की समीक्षा की। सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच रोकी। और आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने डकवर्थ लुइस नियम से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज कोलकाता पहुंच रहे हैं। वे भारतीय जनता पार्टी के नव निर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। बैठक के दौरान पार्टी विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: पश्चिम बंगाल में पहली बीजेपी सरकार इस शनिवार 25 वैशाख को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेगी। पार्टी सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जेपी नड्डा सहित कई वरिष्ठ नेता समारोह में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले शुक्रवार को न्यू टाउन स्थित विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में नवनिर्वाचित बीजेपी विधायकों का बैठक होगा, जिसमें विधायक दल के नेता का औपचारिक चयन किया जाएगा। अमित शाह केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में बैठक में मौजूद रहेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए संदीप दास गुप्ता, कोलकाता।
1: उधर तमिलनाडु में नई सरकार के गठन में देरी से राजनीतिक स्थिति अनिश्चित बनी हुई है। सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 के बहुमत तक पहुंचने के लिए बातचीत जारी है। डीएमके और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी ने कल नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक की। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी के महासचिव ई पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना गया। राज्य की सबसे बड़ी पार्टी तमिलग वेत्री कड़गम टीवीके को समर्थन देने के मुद्दे पर विदुथलाई चिरुथाईगल काची, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक आज होगी। हमारी संवाददाता की रिपोर्ट।
3: AIADMK और DMK के विधायक दल की बैठक का नतीजा भी महत्वपूर्ण है। DMK प्रवक्ता TKS एलेंगोवन ने कहा कि सबसे बड़ी पार्टी का यह कर्तव्य है कि वह अपना बहुमत साबित करे, और साथ ही यह भी कहा कि DMK प्रमुख MK स्टालिन कोई संवैधानिक संकट नहीं चाहते। गौरतलब है कि विधायक दल की बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए पुद्दुचेरी AIADMK के सचिव ए अनबाजगन ने कहा कि फैसला लेने का अधिकार पार्टी के महासचिव को दिया गया है। उन्होंने बहुमत के मुद्दे पर राज्यपाल के फैसले की सराहना की और कहा कि मौजूदा राजनीतिक अनिश्चितता में प्रत्याशित फैसले भी हो सकते हैं। उन्होंने मीडिया को यह भी बताया कि उनके नेता स्टालिन के चुनाव में हार से दुखी हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
1: उधर असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। केरलम में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय की घोषणा करेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल वैश्विक कृषि परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत करने के लिए विभिन्न उपायों की समीक्षा की है। उन्होंने भारतीय खाद्य और कृषि चैंबर के अध्यक्ष डॉ MJ खान के साथ बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि बैठक में किसानों के जीवन को बेहतर बनाने, देश की कृषि व्यवस्था को मजबूत करने और अफ्रीकी क्षेत्र के साथ सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा के लिए कृषि सहयोग बढ़ाने के नए उपायों पर भी विचार विमर्श हुआ। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण

0: प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक हो गया है। ये मात्रा बफर स्टॉक यानी अनिवार्यता के समय की आवश्यक मात्रा से लगभग तीन गुना अधिक है। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गेहूं और चावल के सुरक्षित भंडार से देश में कल्याणकारी योजनाओं तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। इस बीच सरकार ने कहा है कि 6 मई तक मंडियों से 78,96,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है। पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ा 75,63,000 मीट्रिक टन था। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत प्रशिक्षण महानिदेशालय आज कानपुर स्थित राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान में उद्योग परामर्श बैठक आयोजित कर रहा है। 30 से अधिक उद्योग प्रमुख, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और नीति विशेषज्ञ राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के बारे में विचार विमर्श करेंगे। इंडिया एआई और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्वास्थ्य सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तेजी से अपनाने के लिए नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि यह साझेदारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार और व्यापक अनुप्रयोग के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लम ने कहा है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और वियतनाम के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का महत्वपूर्ण अवसर है। मुंबई में भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री लम ने कहा कि पहले भी दोनों देशों ने आपसी सहयोग में कई चुनौतियों का सामना किया है। उन्होंने भारतीय कंपनियों को वियतनाम में निवेश के लिए आमंत्रित किया। वियतनाम के राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पूर्व वियतनामी राष्ट्रपति हो ची मिन और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं की दूरदृष्टि पर आधारित हैं। वर्ष 2016 के बाद से ये संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। इस अवसर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भारत और वियतनाम के प्रौद्योगिकी तथा विनिर्माण क्षेत्र के उद्यमी, निवेशक और पेशेवर एशिया के भविष्य को आकार देंगे।
4: इंडिया एंड वियतनाम ऑफर समथिंग इम्पोर्टेंट।
5: भारत और वियतनाम दुनिया को कुछ महत्वपूर्ण चीजें देते हैं, एक भरोसेमंद साझेदारी, स्थिर शासन, आर्थिक गतिशीलता और दीर्घकालिक रणनीतिक विश्वास। एशिया का भविष्य भारत और वियतनाम जैसे देशों के उद्यमियों, इनोवेटर्स, निवेशकों, टेक्नोलॉजी लीडर्स, निर्माताओं और युवाओं के मिलकर काम करने से बनेगा।
4: इंडिया एंड वियतनाम वर्किंग टूगेदर।
3: सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच पर रोक लगा दी है। इससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर निगरानी रखने की अपनी योजना छोड़ने को बाध्य होना पड़ा है। अमरीकी अधिकारियों ने इस खबर की पुष्टि की है। सऊदी अरब के इस कदम से खाड़ी देशों को लेकर अमरीकी रणनीति को झटका लगा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने अब अपना ध्यान राजनयिक माध्यमों पर केंद्रित कर दिया है। उन्होंने ईरान के साथ हाल की बातचीत को संतोषजनक बताते हुए किसी स्थायी समाधान निकलने की आशा व्यक्त की।
6: ईरान अब युद्ध समाप्त करने के लिए अमेरिका द्वारा 14 सूत्री प्रस्ताव

0: चुनाव की समीक्षा कर रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने संवाद और कूटनीति का आह्वान किया है। प्रस्तावित ढांचे के अंतर्गत शत्रुता को विराम दिया जाएगा और अंतिम वार्ता के लिए 30 दिन की अवधि दी जाएगी। हालांकि ईरान के परमाणु कार्यक्रम सहित प्रमुख मुद्दों को बाद की वार्ताओं के लिए छोड़ दिया जाएगा। कूटनीतिक स्थिति अभी भी अनिश्चित बनी हुई है क्योंकि ईरान ने सार्वजनिक रूप से किसी भी शर्त को स्वीकार करने की पुष्टि नहीं की है और ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद वगैर कलिबाफ ने कुछ मीडिया रिपोर्टों को फर्जी बताकर खारिज कर दिया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: अमरीका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति ट्रंप के 10% के नए वैश्विक टैरिफ को गैर कानूनी बताया है। न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अदालत की 3 सदस्यीय पीठ ने व्यवस्था दी कि राष्ट्रपति ट्रंप ने व्यापार कानून के तहत अमरीकी संसद से प्रदत्त शक्तियों का उल्लंघन किया। छोटे व्यवसायियों ने राष्ट्रपति ट्रंप के शुल्क संबंधी फैसले को अदालत में चुनौती दी थी। आकाशवाणी की स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष में आज सुबह राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया गया। लगभग 3.5 किलोमीटर की ये दौड़ आकाशवाणी भवन से शुरू होकर कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व बैंक भवन होते हुए आकाशवाणी भवन में संपन्न हुई। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन तथा दूरदर्शन सहित प्रसार भारती में कार्यरत सभी कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों ने इस मैराथन में भाग लिया। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के आदर्श वाक्य के साथ आकाशवाणी की स्थापना वर्ष 1936 में हुई थी। ये देश का सर्वाधिक विश्वसनीय प्रसारण माध्यम है जो विभिन्न भाषाओं में समाचार बुलेटिन के अलावा संगीत, मनोरंजन और जन उपयोगी कार्यक्रमों का प्रसारण करता है। आईपीएल क्रिकेट में कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। वर्षा से बाधित मैच का फैसला डकवर्थ लुइस नियम के आधार पर हुआ। आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स के शाम 7:30 बजे दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होगा। और अब मौसम की जानकारी। मौसम विभाग ने आज केरल, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, तटीय कर्नाटक और रायलसीमा में आज गरज के साथ बारिश और तेज हवा चलने की संभावना है। मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी ऐसी ही स्थिति रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं निखिल कुमार।
2: जी विशाल, हाल में संपन्न विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में सरकार गठन की प्रक्रिया पर आज के अधिकांश समाचार पत्रों की नजर है। नव भारत टाइम्स की सुर्खी है, तमिलनाडु में विजय के लिए बहुमत का क्लाइमैक्स बाकी। राज्यपाल ने कहा टीवीके के पास पर्याप्त विधायक नहीं। पार्टी प्रमुख विजय ने मांगा लेफ्ट दलों से समर्थन। दैनिक जागरण ने लिखा है राज्यपाल ने भंग की बंगाल विधानसभा। चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की करारी हार के बावजूद भी ममता बनर्जी ने नहीं दिया इस्तीफा। अमर उजाला ने लिखा है पश्चिम बंगाल में पहली बार बन रही भाजपा की सरकार, शपथ ग्रहण समारोह कल। पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा पर पंजाब केसरी संपादकीय में लिखता है इस हिंसा ने राजनीति के रक्त चरित्र को एक बार फिर उजागर किया है। सत्ता में आने वालों के चेहरे तो बदलते रहे लेकिन खूनी सियासत का चरित्र नहीं बदला। लोकतंत्र में इस तरह की हिंसा के लिए कोई जगह नहीं। राज्य में भाजपा की नई सरकार के सामने राजनीतिक हिंसा, आपराधिक तत्वों और गुंडा संस्कृति पर लगाम लगाने की बड़ी चुनौती होगी। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के 100 जवान मारे, 13 विमान गिराए। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर भारतीय सशस्त्र सेनाओं का ये बयान दैनिक भास्कर के मुख्य पृष्ठ पर है। देश में सड़क हादसों में रोजाना औसतन 546 लोगों की मौत, राष्ट्रीय क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के हवाले से जनसत्ता लिखता है तेज गति से गाड़ी चलाना है सड़क हादसों का सबसे बड़ा कारण। बड़ा बदलाव शीर्षक से राजस्थान पत्रिका की खबर है, देश में मुफ्त एंटरटेनमेंट पर लगेगी लगाम, बंद होगी फ्री चैनल स्ट्रीमिंग, सरकार की शुल्क लगाने की तैयारी, रजिस्ट्रेशन होगा अनिवार्य। केंद्र सरकार की ओर से 40 वर्ष से अधिक आयु के श्रमिकों के लिए बड़ी सौगात, अमर उजाला में है कामगारों की अब हर साल होगी मुफ्त स्वास्थ्य जांच।
1: धन्यवाद निखिल। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक अमित शाह आज कोलकाता में विधायक दल का नेता चुनने के लिए पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों से मुलाकात करेंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर गतिरोध जारी, सबसे बड़ी पार्टी को समर्थन देने के मुद्दे पर बीसीके, सीपीआई और सीपीआईएम के विधायकों की आज बैठक। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम ने मुंबई में व्यापार फोरम में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत और वियतनाम की भूमिका पर बल दिया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने वैश्विक कृषि परिदृश्य में

0: in global agriculture landscape. Saudi Arabia suspends US military access to its bases and airspace. And in IPL cricket, Lucknow Super Giants beat Royal Challengers Bengaluru by 9 runs using DLS method at the Ikana Stadium. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं नीतिका त्यागी। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। मगरबी बंगाल के लिए बीजेपी के मरकजी मुशाहिद अमित शाह कोलकाता में नए मुंतखब पार्टी अरकाने असेंबली के साथ मीटिंग करेंगे ताकि कानून साज पार्टी के लीडर का इंतखाब किया जा सके। तमिलनाडु में सरकार की तश्कील के मामले पर तातुल बरकरार है। वीसी के सीपीआई और सीपीआईएम के अरकानी असेंबली हिमायत देने या न देने के मामले पर आज मीटिंग करेंगे। वियतनाम के सदर तोलैम ने मुंबई में एक कारोबारी फोरम के दौरान आलमी सप्लाई निजाम में भारत वियतनाम रोल पर जोर दिया है। कॉमर्स के वजीर पीयूष गोयल ने आलमी जरई मंजरनामे में भारत की पोजीशन को मुस्तहकम बनाने से मुतालिक इकदाम का जायजा लिया। सऊदी अरब ने अपने फौजी अड्डों और फजाई हदूद तक अमरीकी फौज की रिसाई को मुअत्तल कर दिया है। और आईपीएल क्रिकेट में इकाना स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स ने डीएलएस साप्ते के तहत रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। मगरबी बंगाल के लिए बीजेपी के मरकजी मुशाहिद वजीर दाखिला अमित शाह आज कोलकाता पहुंच रहे हैं। वो बीजेपी के 9 मुंतखब एमएलएस के साथ मीटिंग करेंगे जिसमें पार्टी के लेजिस्लेटिव रहनुमा का इंतखाब किया जाएगा। पेश है एक रिपोर्ट।
2: मगरबी बंगाल में शानदार जीत के बाद बीजेपी हलफबरदारी की तकरीब को कौमी अहमियत की सियासी तकरीब में तब्दील करने की तैयारी कर रही है। मगरबी बंगाल में पहली मरतबा बीजेपी की हुकूमत के लिए हलफबरदारी की तकरीब हफ्ते के रोज 9 मई को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में मुनक्किद होगी। ये बैशाख की 25 तारीख होगी। मस्कूरा मकाम पर स्टेज और सिक्योरिटी इंतजामात की तैयारियां बुध के रोज से ही शुरू हो गईं। बीजेपी जराये के मुताबिक वजीर आजम नरेंद्र मोदी, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर दिफा राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा, बीजेपी सदर नितिन नबीन और मुतादिद दीगर आला रहनुमाओं के तकरीब में शामिल होने का इम्कान है। बीजेपी और एनडीए की हुकूमत वाली रियासतों के वज़ीरे आला और नायब वज़ीरे आला को भी तकरीब के लिए मदऊ किया जा रहा है। आज न्यू टाउन में बिस्वा बांग्ला कन्वेंशन सेंटर के मकाम पर बीजेपी के 9 मुंतखब एमएलएस की मीटिंग होगी जिसमें लेजिस्लेटिव पार्टी के रहनुमा का इंतखाब किया जाएगा। इस दौरान वजीर दाखिला अमित शाह मरकजी मुशाहिद के तौर पर मौजूद रहेंगे। हलफबरदारी की तकरीब के लिए सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। इम्कान है कि इस दौरान तकरीबन 4000 पुलिस एहलकार तैनात रहेंगे क्योंकि ये तकरीब रविंद्र जयंती के मौके पर मुनक्किद हो रही है, इसलिए सकाफती प्रोग्रामों को खसूसी तवज्जो दी जा रही है। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए अर्जुमंद अली खान।
1: तमिलनाडु में नई सरकार की तश्कील में ताखीर हो रही है। अक्सरियत के लिए दरकार 118 अरकाने असेंबली की हिमायत हासिल करने की खातिर बातचीत का सिलसिला जारी है। इधर डीएमके और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी के नए मुंतखब अरकाने असेंबली की लेजिस्लेटिव पार्टी मीटिंगें हुई। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी के जनरल सेक्रेटरी एडप्पडी पलनीस्वामी को पुदुचेरी में लेजिस्लेटिव पार्टी का लीडर मुंतखब किया गया है। इधर आज वीसी के सीपीआई और सीपीआईएम के नए मुंतखब अरकान की अहम मीटिंग होने वाली है जिसमें वाहिद सबसे बड़ी पार्टी तमिलका वेट्री कड़गम टीवीके को हिमायत देने या न देने के मामले पर गौर किया जाएगा। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
3: तमिलनाडु में कल डीएमके और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी के अरकान असेंबली की मीटिंग के साथ ही सूरत हाल ने दिलचस्प सियासी रुख इख्तियार कर लिया है। इन दोनों पार्टी ने अक्सरियत साबित करने के मामले पर गवर्नर के फैसले को सराहा है। डीएमके पार्टी के तर्जुमान टीकेएस एरनगोवन ने कहा है कि वाहिद सबसे बड़ी पार्टी का ये फर्ज है कि वो अपनी अक्सरियत साबित करे। उन्होंने ये भी कहा कि डीएमके सरबरा एम के स्टालिन ये नहीं चाहते कि किसी तरह का कोई आईनी बहरान पैदा हो। इधर पुदुचेरी के लिए ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी के सेक्रेटरी ए अंबड़गन ने अरकाने असेंबली की मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि फैसला करने का इख्तियार पार्टी के जनरल सेक्रेटरी को दिया गया है। उन्होंने अक्सरियत साबित करने के मामले पर रियासत के गवर्नर के फैसले की सताइश की और

0: सऊदी अरब ने अपने फौजी अड्डों और फजाई हदूद तक अमरीकी फौज की रिसाई को मुअत्तल कर दिया है। इसकी वजह से सदर डोनाल्ड ट्रंप को आबनाए हुरमुज से बहरी जहाजों को बाहिफाजत निकालने के अपने मंसूबे को बीच में ही तर्क करना पड़ा है। अमरीका के दो अहदेदारान ने इस बात की तस्दीक की है। सऊदी अरब का ये कदम खलीज के खित्ते से मुतालिक अमरीका की हिकमत अमली के लिए एक बड़ा धचका माना जा रहा है, क्योंकि अमरीका के एक कलीदी इलाकाई इत्तेहादी ने प्रोजेक्ट फ्रीडम के शुरू होने से पहले ही इस कार्रवाई में रुकावट डाल दी है। उधर सदर ट्रंप ने अपनी तवज्जो सिफारतकारी की जानिब मरकूज कर दी है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: ईरान जंग के खात्मे के लिए अब 14 निकात पर मुश्तमिल अमरीका की तजवीज का जायजा ले रहा है। उधर ईरान के वजीर खारजा अब्बास राखची ने मुजाकरात और सिफारतकारी की जरूरत पर जोर दिया है। मुजवजा फ्रेमवर्क में लड़ाई रोकने और हतमी मुजाकरात के लिए 30 दिन की मुद्दत की बात कही गई है, जबकि ईरान के एटमी प्रोग्राम समेत बुनियादी मामलों पर बाद में बातचीत की जाएगी। सिफारती मंजरनामा अब भी गैर वाजे है, क्योंकि ईरान ने किसी भी तरह की शराइत कबूल करने की तस्दीक नहीं की है और ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालीबाफ ने भी इस बारे में कुछ मीडिया इत्तलात को फर्जी करार देकर इन्हें मुस्तरद कर दिया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
0: रूस ने यूक्रेन के साथ लड़ाई में आज से जंग बंदी का ऐलान किया है, जो दूसरी आलमी जंग में सादिका सोवियत यूनियन की फतह के 81 साल पूरे होने के जश्न के दौरान 10 मई तक जारी रहेगी। सदर व्लादिमीर पुतिन के फैसले के तनाजुर में रूस की वजारत दिफा ने ये ऐलान किया है। इससे कबल यूक्रेन के सदर जेलेंस्की ने येरेवन में एक सरबराह मीटिंग में ये कहा था कि हो सकता है कि रूस मॉस्को के रेड स्क्वायर पर मुमकिन ड्रोन हमलों के अंदेशे से 9 मई की यौम फतह परेड के दौरान फौजी साजो सामान की नुमाइश करने से गुरेज करे। अमरीका की तिजारती उमूर से मुतालिक एक विफाकी अदालत ने यह फैसला सुनाया है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप के नए 10% आलमी महसूलात गैर कानूनी हैं। न्यूयॉर्क में बैनुल अक्वामी तिजारत से मुतालिक अदालत के 3 जजों के पैनल ने यह फैसला सुनाया कि सदर ट्रंप ने तिजारत से मुतालिक कानून के तहत सदर को दिए गए कांग्रेस के इख्तियार से तजावुज करके इकदाम किए हैं। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने केरलम, माहे, जनूबी अंदरूनी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में आज शदीद बारिश की पेशगोई की है। मौसमियात के महकमे ने कहा है कि उत्तर प्रदेश, मशरकी राजस्थान, साहिली कर्नाटक और रायलसीमा में गरज चमक के साथ छींटे पड़ने और तेज हवाएं चलने का इम्कान है। IPL क्रिकेट में कल रात लखनऊ के ईकाना स्टेडियम में बारिश से मुतासिर मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स ने DLS तरीकाकार के तहत रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। रॉयल चैलेंजर्स को जीत के लिए 213 रन का निशाना मिला था और उसने 19 ओवर में 6 विकेट पर 203 रन बनाए। आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं अर्जुमंद अली खान।
2: शुक्रिया नितिका। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के तकरीबन सभी अखबारों ने मगरबी बंगाल असेंबली तहलील होने से मुतालिक खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस की इस हवाले से सुर्खी है, ममता बनर्जी हुकूमत का 15 साल दौर खत्म, गवर्नर RN रवि ने आईनी इख्तियार इस्तेमाल किए। बिहार काबीना में तौसी से मुतालिक खबर भी सभी अखबारों में नुमाया है। रोजनामा इनकलाब ने सुर्खी लगाई है, सम्राट काबीना की तौसी, 32 वज़रा को गवर्नर ने ओहदे का हलफ दिलाया। ऑपरेशन सिंदूर का एक साल मुकम्मल होने की खबर को भी सभी अखबारों ने अहमियत के साथ सफ़े अव्वल पर जगह दी है। रोजनामा प्रताप ने वजीर आजम के इस बयान को शह सुर्खी बनाया है कि ऑपरेशन सिंदूर दहशतगर्दी के खिलाफ भारत का सख्त रद्द अमल और आवाम की यकजहती की अलामत।
0: और अब आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। मगरबी बंगाल के लिए बीजेपी के मरकजी मुशाहिद अमित शाह कोलकाता में नए मुंतखब पार्टी अरकानी असेंबली के साथ मीटिंग करेंगे, ताकि कानून साज पार्टी के लीडर का इंतखाब किया जा सके। तमिलनाडु में सरकार की तश्कील के मामले पर तातुल बरकरार है। VCK, CPI और CPIM के अरकानी असेंबली हिमायत देने या न देने के मामले पर आज मीटिंग करेंगे। वियतनाम के सदर तोलेम ने मुंबई में एक कारोबारी फोरम के दौरान आलमी सप्लाई निजाम में भारत वियतनाम रोल पर जोर दिया है। सऊदी अरब ने अपने फौजी अड्डों और फजाई हदूद तक अमरीकी फौज की रिसाई को मुअत्तल कर दिया है। और IPL

0: क्रिकेट में इकाना स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स ने नियलिस्ट साप्ते के तहत रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम मधुरिमा।
2: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
3: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुँचने का हर विकल्प।
2: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
3: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
2: बुकिंग है तो संपर्क करें
4: 0542227658
5: 0542227658।

मधुरिमा सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार और सुप्रभात। आज मधुरिमा का ये सुरीला सफर आप तय करेंगे मेरे यानी दीप्ति के साथ। दोस्तों, जिंदगी की भागदौड़ में कभी कभी हमें कुछ पलों की शांति और मार्गदर्शन की जरूरत होती है। तो आज का ये हमारा सफर हिंदी फिल्मों के उन गीतों के साथ जो सीधे दिल से निकलते हैं और ईश्वर तक पहुंचते हैं,

हिंदी फिल्मों के ये ऐसे गीत हैं जो सीधे हमारी आत्मा को छूते हैं, जिनमें गुथी होती है प्रार्थना, होता है समर्पण उस सर्वोच्च शक्ति के प्रति जो हमें सच्चा रास्ता दिखाती है।

दोस्तों, हम सबके जीवन में बहुत से ऐसे पल आते हैं जब हम हर जगह से निराश होते हैं, और तब ये गाने हमारे भीतर विश्वास और सकारात्मकता को भरते हैं और ये एहसास कराते हैं कि हर जगह, हर पल कोई एक परम शक्ति है जो हमारे साथ है।

हमारी फिल्मों के ये ऐसे गीत हैं जो इंसानियत और ईश्वर में अटूट विश्वास को दर्शाते हैं और जो ये बताते हैं कि हम सब एक ही ईश्वर की संतान हैं।

हमें प्रेरणा देते हैं, मन को मजबूत करते हैं और सच्चाई के रास्ते पर चलने की राह दिखाते हैं। ये वो गीत हैं जो सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि आत्मिक शांति के लिए बने हैं। ये बताते हैं कि हमारे जीवन की वो कस्तूरी जिसे हम बाहर ढूंढ रहे हैं, वो हमारे भीतर ही है।

आशा है इन प्रार्थना रूपी गीतों ने आपके मन को शांति और सकारात्मकता से भर दिया होगा। हम चाहे किसी भी धर्म के हों, ये धुनें हमें एक सूत्र में पिरोती हैं। आज का मधुरिमा का ये सफर बस यहीं तक। फिर मिलूंगी किसी दिन कुछ और नए गीतों के साथ। अब मुझे यानी दीप्ति को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: മധുരിമ, ദ സൗണ്ട് ഓഫ് മെലഡി. മധുരിമ. अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मधुरिमा. ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है. कुछ ही देर में आप सुनेंगे जिले की हलचल हमारे लखनऊ केंद्र से.
1: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है. जिले की हलचल आप सुनिए वाराणसी और गाजीपुर जिलों की हलचल. पहले सुनते हैं वाराणसी जिले की हलचल. आलेख और स्वर है मनीष सिंह का.
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने काशी दौरे के दौरान 6332.08 करोड़ रुपए की 163 विकास परियोजनाओं की सौगात दी. प्रधानमंत्री

0: ने 2464.46 करोड़ रुपए की लागत से मालवीय पुल के पास बनने वाले रेलवे रोड ब्रिज सिग्नेचर ब्रिज की आधारशिला रखी। इसके अलावा 1582.99 करोड़ रुपए की सीवरेज व जलापूर्ति योजनाएं तथा 429.36 करोड़ रुपए के कबीर चौरा मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल परियोजना का भी शिलान्यास किया। लोकार्पित प्रमुख परियोजनाओं में 308.09 करोड़ का एसटीपी, 144.43 करोड़ का कजाकपुरा आरओबी और सारनाथ स्थित तिब्बती संस्थान में सोवा रिंगपा मेडिकल कॉलेज शामिल है। प्रधानमंत्री का यह दौरा काशी के समग्र विकास, आधारभूत संरचना सुदृढ़ीकरण और पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर सारनाथ में आयोजित भव्य बौद्ध महोत्सव श्रद्धा, अध्यात्म और संस्कृति का अद्भुत संगम बनकर उभरा। गौतम बुद्ध की 2570वीं जयंती के उपलक्ष्य में हुए इस आयोजन में देश विदेश से आए 1 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने बुद्ध के पवित्र अस्थि धातुओं के दर्शन कर पुण्य अर्जित किया। महोत्सव का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान लखनऊ, महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया तथा इंडो श्रीलंका जम्बू द्वीप बुद्ध विहार सारनाथ के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। मूलगन कुटी विहार में पवित्र अवशेषों के दर्शन के साथ श्रद्धालुओं ने आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त किया। इस अवसर पर विश्व शांति के लिए तथागत बुद्ध विषय पर निबंध और चित्रकला प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें 200 से अधिक बच्चों ने भाग लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया, वहीं सभी को प्रमाण पत्र देकर प्रोत्साहित किया गया। कार्यक्रम के दौरान धम्म देशना, विपश्यना और विचार गोष्ठियों का आयोजन भी हुआ, जिसमें वक्ताओं ने बुद्ध के उपदेशों को जीवन में अपनाने पर बल दिया। श्रद्धालुओं के लिए पूरे दिन भोजन की व्यवस्था की गई, जिसमें सेवा और करुणा का संदेश भी प्रसारित हुआ। इस अवसर पर महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया के महासचिव सुमितानंद थेरो ने कहा कि बुद्ध पूर्णिमा भगवान बुद्ध के जीवन की 3 महत्वपूर्ण घटनाओं लुम्बिनी में जन्म, बोध गया में ज्ञान प्राप्ति और कुशीनगर में महापरिनिर्वाण से जुड़ा पावन दिवस है।
1: बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर हम लोग महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया तरफ से सारनाथ में हर साल में हम लोग बुद्ध पूर्णिमा मना रहा है। भगवान बुद्ध का पवित्र अस्थि ये मूलगंधकुटी महाविहार में रखा है, हम लोग को भगवान बुद्ध का अस्थि दर्शन कर रहा है।
0: उत्तर प्रदेश पुलिस की पासिंग आउट परेड वाराणसी के पुलिस लाइन मैदान में सफलतापूर्वक संपन्न हुई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से परेड को संबोधित किया, जिसका सजीव प्रसारण सभी प्रशिक्षण केंद्रों पर किया गया। वाराणसी मंडल के विभिन्न भर्ती प्रशिक्षण केंद्रों में आयोजित इस पासिंग आउट परेड में कुल 3070 प्रशिक्षु आर्ची अब उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान के रूप में सेवा के लिए तैयार हो गए हैं। वाराणसी, जौनपुर एवं गाजीपुर जनपदों के प्रशिक्षण केंद्रों सहित पीएसी 36वीं वाहिनी रामनगर एवं 34वीं वाहिनी भुल्लनपुर में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके आरक्षियों ने परेड में भाग लिया। इसके बारे में विस्तृत रूप से वाराणसी के पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने बताया कि वाराणसी रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर में विशेष रूप से महिला आरक्षियों को प्रशिक्षण दिया गया।
2: 491 महिला आरक्षियों ने यहाँ पर सफलतापूर्वक प्रशिक्षण अपना कंप्लीट किया है। दीक्षांत परेड 491 महिला आरक्षियों की यहाँ पर हुई है। इन महिला आरक्षियों की जो लगभग 9.5 महीने की यहाँ पर ट्रेनिंग हुई है, इन महिलाओं ने पूरे उत्साह के साथ, पूरी लगन के साथ सफलतापूर्वक इस ट्रेनिंग को पूरा किया है,
0: जिसमें से 491 महिला प्रशिक्षुओं ने भी परेड में सहभागिता की। परेड के उपरांत इन सभी महिला आरक्षियों को विभिन्न थानों में तैनाती के लिए तैयार किया गया है, जहाँ वे महिला सुरक्षा, कानून व्यवस्था, सुदृढ़ीकरण एवं जन सेवा के कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। इसके अतिरिक्त तो वाराणसी परिक्षेत्र के जौनपुर एवं गाजीपुर प्रशिक्षण केंद्रों से 1390 आरक्षियों ने भी परेड में भाग लिया। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रशिक्षुओं को पुरस्कृत एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। वाराणसी के चौका घाट स्थित गिरजा देवी सांस्कृतिक संकुल में प्रसिद्ध विद्यालयों के शिक्षा मित्रों के बढ़े हुए मानदेय की चेक वितरण एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में गोरखपुर के गुरु गंभीर नाथ प्रेक्षागृह से प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुख्य आतिथ्य में आयोजित समारोह का सजीव प्रसारण भी दिखाया गया, जिसे उपस्थित लोगों ने उत्साहपूर्वक देखा। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रदेश के श्रम एवं सेवा योजन समन्वय मंत्री अनिल राजभर, स्टाम्प एवं न्यायालय पंजीयन शुल्क राज्य मंत्री रविन्द्र जायसवाल, जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य, MLC धर्मेंद्र सिंह, विधायक सौरभ श्रीवास्तव एवं जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार द्वारा दीप प्रज्वलन और माँ सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण के साथ हुआ। इस अवसर पर श्रम मंत्री अनिल राजभर ने शिक्षा मित्रों और शिक्षकों को राष्ट्र निर्माण की आधारशिला बताते हुए कहा कि वे देश के भविष्य को संवारने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने मानदेय वृद्धि को शिक्षा मित्रों के मनोबल को मजबूत करने वाला ऐतिहासिक निर्णय बताया।
3: वाराणसी जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं गाजीपुर जिले की हलचल।

0: आलेख और स्वर है श्री राम राय का।
1: गाजीपुर के कासमाबाद तहसील स्थित कयामपुर छावनी गांव में मगई नदी पर लोगों ने श्रमदान कर पुल निर्मित कर दिया, जिसका लोकार्पण प्रयाग उच्च न्यायालय के न्यायाधीश शेखर यादव ने किया। मगई नदी पर पुल न होने के कारण लगभग 15 से 20 गांव के ग्रामीणों को लंबी दूरी तय कर जिला मुख्यालय पहुंचना पड़ता था। इसके लिए ग्रामीणों ने स्वयं पहल की एवं आपस में चंदा इकट्ठा कर मगई नदी पर पुल निर्मित कर दिया। न्यायमूर्ति शेखर यादव ने कहा कि यह संकल्प शक्ति एवं अच्छी सोच का ही परिणाम है कि आज ग्रामीणों ने बिना किसी सरकारी सहायता के मगई नदी पर पुल बनाकर एक अनूठा उदाहरण पेश किया है। पश्चिम बंगाल चुनाव में गाजीपुर के भावरकोल ब्लॉक अंतर्गत पलिया गांव निवासी उमेश राय ने कोलकाता के चर्चित हावड़ा उत्तर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में जीत हासिल की है। उनकी इस उपलब्धि पर उनके गांव पलिया सहित पूरे जनपद में जश्न का माहौल है। ग्रामीण एक दूसरे को मिठाई खिलाकर ढोल नगाड़े बजाकर एक दूसरे को शुभकामना दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का असर अब गाजीपुर में भी दिखने लगा है। बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता विवेक खन्ना ने पिछले दिनों एक पावर हाउस के 10 ट्रांसफार्मर चोरी के मामले में विभागीय संलिप्तता को देखते हुए 3 अफसरों को और 2 कर्मियों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए एसडीओ प्रमोद यादव, जेई राजीव गुप्ता, जेई नीरज खरवार को निलंबित कर दिया। वहीं 2 संविदा लाइन मैन बर्खास्त कर दिए गए। पिछले दिनों गाजीपुर में करंडा थाना क्षेत्र के कटरिया गांव में हुई संदिग्ध मौत के मामले में यूपी के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने मृतका के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें हर संभव मदद एवं न्याय का भरोसा दिलाया। वहीं दूसरी ओर पूर्व कैबिनेट मंत्री और सपा विधायक ओम प्रकाश सिंह तथा अन्य राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने भी कटरिया गांव पहुंचकर मृतका के परिजनों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की। पिछले दिनों गाजीपुर में हुई बरसात और आंधी तूफान के कारण जहां सब्जियों को नुकसान हुआ, वहीं तेज आंधी के कारण पेड़ गिरने से 3 व्यक्तियों की मौत भी हो गई। घटना के बाद जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला मृतकों के परिजनों के बीच पहुंचे और उन्हें हर संभव मदद पहुंचाने का भरोसा दिलाया। अपर जिलाधिकारी दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार मृतकों को 4-4 लाख रुपए आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। 1 मई को गाजीपुर में मजदूर दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने श्रमिकों के साथ बैठक की और उन्होंने उनके बीच मजदूर दिवस मनाया। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में गाजीपुर में 780 श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया गया है तथा उन्हें 3.25 करोड़ रुपए भी प्रदान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य स्तरीय कार्यक्रम के अनुसार गाजीपुर में यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि प्रत्येक श्रमिक को सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ मिल सके। पिछले दिनों गाजीपुर पुलिस ने जनपद में अपराध मुक्त वातावरण बनाने की उद्देश्य पुलिस की 12 टीमों के द्वारा एक गैंग के 61 सदस्यों के ठिकाने पर छापेमारी की। इस क्रम में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ईरज राजा ने बताया कि गैंग के 24 सदस्यों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई है तथा गैंग के कुल 90 शस्त्र लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। पिछले दिनों गाजीपुर पहुंचे उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि 1 अप्रैल से शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाकर 18,000 रुपए कर दिया गया है। उन्होंने राजभर समाज के आजादी की लड़ाई में योगदान की चर्चा करते हुए कहा कि गोरखपुर के चौरी चौरा कांड में 26 राजभर युवकों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। आज भी राजभर समाज महाराजा सुहेल देव के चलाए रास्ते पर ही चल रहा है एवं विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में लगा हुआ है। पिछले दिनों जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी गाजीपुर पहुंचे एवं विभिन्न कार्यक्रमों में प्रतिभाग किया। उन्होंने कहा कि वैश्विक संकट के बीच भी भारतीय युवा विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए पूरे मनोयोग से लगे हुए हैं। जनपद न्यायाधीश धर्मेंद्र कुमार पांडे ने बताया कि आगामी 9 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश पर न्याय आपके द्वार नारे को चरितार्थ करते हुए यह लोक अदालत लगाई जा रही है। इसमें बैंकिंग तथा पारिवारिक वाद के मामले तथा अन्य विभिन्न मामलों का भी निपटारा होगा। इस लोक अदालत के माध्यम से वादकारी का समय, श्रम एवं पैसे की बचत होगी। उन्होंने गाजीपुर के लोगों से अपील की कि अधिक से अधिक संख्या में लोक अदालत में भागकर अपने मामले को निपटाएं। कोडीन युक्त कफ सिरप मामले में गाजीपुर के 6 मेडिकल फर्मों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। इसी क्रम में पिछले दिनों 2 आरोपियों राहुल यादव एवं दयाराम सिंह ने न्यायालय में हाजिर हुए एवं उन्हें जेल भेज दिया गया। 1 आरोपी सर्वांश वर्मा की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है एवं अन्य 3 के खिलाफ गिरफ्तारी के लिए कुर्की आदि के माध्यम से पुलिस लगातार गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है।
0: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
2: अभी आप सुन रहे थे जिले की हलचल। इसके अंतर्गत आपने सुना वाराणसी और गाजीपुर जिलों की हलचल।
3: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है खोई

थाना कछुआ, कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद मिर्जापुर से प्राप्त सूचना के अनुसार लक्ष्मी मिश्रा, पुत्री राजेश मिश्रा, ग्राम सबेसर, थाना कछुआ, जनपद मिर्जापुर की निवासी हैं। लक्ष्मी मिश्रा की उम्र 19 वर्ष, लंबाई 5 फिट 3 इंच, रंग गोरा एवं चेहरा लंबा है। ये दिनांक 29 मार्च 2025 सुबह 9 बजे से लापता हैं। लापता होने के समय इन्होंने नीले रंग का जीन्स और टी शर्ट पहना था। यदि इनके संबंध में कोई भी सूचना प्राप्त हो तो कृपया अपने नज़दीकी थाना अथवा थाना कछुआ जनपद मिर्जापुर को सूचित करें।

हलिया कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद मीरजापुर से प्राप्त सूचना के अनुसार सनोज पुत्र शोभा कौल ग्राम हलिया जनपद मीरजापुर के निवासी हैं। सनोज की उम्र 21 वर्ष, लंबाई 5 फीट 5 इंच, रंग गेहुआ एवं चेहरा गोल है। ये दिनांक 3 फरवरी 2026 सुबह 9 बजे घर से कहीं चले गए हैं और लापता हैं। लापता होने के समय इन्होंने नीले रंग की टी शर्ट और नीला जीन्स पहना था। यदि इनके संबंध में कोई भी जानकारी प्राप्त हो तो कृपया अपने नज़दीकी थाना अथवा थाना हलिया जनपद मीरजापुर को सूचित करें।

थाना हलिया कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद मिर्जापुर से प्राप्त एक अन्य सूचना के अनुसार विद्या देवी पुत्री बैजनाथ ग्राम पंवारी कला थाना हलिया जनपद मिर्जापुर की निवासी हैं। विद्या देवी की उम्र 29 वर्ष, लंबाई 5 फुट, रंग सांवला एवं चेहरा लंबा है। ये दिनांक 7 नवंबर 2025 सुबह 9 बजे से लापता हैं। लापता होने के समय इन्होंने काले रंग की साड़ी पहनी थी। यदि इनके संबंध में कोई भी जानकारी प्राप्त हो तो कृपया अपने नज़दीकी थाना अथवा थाना हलिया जनपद मिर्जापुर को सूचित करें। थाना कोतवाली कटरा कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद मिर्जापुर से प्राप्त सूचना के अनुसार अतुल कुमार श्रीवास्तव पुत्र राजेंद्र प्रसाद ग्राम छोटी बसही थाना कोतवाली कटरा जनपद मिर्जापुर के निवासी हैं। अतुल कुमार श्रीवास्तव की उम्र 32 वर्ष, लंबाई 5 फुट 4 इंच, रंग सांवला एवं चेहरा लंबा है। ये दिनांक 10 मार्च 2026 रात 10 बजे से लापता हैं। यदि इनके संबंध में कोई भी जानकारी प्राप्त हो तो कृपया अपने नज़दीकी थाना अथवा थाना कोतवाली कटरा जनपद मिर्जापुर को सूचित करें। खोए व्यक्तियों के संबंध में सूचना समाप्त हुई। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे अगला कार्यक्रम हमारे लखनऊ केंद्र से।

आज की पेशकश है आकाशवाणी लखनऊ के मरकज से, जिसमें आज आप सुनेंगे मुशायरा। आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम।

0: पारी के लखनऊ मरकज से आज का उर्दू प्रोग्राम लेकर हाजिर है आपका मेजबान शमसुल आरफीन। सलाम कबूल फरमाएं। सामईन, एक बार फिर से हम आपकी खिदमत में महफिल शायरी लेकर हाजिर हुए हैं। आज की महफिल में हमारे साथ शरीक महफिल हैं मोहतरम जनाब अतीक फतेहपुरी साहब, मोहतरम जनाब सूफी गोंडवी साहब और मोहतरम जनाब आमिर मुख्तार साहब। आप तीनों का हमारे उर्दू प्रोग्राम में खैर मकदम है।
1: शुक्रिया शुक्रिया।
0: तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके दिल के बाजार में बैठे खसारा करके आते जाते हैं कई रंग मेरे चेहरे पर, लोग लेते हैं मजा जिक्र तुम्हारा करके। इसी शेर के साथ मैं दावत देता हूँ मोहतरम जनाब अतीक फतेहपुरी साहब को कि वो अपना कलाम पेश करें।
1: गजल का मतलब समाज फरमा
0: जी अता करें मोहतरम।
1: उसकी आमद का इशारा भी जो पाया मैं।
0: वाह, उसकी आमद का इशारा जो पाया मैंने।
1: उसकी

0: वाह।
1: अपने कमरे को बहुत देर सजाया।
0: वाह वाह वाह वाह, बहुत ही खूब, बहुत खूब।

0: बहुत खूब अतीफ
1: साहब शेर सुनेगा
0: जी, अता करें मधुर
1: भाई कि घूम फिर के वो मेरे पास चला आता
0: वाह, घूम फिर कर वो मेरे पास चला आता है।

0: वाह वाह वाह वाह।
1: सामिन आइए अब अतीक फतेहपुरी साहब के खूबसूरत कलाम के बाद हम रुख करते हैं मोहतरम जनाब सूफी गोंडवी साहब की तरफ और दावत सुखन देते हैं इस शेर के साथ की सीने पे फूंकने के लिए दम बताएंगे, सीने पे फूंकने के लिए दम बताएंगे, इस दम के साथ दिल में छुपे गम बताएंगे, और सूफी तुम्हें खबर ही नहीं राज इश्क की, आना हमारे पास कभी हम बताएंगे। मोहतरम माइक पर
2: बहुत शुक्रिया। सबसे पहले एक शेर आपके सामने नजर कर
1: जी
2: रहा
1: जी अता करें मोहतरम।
2: सियासत के खेल ने खत्म कर दी मोहब्बतें, मुझे पता

0: तू मेरा भाई है, मुझे पता है
1: तू
0: मेरा भाई है। इस शेर से आगाज कर रहा हूँ ये गजल, मतलब पेश खिदमत है
1: जी जी जी
0: आपके नजर कर रहा हूँ
1: जी।
0: मुजस्समे वफा हूँ, मुजस्समे वफा हूँ, वतन परस्त हूँ गद्दार नहीं होने के। मुजस्समे वफा हूँ, वतन परस्त हूँ गद्दार नहीं होने के। अए मेरे प्यारे वतन, तू मेरे दिल में है इनकार नहीं होने के। अए मेरे प्यारे वतन, तू मेरे दिल में है इनकार नहीं होने के। और देखिएगा
1: जी जी,
0: जख्म बहुत गहरा है,
1: जख्म बहुत गहरा है
0: जो अभी तक भरा नहीं। जख्म बहुत गहरा है जो अभी तक भरा नहीं, तौबा ऐसी मोहब्बत में गिरफ्तार नहीं होने के। तौबा ऐसी मोहब्बत में गिरफ्तार नहीं होने के। और देखिएगा उस मालिक के हमदोसना में है शेर, एक पत्थर को कोहिनूर बनाने वाले
1: जी,
0: जलवानुमा हर जर्रे में किस शान से है इनकार नहीं होने के। जलवानुमा हर जर्रे में किस शान से है इनकार नहीं होने के। और एक सूफिज्म का शेर है
1: जी, जी, जी, जी।
0: जो आप लोग के नज़र कर रहा हूँ। गलती आदम ने किया सजा मूसा को दिया। गलती आदम ने किया सजा मूसा को दिया, तेरे वजूद का जलवा है कोहितूर पे दीदार नहीं होने के। तेरे वजूद का जलवा है कोहितूर पे दीदार नहीं होने के। और देखिएगा
1: जी जी, कर
0: उस मालिक के हमदोसना में
1: जी जी जी,
0: तू क्या है कैसा है क्यों है क्या कहना। तू क्या है कैसा है क्यों है क्या कहना, बहरूपिया है बस खुदा है इनकार नहीं होने। एक गजल का मतलब मुलाहिजा फरमाए
1: जी, अता करे।
0: मेरे शहर का चौक अभी जिंदा है। रौनकें मोहब्बतें शौक अभी जिंदा है। रौनकें मोहब्बतें शौक अभी जिंदा है। वो डर का तिजारत करता है इसीलिए शहर में खौफ अभी जिंदा है।
1: सामईन, सूफी गोंडवी साहब के कलाम के बाद इस महफिल के आखिरी शायर मोहतरम जनाब आमिर मुख्तार साहब का इस शेर के साथ खैर मकदम करते हैं कि बिछड़ गए तो ये दिल उम्र भर लगेगा नहीं, बिछड़ गए तो ये दिल उम्र भर लगेगा नहीं, लगेगा लगने लगा है मगर लगेगा नहीं। लगेगा लगने लगा है मगर लगेगा नहीं, और नहीं लगेगा उसे देख कर मगर खुश है। नहीं लगेगा उसे देखकर मगर खुश है। मैं खुश नहीं हूं मगर देखकर लगेगा नहीं। मोहतरम आमिर मुख्तार साहब माइक पर।
2: बहुत शुक्रिया। और एक मतला और एक शेर से शुरुआत करता हूं
1: जी जी, अता करें मोहतरम,
2: और फिर एक मुकम्मल गजल पेश करने की
1: जी जी
2: कोशिश करूंगा।
1: अता करें मोहतरम।
2: जो गुनाहों से दूर होता है उसके चेहरे पे नूर होता है।
1: वाह क्या शेर है भाई।
2: जो गुनाहों से दूर होता है
1: उसके चेहरे पे नूर होता
2: उसके
1: है
2: उसके चेहरे पे नूर होता है। मंजिलें करती हैं तवाफ उसका जिसको फन पे उबूर होता है।
1: वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह, क्या शेर है, बहुत ही खूब, बहुत खूब मोहतरम।
2: गजल के चंद अशआर
1: जी जी, अता करें मोहतरम।
2: था कभी सच का ताजदार कलम,
1: था कभी सच का ताजदार कलम
2: खो चुका अब मगर वकार कलम।
1: वाह,
2: खो चुका अब मगर वकार कलम। ये हुस्न मतलब भी
1: जी जी, अता करें मतलब।
2: हो गया कितना दागदार कलम,
1: हो गया कितना दागदार कलम,
2: हो गया कितना दागदार कलम। जब से बेचा है तुमने यार
1: कलम। वाह वाह वाह वाह, सच्ची बात है भाई, बहुत खूब, सदाकत पर मबनी ये शेर है आपका, बहुत ही खूब।
2: तुमने यार

0: शर्मसार कलम, वाह वाह वाह वाह वाह। दौरे हाजिर में ये शेर बहुत ही खूबसूरत है, आपका है, रेलिवेंट है ये शेर आपका।
1: शर्मसार कलम, और ये एक सच्चाई और
0: जी जी
1: कलम की
0: मतलब
1: है, हकीकत है। इनकलाब आए हैं जमाने में,
0: इनकलाब आए हैं जमाने में,
1: इनकलाब आए हैं जमाने में, यानी तलवार की है धार
0: कलम।
1: कलम,
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही खूब।
1: यानी
0: तलवार की है धार कलम,
1: तलवार की है धार कलम। और ये भी शेर,
0: जी अता करें।
1: अहदे हाजिर की सिर्फ बात नहीं,
0: अहदे हाजिर की सिर्फ बात नहीं,
1: अहदे हाजिर की सिर्फ बात नहीं, हर सदी का है
0: राजदार कलम, हर सदी का है राजदार कलम। क्या खूब शेर है, बहुत खूब।
1: सदी का है
0: बहुत उम्दा,
1: राजदार कलम,
0: बहुत ही खूब।
1: और ये भी शेर
0: जी अता करें। अतीक भाई आप भी शामिल हो जाइए।
1: क्या कहें दोस्तों मगर सच है,
0: क्या कहें दोस्तों मगर सच ने,
1: क्या

0: है
1: बहुत ही खूब, अब सियासत का है
0: अब
1: शिकार कलम,
0: सियासत
1: बहुत खूब।
2: का
0: शिकार कलम। और ये आखिरी शेर
1: जी
0: मक्ते से पहले,
1: जी जी अता करें मोहतरम।
0: कोई तहरीर सच न बोल
1: कोई तहरीर
0: सकी,
1: सच न बोल सकी।
0: कोई तहरीर सच न बोल सकी, चीखते रह गए
1: वाह
0: हजार
1: वाह वाह वाह वाह वाह, चीखते रह गए
0: कलम,
1: हजार कलम, बहुत ही खूब,
0: चीखते रह गए हजार
1: बहुत उम्दा है।
0: कलम।
2: चीखते
0: और ये मक्ता भी,
1: जी
0: दास्तां जुल्म की लिखो आमिर,
1: दास्तां जुल्म की लिखो आमिर।
0: दास

0: वाह वाह वाह वाह वाह
1: कहना
0: वाह,
1: लगता भी बहुत
0: कर
1: अच्छा
0: रहा
1: बहुत
0: है
1: उम्दा,
0: ये इंतजार,
1: थोड़ा बहुत
0: कलम
1: अंदाज क्या,
0: था
1: क्या कहने वाले
0: कभी
1: आपने, बहुत ही खूब।
0: सच का ताजदार, कलम खो चुका अब मगर वकार, कलम। बहुत
1: बहुत
0: शुक्रिया सर।
1: खूब आमिर मुख्तार साहब। सामईन, ये थे जनाब आमिर मुख्तार साहब, जिनके कलाम से आप हजरात लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे थे। सामईन, आज की ये खूबसूरत महफिल अपने इख्तिताम को पहुंच चुकी है। हम अपने तीनों शोरा कराम के शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारी दावत पर लब्बैक कहा। ये खूबसूरत पेशकश थी मोहतरम जनाब आसिफ इकबाल साहब की। कैसा लगा हमारा आज का उर्दू प्रोग्राम? अपने तासुरात हमें इस मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है kklsurdu@gmail.com। अगर आप अपने पैगाम हमें व्हाट्सएप करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, नोट कर लीजिए, 7991778157। एक बार फिर सुने, 7991778157। इसी के साथ आज का उर्दू प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। अपने मेज़बान शम्सुल आरफीन को दें इजाज़त, आदाब।
2: अभी आप सुन रहे थे उर्दू प्रोग्राम। आज की पेशकश थी आकाशवाणी लखनऊ के मरकज़ से।

मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलो हर्ट्स। और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे लोक संगीत, बस इस छोटे से अंतराल के बाद।

0: निखार। इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें
3: 0542227658,
4: 0542227658।
5: प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक संगीत। लोक संगीत में आज के कलाकार हैं शेर सिंह और साथी। पहले सुनिए इनके स्वर में गंगा गीत।

लोक संगीत में अभी आपने सुना शेर सिंह और साथी के स्वर में गंगा गीत। कार्यक्रम के अंत में सुनिए अब इन्हीं के स्वर में खेमटा।

शेर सिंह और साथी के गायक खेमटा के साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। 10 बजे हैं, लीजिए सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम झंकार। झंकार में पहला गीत हमने लिया है फिल्म सदमा से, जिसे गाया है सुरेश वाडेकर ने, गीतकार हैं गुलजार और संगीत है इलैया राजा का।

झंकार में अब सुनिए लता मंगेशकर की आवाज़ में जब जब फूल खिले फिल्म का ये गाना। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत है कल्याण जी आनंद जी का।

अभी आपने सुना गोलमाल फिल्म का ये गाना। आवाज़ थी किशोर कुमार की, गीतकार थे गुलजार और संगीत था आर डी बर्मन का। झंकार में अब सुनिए घर फिल्म से ये गीत। आवाज़ है लता मंगेशकर की। इस गीत को लिखा है गुलजार ने और सुरों से सजाया है आर डी बर्मन ने।

झंकार में अब अगला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म हीरा पन्ना से। आवाजें हैं किशोर कुमार एवं लता मंगेशकर की, शब्द रचना है आनंद बख्शी की और संगीत है आर डी बर्मन का।

अभी आपने सुना अमित कुमार की आवाज़ में तेरी कसम फिल्म से ये गीत। गीतकार थे गुलशन बावरा और संगीतकार थे आरडी वर्मन। झंकार में अब अगला गीत सुनिए लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ों में। फिल्म एक दूजे का ये गीत है, बोल हैं आनंद बख्शी के और सुरों से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

संगीत का कार्यक्रम झंकार। अगला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ों में। फिल्म है आनंद आश्रम। गीतकार हैं इंदिवर और संगीतकार हैं श्यामल मित्रा।

अब सुनिए मेरा साया फिल्म से ये गाना। आवाज़ है लता मंगेशकर की, गीतकार हैं राजा मेहंदी अली खां और संगीत है मदन मोहन का।

अब सुनिए लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में प्रेम पुजारी फिल्म का ये गाना। बोल हैं नीरज के और संगीत है एस डी वर्मन का।

झंकार का ये आखिरी गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म शागिर्द से। आवाज़ है लता मंगेशकर की, गीतकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: इस गीत के साथ ही आज का झंकार कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: फिर एक बार विविध भारती वाराणसी अब नए अंदाज में FM 100.6 पर सुबह 10 से 11 और शाम 5 से 7 बजे तक स्थानीय कार्यक्रमों के साथ यानी काशी कनेक्ट, बनारस बीट्स, बनारस डायरी और वाराणसी वाइब्स, साथ ही और भी बहुत कुछ जिसमें शामिल होती है आपकी बातें। और साथ ही सुनते रहिए आकाशवाणी वाराणसी मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़, DTH, DRM, न्यूज ऑन AIR ऐप और वेव्स OTT पर, कहीं भी कभी भी आकाशवाणी वाराणसी, जहां है आप वही हमारा साथ।
0: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 11 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस।

कार्यक्रम के तमाम सुनने वालों को अरुण पांडे का नमस्कार और श्रोताओं आपको आज के दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज शुक्रवार है और आप जानते हैं आज का ये प्रोग्राम यानी फरमाइशी गीत एक्सप्रेस व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित होता है। व्हाट्सएप नंबर हमारा है 7905519981 यानी 7905519981।

5591098। आज इस कार्यक्रम में शामिल फिल्मों के नाम हम आपको बता रहे हैं और उन्हीं फिल्मों से अपनी फरमाइश आपको हमें भेजनी है। संदेश में सबसे पहले फिल्म का नाम लिखिए, उसके बाद अपना नाम और जगह का नाम। एक बार ही संदेश भेजें, वक्त रहते यानी 11:30 बजे तक संदेश भेज दें। आज की फिल्में आपको बता रहे हैं अंदाज, हम है राही प्यार के, दिल तुझको दिया, सौदागर, तीसरी आंख और कच्चे धागे। इसमें अंदाज नई वाली है और कच्चे धागे पुरानी वाली, साथ ही सौदागर भी पहले वाली फिल्म है। फिल्में हैं अंदाज, हम है राही प्यार के, दिल तुझको दिया, सौदागर, तीसरी आंख और कच्चे धागे। एक संदेश में एक ही स्थान के 3-4 श्रोताओं के नाम लिखे, और अगर कई नाम है तो अलग अलग गीतों के लिए थोड़ा सा अंतराल के बाद भेजते हैं। एक बार संदेश भेजने के बाद इंतजार करें, और देखिए अभी शुरुआत ही है लेकिन कुछ एक श्रोताओं ने 12-13 बार भी संदेश भेज दिया है। आपको बता दें कि जैसे ही आप बार बार संदेश भेजते हैं, आपका नाम हमारे इस स्क्रीन पर और ऊपर यानी पीछे चला जाता है और शामिल होने की जो गुंजाइश है वो थोड़ी सी कमतर होती जाती है। तो एक बार भेज दें और इंतजार करें। और आपको शुक्रिया कह रहे हैं कि आप प्रोग्राम में जुड़े रहते हैं, प्रतीक्षा करते हैं फिल्मों के नाम की, और बताते ही बहुत सारे संदेश आपके आ जाते हैं। ये जरूर करें कि हमारे दोनों ही चैनलों पर जो प्रोग्राम आप सुनते हैं उनके बारे में अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर भेजें। पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम में नाम पत्र है लेकिन खतों से ज्यादा ईमेल आपके आते हैं, तो मेल के जरिए आप अपनी प्रतिक्रियाएं भेज सकते हैं pkldaiarvaranasi@gmail.com pkldaiarvaranasi@gmail.com। आकाशवाणी वाराणसी का फेसबुक पेज है और यूट्यूब चैनल भी है, वहां भी आप हमारे कार्यक्रमों से जुड़ सकते हैं। आइए आज के प्रोग्राम का आगाज करते हैं। पहला गीत बहुत सारे श्रोताओं की फरमाइश पर फिल्म है अंदाज, अलका याग्निक और सोनू निगम की आवाजें हैं। समीर के बोल, नदीम श्रवण का है संगीत।

गीत आप सुन रहे थे अंदाज फिल्म से। अलका याग्निक और सोनू निगम की आवाजें थी। समीर के बोल नदीम श्रवण कथा से फरमाइशें यानी व्हाट्सएप संदेश हमारे इन श्रोताओं के आए हैं। छत्तीसगढ़ पलारी से हैं प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल और यशस्वी वर्मा। बेरडी से ये व्हाट्सएप संदेश राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री ढूमने और वैष्णवी का। ऊपरकोट मोहल्ला चखुंटी बुलंदशहर के श्रोता हैं मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, शाहनवाज और सरफराज अब्बासी। चौसा गोला बक्सर से हैं जयराम बिन, सीतामुनि देवी, लालसा कुमारी, काजल कुमारी, प्रदुम्न और प्रीतम कुमार। आपने 13 दफे ये संदेश भेजा है। मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, इरफान, इसरार और नरगिस खातून हैं मुरादाबाद दुल्हापुर उत्तर प्रदेश के श्रोता। ये फरमाइश है जमानिया गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला दीपक और स्वाति जायसवाल की। आप हैं नेहरू चैक पैंठड़ से सुरेश जाधव, अनिता जाधव, आरती और पूजा। बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, प्रहलाद राजेंद्र वर्मा हमें सुन रहे हैं दुर्ग छत्तीसगढ़ से ग्राम पंचायत बठेना। तुलसी मस्किन, वीणा मस्किन, आशीष राजा, आप सभी हैं शाहदरा दिल्ली से। धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड के श्रोता हैं निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और अयान बाबू।

नांदघाट छत्तीसगढ़ से माखन वर्मा चांदनी, राहुल गोपी भूपेश और दीपेश वर्मा। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा की फरमाइश आई है। हमारे श्रोता हैं रईस खान, साबिया खान, अनस खान, शकील खान, दानियाल खान, खुले नगर अम्बिवली मुंबई महाराष्ट्र से, रामशरण विश्वकर्मा, साहिल, मंजू, रंजना और वंदना की फरमाइश, ममना हमीरपुर बुंदेलखंड से, गुरजीत सिंह नगर पंचायत बिलसांडा पीलीभीत उत्तर प्रदेश के श्रोता हैं, देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, मास्टर अल कबीर ने इसी गीत को सुनना चाहा, डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से, तीन चरोदा छत्तीसगढ़ से हैं, भिलाई ये जगह है, डॉक्टर नौशाद अहमद सिद्दीकी, बेगम हमीदुन सिद्दीकी, जिशान अहमद और शाहनवाज सिद्दीकी, पदमपुर गंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति और भूमिका अरोड़ा, मोसीम अंसारी, सरताज अंसारी, शाहिद अंसारी, सद्दाम अंसारी, मुश्ताक अंसारी बनारस के श्रोता हैं, तेलंगाना भोंगीर से हमें सुन रहे हैं मोहम्मद बुरहानुद्दीन, फैजान लल्ला, फरहान लल्ला और समायरा आजमीन गुड़िया, ग्राम भीलखेड़ी तहसील सारंगपुर राजगढ़ मध्य प्रदेश के श्रोता हैं धनराज बैरागी और सीमा बैरागी किट्टू, धनवंतरी नगर जबलपुर मध्य प्रदेश से अशोक सिंह, सुनीता सिंह, प्रीति सिंह, ऋतु सिंह और गुड़िया की फरमाइश, वाराणसी बजरडीहा धरहरा से हैं मल्लू अंसारी, इकबाल अंसारी, ऐनुल हक अंसारी और सलीम आजाद अंसारी, गांव परासी हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी और सौरभ डूडी की फरमाइश आई, राज पैलेस मऊनाथ भंजन के श्रोता हैं राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा, अख्तर खान, अमजद खान, अफजल खान, आसिफ खान, आरिफ खान, सैफ खान, कैफ खान की फरमाइश वाराणसी से ही है, कुरासी बहसा छत्तीसगढ़ से हैं पवन कुमार साहू, क्रांति देवी साहू, पंकज साहू और सुष्मिता साहू, और अब कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्में हम है राही प्यार के कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजें हैं, बाकी फिल्में हैं दिल तुझको दिया, सौदागर, तीसरी आंख और कच्चे धागे।

हम हैं राही प्यार के। इस फिल्म का युगल गीत आप सुन रहे थे कुमार सानू और गया गीत की आवाजों में। इस गीत के लिए व्हाट्सएप संदेश आप सबके। ग्राम चक फुटही असनाव बाजार बदोही से हैं गिरधारी लाल यादव, नागेंद्र कुमार, जितेंद्र कुमार और वीरेंद्र कुमार यादव। हमारे श्रोता हैं परवेज अहमद शुकुलपुरा वाराणसी से, जवाहर नगर दुर्ग से हैं आरसी कांबड़े, करुणा मीना, अश्विनी और विपुल कांबड़े, उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, कीसु तासु और अर्णव आनंद की फरमाइश पाकुड़ झारखंड से। ग्राम लसुड़िया पाता तहसील नरसिंहगढ़ राजगढ़ के श्रोता हैं गोविंद वैष्णव, दिव्या, सुमन, कोमल, परी और कृतिका।

नूर महल महसौल सीतामढ़ी के श्रोता मुसर्रत जहानाज, तलत जहानाज, फरहत जहानाज और रिफत जहानाज। ये फरमाइश बक्सर बिहार से आई है शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, असलम अंसारी, अकरम अंसारी और अल्ताफ अंसारी की। ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा और सोनम विश्वकर्मा है बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ से। संतोष कुमार राव, भारती राव, बेलाबाई सिंह और विकास सिंह की फरमाइश उमरिया मध्य प्रदेश से आई हुई है। चंदूलाल पटवा, सुनीता पटवा, हर्ष कुमार पटवा और विनीत कुमार पटवा है धरदेई सरगांव छत्तीसगढ़ के हमारे श्रोता। छिंदवाड़ा बेरडी से हैं नानाजी लाम से, मीना लाम से, तेजस जय लाम से और हर्षिता लाम से। दतरंगी भाटा पर ऐसे हमें सुन रहे हैं हीरामणि वर्मा और पारसमणि वर्मा।

शर्मा। आप हैं आदर्श नगर मलौट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मेहंदी शर्मा और सौरभ शर्मा। जमशेदपुर झारखंड सुपाही साही गांव है ये जगह। देवेंद्र तांती, राकेश तांती, प्रकाश, निशा कुमारी और रेशमा कुमारी वहां सुन रहे हैं हमें, शुक्रिया आपका। आलिया खान, नाजिया खान, शादिया खान है शाहजहांपुर के श्रोता। ये फरमाइश जलालाबाद वेस्ट से आई है, सुरेश गगनेजा, पूनम, विशाल, प्रिया, दिशानी और निमित की। बाजार रोड मुंगीसापुर से है मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरुन निशा, शबिश्ता, मोहम्मद नसीब, पलक लुबना और यश मंसूरी। सभी श्रोताओं को बता दें कि हम दुकान, प्रतिष्ठान, संस्थान, संगठन या फिर रेडियो क्लब के नाम नहीं बोले जाते। पुराने दौर में जब रेडियो क्लब रजिस्टर्ड हुआ करते थे केंद्रों से, तब उन नामों का उल्लेख हम लोग किया करते थे। तो आपसे ये गुजारिश कि प्रेजेंटर कोई भी हो, कृपया प्रयास करें कि हमारे यहाँ आप श्रोता क्लबों के नाम न भेजें और सिर्फ जगह का नाम और अपना नाम लिखें। चोचकपुर बाजार गाजीपुर के हमारे श्रोता है राम शकल चौधरी। अमितेश कुमार तिवारी की फरमाइश करनई बलिया से आई हुई है। जाकिर हुसैन अंसारी, मथीन अंसारी, कोटवा वाराणसी से सुन रहे हैं हमें। मुंदी चक भागलपुर के श्रोता है दिलीप कुमार सोनी और कमल किशोर साह। ग्राम नागर कोहरा राजनंद गांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू और आराध्या साहू की फरमाइश। मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश और राजपाल पंकज हैं मुरादाबाद से। पोफाली यवतमाल से हैं जयराम शिंगणकर, दिशांत कुमार शिंगणकर और अर्पिता। अगला गीत शामिल कर रहे हैं, बहुत सारे श्रोताओं की फरमाइश आई हुई है। फिल्म है दिल तुझको दिया, लता मंगेशकर की आवाज, बेहद मकबूल गीत।

दिल तुझको दिया फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर की आवाज थी और फरमाइशें आप सबकी। गमरिया जमशेदपुर से हैं रोहन और आर्य जायसवाल। मुजफ्फरपुर बिहार के हमारे श्रोता हैं राजू कुमार, बिट्टू कुमार, अर्चना कुमारी और कल्पना कुमारी। दिल्ली से प्रमिला सिंह, हेमा और अंतरा सिंह। और ये संदेश है रमेश चंद्र चौहान, जयनारायण चौहान, तरुण और प्रतीक चौहान का। गोपालगढ़ राजस्थान से हैं धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, ईशान छिपा और पूजा परिहार। किशोर भाटी, ममता भाटी, राकेश दाधीच और हंसमुख की फरमाइश भी भोपाल से आई है। आरजू बानू, आलिया बानू, नेहा बानू और सिमरन बानू हैं। नगर पंचायत गंगापुर गोला बाजार से। पंचकुला चंडीगढ़ के श्रोता है राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु खुराना और तुलसी मस्किन। डॉक्टर नौशाद अहमद सिद्दीकी, हमीदुन सिद्दीकी, जीशान अहमद और शाहनवाज अहमद हैं भिलाई तीन चरोदा छत्तीसगढ़ से। सावतपुर छत्तीसगढ़ से हमें सुन रहे हैं ऋषि सेन, रितेश सेन और हर्ष कुमार सेन। नवागढ़ कटई बेमितरा छत्तीसगढ़ के श्रोता नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत मयंक और पुष्पांजलि वर्मा को भी शुक्रिया। राज पैलेस मौनाथ भंजन उत्तर प्रदेश के श्रोता है राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा और कार्तिक आर्यन वर्मा। चंडीगढ़ से सतीश शर्मा, नेत्रपाल सिंह। इसरोल बाड़मेर राजस्थान के हमारे श्रोता शफी मोहम्मद सोलंकी, शाहरुख खान, मागी खान, आतिक खान और रियाज खान। बेरड़ी से अर्जुन गावनेकर, धीरज सव्वासिरे और चंचल ढोमने। पूर्णा जंक्शन मस्तानपुरा से अनंता भगत, अरुणा भगत और चेतन भगत। गमरिया जमशेदपुर से फरमाइश आई है विपिन जायसवाल, स्वाति जायसवाल, देव कुमार और आर्य कुमार जायसवाल की।

गांव लोहागढ़ ठाकुरांवाला फिरोजपुर पंजाब से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह और गुरलाल सिंह। इंदिरा विहार दिल्ली के श्रोता हैं डॉक्टर डब्ल्यू अंसारी और डॉक्टर बेबी अंसारी। मुंबई से अनु बड़जात्या, शमसुल खान और अनुराज बेनारा। नाम तो आपने यही लिखा है, उम्मीद है ये नाम सही और दुरुस्त होंगे। छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से फरमाइश आई है मोहम्मद इशा, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक और आफरीन कौसर की। जमानिया से हैं एसपी जायसवाल, डिंपल जायसवाल, आशुतोष और अभिनव जायसवाल। बबरी बाजार चंदौली से विजय, सरोज, सुंदर और सुमन जायसवाल। अनीश राजभर, मनीष राजभर, आशीष राजभर, आकर्ष, सोन, वर्षा, खानपुर, चुनार, मिर्जापुर के हमारे श्रोता हैं। अशोक कुमार प्रजापति, मीना प्रजापति, अंजलि प्रजापति और आकाश प्रजापति कोरौता वाराणसी के श्रोता। इमृति यादव ग्राम बरठी सकलडीहा चंदौली से। भास्कर दुबे की फरमाइश आई है चोचकपुर गाजीपुर से। तेलंगाना निजामाबाद के श्रोता हैं शेख अल्लाह बख्श, राबिया शेख, रहीम मुन्ना और दानिश आसिफ शेख। इरशाद अहमद अंसारी, कामरान इरशाद, अरमान इरशाद, नवेद इरशाद और अजरा तबस्सुम हैं मदरसा गेट भावपुर मड़ियाहो जौनपुर से। खैल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू, लक्ष्म मल्होत्रा, कोयल मल्होत्रा और नानक चंद मल्होत्रा। भारत भूषण अंजू श्रीवास्तव, दिव्येंद्र भूषण, संस्कृति और पौरुष हमें सुन रहे हैं व्हाइटफील्ड बेंगलुरु से। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको और शुक्रिया। गाजीपुर गांव नारी पचदेवरा डी बाबा चौराहा से अजय सिन्हा, कैलाश सिन्हा, भोले सिन्हा और उनके माता पिता। अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि और ओशिका की फरमाइश धमधा ग्राम सुखरी कला से। मोहम्मद रफीक पवार, बेनजीर कौसर, साकिब और अलमास बानो पवार हैं ताज मंजिल लक्कड़ बाजार खंडवा के श्रोता। और अब प्रोग्राम की अगली पेशकश। फिल्म का नाम है सौदागर, किशोर कुमार की आवाज, गीत संगीत रविंद्र जैन के। श्रोताओं वक्त 11:34 और 28 सेकंड का है। आज का ये कार्यक्रम यानी फरमाइश गीत एक्सप्रेस आप सुन रहे हैं अपने दोस्त अरुण पांडे के साथ।

जी हाँ, और हम तलबगार हैं आपके इस साथ के जो तमाम प्रोग्राम में आप बनाए रहते हैं। गीत आप सुन रहे थे सौदागर फिल्म से किशोर कुमार की आवाज में। फरमाइश आप सबकी फाजिलका पंजाब से है, भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल खेड़ा और लाडी खेड़ा। फैसल इमाम और मोहम्मद अफजल हैं अररिया बिहार के श्रोता। रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी और ठाकुर साहब, झुमरी तिलैया से महेंद्र चौरसिया और महेंद्र विदेशिया आज हो गए हैं। हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया और पप्पी भाटिया स्टेशन रोड जमशेदपुर के श्रोता हैं। सूर्यवाड़ी औरंगाबाद से प्रकाश बोरगांवकर, सुषमा बोरगांवकर, प्रांजलि और सोहम बोरगांवकर। धाड़ी नांदूरा महाराष्ट्र से श्रीकृष्ण बाठे, संदीप बाठे और अमूल्य बाठे। उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी बघेल, साहिल और भारती की फरमाइश। लगान पंढरिया छत्तीसगढ़ से। इसी गीत को सुनना चाहा विनोद मूडत, नेहा जैन और दीपक ने पित्रामल उज्जैन से। बोरखेड़ा ये जगह है। जनकपुरी सहारनपुर से हमारे श्रोता हैं जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पॉल डिकेस्ट्रो और विलिस डिकेस्ट्रो। समर्थ दादा देठे पाटिल, भागवत देठे पाटिल, लक्ष्मी देठे पाटिल और सानिका देठे पाटिल की फरमाइश। धामड़गांव बुल्ढाना महाराष्ट्र से। नलोई सिवानी मंडी हिसार के श्रोता हैं सज्जन कुमार जांगड़ा, राजबाला नवीन और मनदीप। दारा पंडित संजय शर्मा और प्रियंका शर्मा चौटाला हरियाणा से आपकी फरमाइश आई। सुशीला देवी मंदूरकर, सदानंद मंदूरकर, कुमार गौरव मंदूरकर है दाबकी रोड अकोला से। जयराम मीन, सीतामुनि देवी, लालसा कुमारी, काजल कुमारी, प्रदुन और प्रीतम की फरमाइश चौसा गोला बक्सर से। और कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया के श्रोता है ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय। ये जो तीन चार जगहों से आपके यहाँ नाम रहते हैं, अलग अलग दफे अलग अलग गीतों के लिए भेजा करें तो सहूलियत होगी। बठिंडा रोड मंडी डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग और तालिया नारंग। कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा आप सभी हैं सत। मजनू का टीला दिल्ली से। दिग्दर्शन और कविता हमें सुन रहे हैं मेरठ कैंट से, शुक्रिया आपका। पटेल चौक नई दिल्ली से नीलेश कुमार। हर्षिता रामेश्वर, परमेश्वर, मीनाक्षी कान्हा और मनोहर बाई बागरी, साथ में प्रभुलाल बागरी। सुदामा नगर रटलाई झालावाड़ राजस्थान से। नैना, सत्यनारायण, कपिल, शोभा और फूंदी बाई बागरी के नाम के साथ। वर्डिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा। दिल्ली से रेशमा अंसारी, सना खान और शकीला अंसारी। रतिना त्रिपाठी, राखी, आर्या, इंद्री, ओमनाथ, सारंग, शिवांग, रोली, अदिति और उनकी माता जी हैं निर्मला त्रिपाठी। जी हाँ, मौसम तो थोड़ा सा बदला हुआ है और ये मौसम बहुत सारी जगहों पर बदला है, लेकिन गर्मी तो है, तो गर्मी होनी भी चाहिए और आएगी कुछ दिनों में। जोधपुर राजस्थान के श्रोता है रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी कल्पित और बेबी गर्मी। भटीपुरा महोबा के श्रोता है कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, पंकज और आयुषी गुप्ता। पहली बार आपने संदेश भेजा है, आप लिख रहे हैं तो बहुत

स्वागत है आपका। शुरुआत में ही फिल्म का नाम लिखेंगे तो उस फिल्म के गीत के साथ आपकी फरमाइश जरूर शामिल होगी। संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़ और भरत मक्कड़ हैं पिंगावाला चौक गोराया जालंधर से। निम्नाबाद जिंद हरियाणा के श्रोता हैं जसवीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर और करमजीत कौर। जौनपुर से ऋषु मौर्य। और अब कार्यक्रम का अगला गीत, तीसरी आंख है फिल्म का नाम। आनंद बख्शी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ें।

तीसरी आंख फिल्म का युगल गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल कथा संगीत। गाने की फरमाइश तकिया मड़िया हूँ जौनपुर से जमील अहमद शाह, अल्तमस शाह, मोहम्मद दानिश शाह और मोहम्मद साजिद शाह की। ये कहें जमील जी, अगर आप खुद लिख रहे हैं तो थोड़ा सा सब्र जो कहा गया है वो इसलिए जरूरी है कि 11:07 के बाद आपने फिर 11:10 पर लिखा, फिर 34 पर जो आपने लिख दिया उसकी वजह से आपका संदेश बहुत ऊपर चला जाता है। तो एक बार भेजकर सिर्फ इंतजार करें, और जैसा इंतजार किया हमारे बेहद नियमित और इस मामले में बहुत संयमित श्रोता पटेल नगर मुगलसराय से सुनील कुमार सिंह, उन्होंने 11:03 पर ही इस गाने के लिए, जो कि आप सोचें आखिरी गाने से पहले का गाना था, फरमाइश भेजी और तब से इंतजार किया। तो शुक्रिया आपका। अगर हमारे तमाम श्रोता एक स्थान से 3-4 ही नाम भेजेंगे, एक बारी संदेश भेजेंगे, तो प्रोग्राम में गाने भी आप पूरे के पूरे सुन पाएंगे। कुम्हार गली कोलगांव से ये फरमाइश पांडु चंदन, उषा चंदन और रानी चंदन की है। पोटिया कला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक और सीमा साहू, रुपेश संघई, महेश संघई, प्रज्ञेश संघई, प्रीतेश संघई, परभणी महाराष्ट्र से। श्रोता संघों के नाम न लिखा करें यहाँ पर। रेशमी नगरी मुबारकपुर आजमगढ़ से हैं जावेद अख्तर राही, शमसुल कमर राही, बेगम रुखसार, रकीबा शाहीन और तुबा अफरीन। दतरंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा। डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, अनिष्का और तन्मय गजभिये की फरमाइश। मारहरा दरवाजा एटा से नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी और सुहेल हसन अब्बासी हैं। पुराना तालाब डुमराव के श्रोता हैं वलीउल्ला अंसारी, आसमानाज अंसारी और गुड़िया बानो। मेहरनगर उमर खेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गौहणकर, सरिता गौहणकर, प्रणीता, सिद्धांत गौहणकर और अर्जुन गौहणकर। सोनारी जमशेदपुर से हमें सुन रहे हैं कृष्णा जायसवाल और पूनम जायसवाल। नसीमुल इस्लाम गुन्नौरी और दानिश गुन्नौरी हैं डोंडी लोहारा बालोद से। रामनगर कदमा जमशेदपुर से विनोद और पिंकी जायसवाल। जमानिया रेलवे स्टेशन से फरमाइश एसपी जायसवाल, डिंपल आशुतोष और अभिनव जायसवाल की है। महादेवपारा से हैं मीरा सिमरन और माया राजवाड़े। छत्तीसगढ़ मुंगेली से मोहम्मद अल्ताफ और नीलोफर फातिमा की फरमाइश, शुक्रिया आपका। अजीत कसाना, माया देवी, रितिक और आदित्य कसाना है लदावली मुरादाबाद से। ये संदेश किशोर भाटी, दिलीप टाक, विनोद गहलोत, लोकेश जैन और वर्षा नायक का, गांधी चौक बाड़मेर से। छत्तीसगढ़ रायपुर से है मोहम्मद इमरान, इशरत परवीन, मोहम्मद हसनैन रजा और गौसिया फातिमा। कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण, कपिल मेहरा और कुणाल मेहरा हैं दादरी गेट भिवानी से। और अब प्रोग्राम की आखिरी पेशकश

कच्चे धागे फिल्म का गीत लता मंगेशकर और हेमलता की आवाजों में था, और जैसा जिक्र पिछले गाने की फरमाइशों में, वैसे ही हमारे एक और श्रोता है, और ये भी काबिले तारीफ बात है कि आप भी शुरुआत में ही आपने इस गाने के लिए फरमाइश भेजी और बिल्कुल ये आखिरी गीत था। हमारे श्रोता है अनिल गुप्ता गौंड, रमा गुप्ता गौंड, अंकुश कुमार गुप्ता और पूजा गुप्ता गौंड, पहाड़िया अशोक विहार कॉलोनी फेज 2 से। बहुत शुक्रिया आपका। छिंदवाड़ा बेरडी से है नानाजी लामसे, मीना लामसे और तेजस लामसे, सुधा शर्मा, काजल शर्मा, मीरा शर्मा और अनामिका शर्मा हैं। आपने श्रोता क्लब का नाम लिखा है और जगह का नाम नहीं लिखा है, तो कृपया जगह का नाम जरूर भेजा करें, यहाँ पर कम से कम हमारे केंद्र पर। संतोष पांडे, रेखा पांडे, शिवम पांडे, प्रगति तिवारी, कृष्णा तिवारी और स्वाति मिश्रा हैं, शुभम मिश्रा के नाम के साथ, चौखंडी हाथी बाजार वाराणसी से। शुक्रिया आपका। मोनू पासवान, पुतुल पासवान, अतुल पासवान, बनकू बादल और कनक की फरमाइश बखारीपुर मोहम्मदाबाद गाजीपुर से आई हुई है। सुरेश राठौड़, मंजुला राठौड़ हैं विशाल के साथ गांधीनगर गुजरात से। रविंद्र मोहन दास, आशा देवी, राघव कुमार, भानुप्रिया और अनुराग मोहन है किशनगंज बिहार से। डोंडी लोहरा रायगढ़ के श्रोता है उमा राज, कुलदीप राज और जगदीश राज, दिनेश काले, वंदना काले, आदेश कुमार काले और प्रोफेसर वसुधा वज्रसेन जलगांव जंक्शन के श्रोता। ये फरमाइश रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश, राहुल और प्रियंका की आई है अम्बाला हरियाणा से। अम्बागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा, सबीहा, अनस और रेहान, जमालपुर को

डोगरी खगड़िया बिहार से सिकंदर कुमार तांती, संजीव कुमार, गुडलक कुमार और अविनाश कुमार। बेवरा संबलपुर से हैं शिवदयाल वर्मा, नरोत्तम वर्मा और तुषार, साथ में वंशिका वर्मा, हेमंत गौतम, प्रकाश गौतम, छोटी छाया, रानी, आप सभी हैं। माँ काली स्थान नौली गाजीपुर से बालकृष्ण शर्मा, प्रवीण शर्मा, मुनीष शर्मा, राहुल शर्मा की फरमाइश नंगल खेड़ा फगवाड़ा से आई है। रामपुर मिर्जापुर से हैं बबलू मिश्रा, अंकुर उपाध्याय और संदीप पांडे। अख्तर खान, अमजद खान, अफजल खान, आसिफ खान, आरिफ खान की फरमाइश गंगापुर जवाहरनगर वाराणसी से आई है। सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर और कुशल शाह हैं पद्मा टॉकीज नेपानगर के हमारे श्रोता। और ये किसी श्रोता ने ऑडियो भेजा है, लेकिन आप सोचें कि यहाँ पर कैसे ऑडियो सुना जा सकता है। जयराम बिन सीतामुनि देवी और लालसा कुमारी चौसा गोला बक्सर से। फरमान सलमान और इरफान की फरमाइश दूल्हापुर से आई हुई है। कटरा मुबारकपुर से जावेद अख्तर अंसारी, निकहत परवीन और नुसरत परवीन। शीतला चौक खंडवा से हमें सुन रहे हैं विशाल सिंह और विवेक सिंह। और ये फरमाइश है एसएम जावेद, शगुफ्ता अंजुम और नजमुल होदा की गुमला झारखंड से। नांदेड़ महाराष्ट्र से हैं नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़ और ओंकार गायकवाड़। बहुत सारे श्रोता बार बार कहने के बावजूद श्रोता संघों या क्लबों के नाम जरूर भेज रहे हैं। नागपुर महाराष्ट्र से हैं कमल साहनी, पिंकी साहनी और डॉक्टर अफजल मलिक। सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा और गव्या मल्होत्रा नारकली बाजार जगराओं से। जमानिया गाजीपुर से हमारे श्रोता हैं सुरेश जायसवाल, उर्मिला दीपक और स्वाति जायसवाल। गमहरिया जमशेदपुर से रोहन और आर्य जायसवाल। बबलू यादव, सुनील यादव, ओमनी गांव रजईपुर, उगापुर भदोही से। शब्बीर हुसैन, शहजाद हुसैन की फरमाइश, लेकिन इसमें जगह का नाम नहीं है। संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़ और मन्नत मक्कड़ हैं गोरया जालंधर से। तौहीद आलम अंसारी, तौसीफ आलम अंसारी, रईस आलम अंसारी और अनीस आलम अंसारी की फरमाइश काजीपुर दरगाह रामनगर जौनपुर से आई हुई है। अख्तर खान, अमजद खान हैं गंगापुर वार्ड नंबर 3 से। दिलदारनगर गांव पश्चिम मोहल्ला गाजीपुर के श्रोता हैं जनार्दन पांडे, श्याम नारायण सिंह और दीनानाथ सिंह। तो श्रोताओं, अच्छी बात यह है कि आज जितने संदेश अभी तक आए, यानी पूरा 12 बजने को है, आपके सभी संदेश कार्यक्रम में शामिल हो गए। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ कार्यक्रम में बने रहे। और अब आज का ये प्रोग्राम यानी फरमाइशी गीत एक्सप्रेस समाप्त करने की अपने दोस्त अरुण पांडे को इजाजत दीजिए। नमस्कार। और अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर हमें भेजा करें। तमाम श्रोता, पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम में वो रविवार शाम 7:31 पर प्रसारित होता है। मेल आईडी है pkldair@gmail.com। आप सुन रहे थे व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 12 बजे हैं। प्रस्तुत है एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को मेरा यानी विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम राजकोट से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने।
2: लिखते हैं, खुशी दुनिया में उपलब्ध सब दवाओं में सर्वोत्तम दवा है, इसलिए खुश रहो और खुशियां बांटो।
3: बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना भावना बिंदु गोलू और कुसुमबाई नागनपुरे।
2: अयोध्या धाम से राजा बाबू शर्मा, राम बाबू शर्मा, राज बाबू शर्मा, सचिन शर्मा, शैलेंद्र शर्मा, सौरभ शर्मा, सोनल शर्मा, साक्षी शर्मा, सिमरन शर्मा और सोनाली शर्मा।
3: और पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू,
2: सिटी गोनियाना मंडी से गुरप्रीत सिंह जस्सल
3: और गांव फरांसी जिला हिसार से राज

0: कुमार डूडी।
1: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
0: अरे वह फिर से आप सबका स्वागत है ये भी जानिए श्रृंखला में। श्रोताओं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं समुद्र की,
1: इसके रहस्यों की और मानवता को दिए जाने वाले इसके अमूल्य योगदान की। आइए सबसे पहले जानते हैं कि भारतीय शास्त्रों में इसे किन किन नामों से पुकारा गया है। इन नामों से भी समुद्र की विशेषताओं का पता चलता है। अजीत जी, अब आपकी बारी है।
0: जी विमलेश जी, तो साथियों, समुद्र का सबसे प्रचलित नाम है सागर,
1: जी।
0: लेकिन इसे जलधि भी कहा जाता है, यानी जल को धारण करने वाला। अब आपकी बारी।
1: दूसरा प्रचलित नाम है रत्नाकर, यानी बहुमूल्य रत्नों का भंडार। विष्णु पुराण और भागवत पुराण में समुद्र मंथन का उल्लेख है। इस प्रक्रिया में बहुत से अलग अलग प्रवृत्ति वाले रत्न निकले थे।
0: श्रोताओं, समुद्र को अर्णव भी कहा गया है, यानी विशाल और गर्जन करने वाला। इसे सिंधु भी कहते हैं,
1: जी,
0: यानी जल का विशाल बहता भंडार। तो श्रोताओं, ये हैं समुद्र के विभिन्न नाम जो हम अपने शास्त्रों में पाते हैं। आज हम विशेषकर बात करेंगे समुद्र की गहराई और इसके एक खास रहस्य के बारे में।
1: वैसे तो समुद्र अपनी गहराई के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज हम जानेंगे कि दुनिया का सबसे गहरा समुद्र स्थल कहाँ है। जी जी जी, चर्चा को आगे बढ़ाएं।
0: जी श्रोताओं, मरियाना ट्रेंच दुनिया का सबसे गहरा समुद्री क्षेत्र है, जो फिलीपींस के पास प्रशांत महासागर में है, और सबसे गहरे स्थान का नाम है चैलेंजर डीप।
1: यहाँ समुद्र 10,984 मीटर से भी अधिक गहरा है, यानी करीब 11 किलोमीटर गहरा।
0: विमलेश जी, इस तथ्य को और रोचक बनाते हैं एक प्रश्न से। क्या चैलेंजर डीप की गहराई माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से अधिक है?
1: जी बिल्कुल, इस बात को एक तुलना से समझते हैं। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊपर है, जबकि समुद्र तल से नीचे चैलेंजर डीप की गहराई 10,984 मीटर है, यानी अंतर करीब 2 किलोमीटर का है।
0: 2 किलोमीटर का अंतर, अद्भुत सच में। यानी यदि माउंट एवरेस्ट को मरियाना ट्रेंच के चैलेंजर डीप में डाल दिया जाए तो यह पूरी तरह से डूब जाएगा,
1: जी
0: और ऊपर 2 किलोमीटर गहराई का पानी बचा रहेगा।
1: जी
0: अच्छा, चलिए वार्ता को कुछ और रोचक बनाते हैं। अभी हमने बात की माउंट एवरेस्ट की, सुना है कि समुद्र के अंदर भी पर्वत होते हैं।
1: जी बिल्कुल सही सुना है आपने। समुद्र के अंदर हमारी भूमि से अधिक पर्वत श्रृंखलाएं हैं, वहाँ बड़े बड़े ज्वालामुखी भी होते हैं। श्रोताओं को एक और रोचक बात बताऊं, समुद्र में भी एक ऐसा पर्वत है जिसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से भी अधिक मानी जाती है। नाम है माउना केया।
0: जी श्रोताओ, है ना रोचक बात। यदि पूरी पृथ्वी की बात करें तो इसमें समुद्र भी शामिल है।
1: जी
0: तो ये दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, ये यानी माउना केया।
1: जी,
0: और ये पर्वत प्रशांत महासागर में स्थित है।
1: जी,
0: समुद्र के ऊपर दिखाई देने वाली ऊंचाई लगभग 4,000 मीटर है, लेकिन बाकी हिस्सा समुद्र के अंदर है। माउना केया की ऊंचाई आधार से लगभग 10,200 मीटर है, यानी जबकि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग 8,848 मीटर है।
1: ये एक ज्वालामुखी द्वारा निर्मित पर्वत है जो लाखों वर्षों में लावा जमा होते रहने से धीरे धीरे बना, और परत दर परत जमा होकर इतना विशाल हो गया, आज ये एक आकर्षक पर्यटन स्थल और अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए जाना जाता है।
0: तो विमलेश जी, अब समाप्त करने से पहले श्रोताओं को समुद्र के बारे में कुछ और रोचक जानकारी दे दें।
1: जी,
0: तो सबसे पहली जानकारी है, पूर्ण विकसित ब्लू व्हेल समुद्र का सबसे बड़ा जीव है। और मालूम है, इसका दिल एक सामान्य कार के आकार से भी बड़ा होता है।
1: जी, समुद्र की गहराई के 3 भाग हैं। सतही क्षेत्र, ये वो भाग हैं जहां अधिकतर जीव पाए जाते हैं, यहां सूर्य का प्रकाश पहुंच पाता है।
0: और दूसरा क्षेत्र है मध्य क्षेत्र, यहां समुद्र का प्रकाश बहुत कम पहुंचता है, इसलिए कई ऐसे जीव यहां पाए जाते हैं जो खुद चमकते हैं।
1: और तीसरा क्षेत्र है बहुत ही गहरा क्षेत्र, यहां पूरी तरह से अंधेरा रहता है और जल का दबाव लाखों टन से भी अधिक होता है। सामान्य स्थिति में हम वहां कुचल जाएंगे, लेकिन फिर भी इस क्षेत्र में बहुत से जीव पाए जाते हैं। ये प्रकृति का चमत्कार नहीं तो और क्या है?
0: सच में ये प्रकृति का अद्भुत चमत्कार है। तो श्रोताओं, अब करते हैं समाप्त आज की चर्चा, और अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, समुद्र के सबसे गहरे स्थान का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: समुद्र के सबसे गहरे स्थान का नाम बताइए।
0: 8800440559 यानी हमारे IBRS नंबर पर, और audio@cieet.nic.in पर आप अपना संदेश भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो करना मत भूलिएगा।
0: और अब सुनते हैं आज का विशेष शैक्षिक कार्यक्रम, शीर्षक है रविंद्रनाथ टैगोर।
1: इस कार्यक्रम के द्वारा कविवर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के जीवन, उनकी साहित्यिक रचनाओं और कविताओं के बारे में जानकारी दी गई है। उनके जीवन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को भी शामिल किया गया है और बताया गया है कि उनका व्यक्तित्व कितना बहुआयामी और विलक्षण था। रविंद्र संगीत के बारे में भी इसमें चर्चा की गई है।
0: विश्व शिक्षा

0: रविंद्रनाथ ठाकुर के इस गीत में है निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा, चाहे कोई साथ दे या ना दे। आज भी रविंद्र संगीत में वही ऊर्जा, वही शक्ति और वही प्रेरणा है। रविंद्र संगीत हमारे दिलो दिमाग पर छा गया है, हमारी संस्कृति में रच बस गया है। बंगाल की माटी के कवि रविंद्रनाथ ठाकुर की गीतांजलि काव्य कृति को 10 दिसंबर सन 1913 में एशिया में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये संसार का सर्वोत्कृष्ट और दुर्लभ पुरस्कार है।
1: इस अवसर पर स्वीडिश अकादमी की नोबेल कमेटी के चेयरमैन हेरल्ड हर्जन ने कहा था, भारतीय कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने श्रेष्ठ आध्यात्मिक कविताओं की रचना की है। गीतांजलि ने बहुत से आलोचकों का ध्यान अपनी तरफ मोड़ा है और अब ये अंग्रेजी साहित्य में ही नहीं, अमेरिका और समस्त पश्चिमी दुनिया के साहित्य में भी उपलब्ध होगी। इसकी विशेषताएं हैं, कवि के विचारों में संपूर्णता, कविताओं में लयात्मक संतुलन, शब्दों का चयन, और किसी अन्य भाषा में इसका अनुवाद करना मुश्किल होगा।

0: गीतांजलि के गीतों में भारत के प्रति अगाध प्रेम और श्रद्धा है।
1: हेमोर्चित्त पुण्यतीर्थ जागरे धीरे এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে।
2: इस गीत में कवि ऐसे भारत की कामना करता है जहां हमारा मन निर्भय और मस्तक ऊंचा हो।
0: वे मनुष्य के कर्म को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। भजन, कीर्तन, कंठी माला सब बेकार। किसे पूछते हो अंधियारे मंदिर में तुम बंद किए सब द्वार। कृषक जहां खेती करते हैं ईश वहां है।
2: गीतांजलि में प्रतीक्षा का भाव अनेक रचनाओं में है, चाहे वो ईश्वर की हो या ऋतुओं की। इसमें कुछ गीत भावात्मक हैं, कुछ सोनेट शैली में लिखे गए हैं। सोनेट 14 पंक्तियों के प्रगीतों को कहते हैं जो मुक्त छंद में लिखे होते हैं। कवि रविंद्रनाथ ने इन्हीं दिनों हमारे देश का राष्ट्रगान जन गण मन लिखा और स्वयं उसे गाया भी।
3: जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ युष्कल भंगा विंध हिमाचल जमुना गंगा उत्थल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे गाहे तब जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे।
2: बंगाल ही नहीं, उनके गीत देश विदेश गांव शहर हर जगह गाए और सराहे जाते हैं। भारत के सुप्रीम

0: प्रसिद्ध जाने माने साहित्यकार रविंद्रनाथ ठाकुर एक सशक्त गीतकार और संगीतकार ही नहीं, साहित्य की अनेक विधाओं में उन्हें महारत हासिल है। वे एक सुविख्यात कवि, नाटककार, उपन्यासकार, कथाकार, गद्यकार, निबंधकार, व्याख्याता, कुशल गायक, चित्रकार और नाट्य अभिनेता होने के साथ साथ विश्व के एक महान शिक्षक हैं।
1: देश ने मनाई रविंद्रनाथ ठाकुर की 150वीं जयंती। इस अवसर पर तेलुगु के प्रसिद्ध कवि समालोचक एन गोपी ने ठाकुर बाड़ी कविता लिखी। प्रस्तुत अंश उसी कविता का है। जोड़ा सांको की एक पतली गली में है ठाकुर बाड़ी। उस गली ने खोल दिए हैं विशाल विश्व के प्रवेश द्वार। द्वार छोटे भले ही क्यों ना हो, पर विहरण है दिगंतों तक। सात मई सन 1861 को इसी ठाकुरबाड़ी में पिता देवेंद्रनाथ की 14वीं संतान रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म हुआ। ये जगह उत्तरी कलकत्ता में है। कलकत्ता जो अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के राज में इसे बनाया गया था। बचपन में रविंद्रनाथ ने बहुत से स्कूल बदले। स्कूल के बंधन उन्हें कारागार जैसे लगते। घर पर ही उन्होंने बांग्ला, संस्कृत, अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, संगीत, चित्रकला आदि विषयों का अध्ययन किया। मगर घर में नौकरों का शासन भी था, जिसे रवि ने सेवकशाही तंत्र का नाम दिया। ये नौकर बच्चों को रामायण महाभारत की कथाएं सुनाते, उन्हें घेरे रहते और दंड भी देते।
0: रविंद्रनाथ ने लगभग 7-8 वर्ष की उम्र से लिखना शुरू किया। उन्हें नए शब्दों को गढ़ने में बहुत आनंद मिलने लगा और फिर नीले कागजों की बही पर गढ़ी जाने लगी कविता। उनकी प्रारंभिक रचनाओं में बनफूल तथा कवि काहिनी विशेष महत्वपूर्ण है।

0: और फिर वो दिन भी आया जब पिता 12 वर्ष के रविंद्रनाथ को अपने साथ हिमालय यात्रा पर ले गए। प्रकृति के प्रति लगाव को देखते हुए पिता ने उन्हें वहां घूमने और अपने विचारों को व्यक्त करने की आजादी दी। यहीं रविंद्र ने प्रकृति को जाना पहचाना और उसे महसूस किया।
1: कवींद्र रविंद्र को नदी का कवि भी कहा जाता है।
0: यही प्रकृति आगे चलकर उनके काव्य सृजन का सशक्त आधार बनी। 12 वर्ष की उम्र में ही रविंद्रनाथ ठाकुर की पहली कविता अभिलाष सन 1874 में तत्व बोधिनी पत्रिका के नवंबर दिसंबर अंक में छपी। फिर दूसरी रचना भारत उस समय की अमृत बाजार पत्रिका में प्रकाशित हुई। उनका मन संगीत में रचा बसा था। उन्होंने भक्ति, प्रकृति, देश प्रेम, ऋतुओं, उत्सवों सभी के गीत गाए। उन्होंने बंगला में गीतों की स्वरलिपि साधने में कठिन साधना की थी। सांध्य संगीत और प्रभात संगीत संग्रह उनके गीतों के दो महत्वपूर्ण काव्य संग्रह हैं। प्रभात संगीत संग्रह की एक चर्चित कविता है निर्झरेर स्वप्न भंग, जिसमें सूर्य किरण के

0: स्वागत में झरना फूट पड़ता है, जो जिंदगी के उल्लास और आनंद का प्रतीक है।
1: बच्चों के लिए रविंद्रनाथ की पहली कविता है बृष्टि पड़े टापुर टोपुर। इसकी धुन लोकगीत जैसी है।

0: शिशु भोलानाथ आदि काव्य संग्रहों में रविंद्रनाथ द्वारा रचित बाल कविताएं हैं। बच्चों के लिए लिखी एक कविता दोपहर बड़ी मार्मिक है। इसका अनुवाद सिने जगत के प्रसिद्ध गीतकार गुलजार ने किया। ओ मां, अब मेरी छुट्टी करो ना। सुबह से पढ़ रहा हूं मैं, तुम्हारे कमरे में जाकर मैं पढ़ना खेलूंगा। अभी दोपहर है बस, कह दिया तुमने। उन्होंने बच्चों के लिए नाटक और कथाएं भी लिखीं।
1: सन 1877 के आसपास इन्होंने लघु कथा कहानी की एक नई विधा को जन्म दिया। इस समय की कहानियां गल्पगुच्छ के नाम से प्रसिद्ध थीं। उनकी पहली कहानी है भिखारिणी, जो रविंद्रनाथ ठाकुर की साधना पत्रिका में प्रकाशित हुई। इनमें उन दिनों के अनुभवों पर आधारित कहानियां हैं, जब रविंद्रनाथ ठाकुर जमींदारी की देखभाल के लिए शजादपुर सियालदेह गांव का दौरा कर रहे थे।

0: यही वे नदी के किनारे नौकाओं पर रहते और लोगों की समस्याएं सुनते। इनसे मिलने के लिए किसानों, मल्लाहों, केवटों, चरवाहों, कुम्हारों, यात्रियों, गायकों, बालकों, शिक्षकों, सभी का मेला लगा रहता। वे अपने स्नेह युक्त हृदय और उदारता के कारण बाबू मोशाय बन गए और इन्हीं में रविंद्रनाथ को मिलते गए अपनी कथाओं के पात्र भी।
1: जुलाई 1905, अंग्रेजी शासन ने भाषा और संस्कृति की दृष्टि से हिंदुओं और मुस्लिमों में भेद उत्पन्न करने के लिए बंग विभाजन किया। बंगीय जनता में तिलमिलाहट पनपी। रविंद्रनाथ ठाकुर ने इस अवसर पर अपने मातृभूमि से प्रेम और सांप्रदायिक एकता बनाए रखने के लिए बंगाल के लोगों का अपने गीतों द्वारा आह्वान किया।
2: आमार सोनार बांगला आमी तोमाए भालोबाशी, चिरोदिन तोमार आकाश तोमार बाताश आमार प्राणे बाजाए बाशी।

0: और फिर दिल दहलाने वाली नरसंहार की घटना घटी। अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग वाली त्रासद घटना के विरोध में उन्होंने नाइटहुड उपाधि लौटाई। इस संबंध में 30 मई 1919 को उन्होंने वॉइसरॉय को पत्र लिखा।
1: अपने देश के लिए मैं इतना तो अवश्य कर सकता हूं, चाहे उसका नतीजा कुछ भी हो, कि मैं अपने करोड़ों देशवासियों के विरोध को वाणी दे सकूं। समय आ गया है, अब ये उपाधियों के तमगे हमारे अपमान के संदर्भ

0: हमें लज्जास्पद लगते हैं।
1: रविंद्रनाथ ने नाट्य रचना के गुण विरासत में पाए। उन्होंने अपने नाटकों में बांग्ला यात्रा के लोक तत्वों और संस्कृत नाट्य परंपरा के तत्वों का सामंजस्य किया। इससे उस समय के रंगमंच को एक नया स्वरूप मिला। नाट्य से रविंद्रनाथ ने गीति नाट्यों की ओर रुख किया। उन्होंने संगीत को काव्य और नाटक का महत्वपूर्ण साधन माना है। रविंद्रनाथ ठाकुर एक शिक्षक हैं। वे जीवन और शिक्षा में सामंजस्य स्थापित करना चाहते थे। वे शिक्षा नीति अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़े रखना चाहते थे। साहित्य, संगीत एवं अन्य कलाओं को शिक्षा में स्थान दिलाने का श्रेय रविंद्रनाथ ठाकुर को जाता है। उनका मानना था कि बच्चा अपने परिवेश और पर्यावरण से जुड़कर बेहतर सीख सकता है और समझ सकता है।
2: आमादेर शांति निकेतन, यानी हमारा शांति निकेतन।
3: आमादेर शांति निकेतन, आमादेर
2: शांति। सन 1901 में शांति निकेतन आरंभ हुआ, जिसमें रविंद्रनाथ ने शिक्षा की औपचारिक रटंत विद्या से अलग बच्चों की सृजन शक्ति के विकास के लिए भारत की प्राचीन आश्रम व्यवस्था को अपनाया। एक कवि की पाठशाला में उन्होंने लिखा,
4: बच्चे का अवचेतन संवेदनशील होता है और पेड़ों की तरह वह अपनी खुराक वातावरण से ग्रहण करता है। उसके लिए यह नियमों, रीतियों, पाठ्य पुस्तकों और पाठों से अधिक महत्वपूर्ण है।
2: शिक्षार हेरफेर निबंध में सशक्त निबंधकार रविंद्रनाथ ने मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने पर जोर दिया। सामान्य स्कूलों की तुलना उन्होंने कारखानों से की है। भारतीय औपनिवेशिक शिक्षा व्यवस्था पर रविंद्रनाथ ने एक मार्मिक नीति कथा लिखी, तोते का प्रशिक्षण, जो पाठ्य पुस्तकों को बच्चों में जबरन ठूसने पर एक करारा व्यंग्य है। इस कहानी में तोते को ऐसी भयानक कष्टपूर्ण शिक्षा दी जाती है कि तोता मर जाता है। शांति निकेतन में बच्चों को पेड़ों के नीचे शिक्षा दी जाती थी और आज भी यही पद्धति जारी है। यहां बच्चों के बहुमुखी विकास के लिए अलग अलग प्रयोगशालाएं हैं, जहां सीखने की आजादी है। अब ये विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। रविंद्रनाथ ने कहा था,
4: विश्व से एकात्म होने का अर्थ अपनी पहचान खो देना नहीं है, बल्कि सीखने सिखाने के लिए एक सौहार्दपूर्ण वातावरण पैदा करना है।
1: उनका मानना था इस विश्व भारती में सभी देशों के शिक्षा संस्कृति के प्रतिनिधि शामिल हों, जिससे सारा संसार एक घोंसला बन जाए। और ऐसा हुआ भी। उनके प्रयासों से ही देश विदेश के विद्वानों को इस विश्व भारती में आमंत्रित किया जा सका।
2: वे स्त्रियों की शिक्षा के हिमायती थे। उस जमाने में भी उनकी कहानी, उपन्यासों के स्त्री पात्र, कविता लेखन और स्वतंत्र चिंतन के प्रतिरूप हैं। स्त्री शिक्षा निबंध में उन्होंने लिखा था,
4: विद्या यदि मनुष्यत्व प्राप्त करने का उपाय है और विद्या प्राप्त करना यदि मानव मात्र का जन्मजात अधिकार है, तो उसे इस अधिकार से वंचित न किया जाए। जो कुछ भी जानने लायक है वही विद्या है। पुरुष को भी जानना होगा, स्त्री को भी जानना होगा।
1: रविंद्रनाथ ठाकुर ने अनेक विधाओं में लिखा, पर स्वयं को मूलतः कवि ही माना। आमी कवि, मैं एक कवि हूँ। उन्होंने अपने 70वें जन्मदिन पर लिखा,
4: मैंने एक तपोवन का संधान करना चाहा था, शहर के भयावह घरों में नहीं,

0: आकाश के खुले वितान के नीचे सुबह से शाम तक मैं इन लड़के लड़कियों के खेल का साथी बनना चाहता था। यही मेरा सच्चा कार्य रहा है। मेरी जगह वही है, धरती की गोद। इन पेड़ों, इन जंगलों में, इस धूल, इस तृण दल में मैंने अपना जीवन उंडेला है। जो धरती की आत्मा के निकट हैं, जो उससे ही बने, उसी में ढले हैं, जो अपना अंतिम विराम उसी में पाएंगे, मैं उन सब का मित्र हूं, मैं कवि हूं।
1: स्पेनिश, जर्मन, अंग्रेजी और विभिन्न विदेशी भाषाओं में रविंद्रनाथ की कृतियों का अनुवाद किया गया है। उनकी कविताओं की अंग्रेजी में अनुदित कृतियां हैं गार्डनर, फ्रूट गैदरिंग, द फ्यूजिटिव क्रेसेंट मून। न केवल भारत में अपितु जर्मनी, अमेरिका, इटली आदि अनेक देशों के पाठ्यक्रम में रविंद्र साहित्य शामिल किया गया है।

सुनकर पुकार तुम्हारी, आए नहीं कोई पास तो क्या, चल दो अकेले। जो कायर हैं छुपते हैं ओट लेकर, तुम चलो अकेले। अरे अभागे खोलो मन, तुम बोलो पगले एक अकेले। रेगिस्तानों में कोई साथ छोड़े तो भी क्या है, कांटों के पांव में चुभने से होता क्या है, रक्त सने पथ पर बढ़ लेना अकेले। तूफानी रातों में दीपक लेकर कोई खड़ा नहीं तो भी तुम चलो अकेले। तड़ित ज्योति पीड़ा की बनने दो एकाकी मन में, चलते चलो अकेले, चलते चलो अकेले।

0: तो श्रोताओ, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यही समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। उमंग, उमंग,
2: उमंग, उमंग। अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित ये कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। 12:30:19 हुए हैं। ये समय है सुगम संगीत कार्यक्रम का। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे रश्मि चौधरी के गाए गीत और भजन। पहले ये संदेश।

0: निखार। इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए
3: 0542227658।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें
4: 0542227658।
5: रश्मि चौधरी के स्वर में पहले आपको सुनवा रहे हैं ब्रह्मानंद की भक्ति रचना।

0: दुष्यंत कुमार की गीत रचना अभी आप सुन रहे थे रश्मि चौधरी के स्वर में। सुगम संगीत कार्यक्रम अब समाप्त तो होता है। फिर एक बार विविध भारती वाराणसी अब नए अंदाज में FM 100.6 पर सुबह 10 से 11 और शाम 5 से 7 बजे तक स्थानीय कार्यक्रमों के साथ, यानी काशी कनेक्ट, बनारस बीट्स, बनारस डायरी और वाराणसी वाइब्स, साथ ही और भी बहुत कुछ जिसमें शामिल होती हैं आपकी बातें। साथ ही सुनते रहिए आकाशवाणी वाराणसी, मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़, डीटीएच, डीआरएम, न्यूज ऑन एआईआर ऐप और वेब ओटीटी पर। कहीं भी कभी भी आकाशवाणी वाराणसी, जहां है आप वही हमारा साथ।
1: सुन जा आ ठंडी हवा।
0: यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में प्रस्तुत है डालिया मुखर्जी का गायन। राग है धानी। तबले पर संगति की है गौरव बैनर्जी ने।

शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डॉलिया मुखर्जी का गायन। राग था धानी, तबले पर संगति की गौरव बैनर्जी ने।

0: विचारों की अभिव्यक्ति और अधिकार प्राप्ति का आधार सत्याग्रह।
1: आइए अपने जीवन में सत्य, अहिंसा और प्रेम को अपनाएं।
2: राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बताए मार्ग का अनुसरण।

0: हम सभी का एक ही नारा, साफ सुथरा हो देश हमारा, सफाई अपनाएं, बीमारी भगाएं, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। हम सब ने ये ठाना है, भारत को स्वच्छ बनाना है। स्वच्छता का दीप जलाएंगे, चारों ओर उजियारा फैलाएंगे। सभी रोगों की एक दवाई, घर में रखो साफ सफाई।
1: यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। 1 बजने को है अब समाचार, दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमवार को गुजरात जाएंगे। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई सन 1951 में पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री ने आज राष्ट्रीय दैनिक में लिखे लेख में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कुछ महीनों के भीतर सोमनाथ मंदिर से जुड़े 2 महत्वपूर्ण आयोजनों में शामिल होना उनके लिए सौभाग्य की बात है। प्रधानमंत्री ने सोमनाथ को भारत की सभ्यतागत शक्ति और मजबूती का प्रतीक बताया। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल की बैठक आज होगी। गृहमंत्री अमित शाह पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। श्री शाह कोलकाता पहुंच गए हैं, ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: पश्चिम बंगाल में पहली बीजेपी सरकार इस शनिवार 25 वैशाख को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेगी। पार्टी सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जेपी नड्डा सहित कई वरिष्ठ नेता समारोह में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले शुक्रवार को न्यू टाउन स्थित विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में नवनिर्वाचित बीजेपी विधायकों का बैठक होगा। आकाशवाणी समाचार के लिए संदीप दास गुप्ता, कोलकाता।
2: असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ लेगी। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते हुए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और भारतीय वायुसेना ने कल ओडिशा तट पर सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन तारा हथियार का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तारा हथियार की पहली परीक्षण उड़ान के लिए DRDO, वायुसेना, DCPP और उद्योग जगत को बधाई दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हैं कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार न हो। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा है

0: कि उन्होंने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन के साथ सार्थक बातचीत की और पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन ने भी सोशल मीडिया पर बातचीत की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया से जुड़े घटनाक्रमों और क्षेत्रीय साझेदारों के साथ समन्वय पर बातचीत की। विदेश सचिव विक्रम मिश्रे ने संयुक्त अरब अमीरात के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग राज्य मंत्री और भारत के लिए विशेष दूत रिम अल हाशमी के साथ अबुधाबी में बैठक की। दोनों नेताओं ने भारत संयुक्त अरब अमीरात व्यापक कार्यनीतिक साझेदारी और परस्पर हित के वैश्विक मुद्दों की समीक्षा की। विदेश मंत्रालय के अनुसार दोनों पक्षों ने व्यापार, निवेश, ऊर्जा, रक्षा, वित्त, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कृति और जनसंपर्क क्षेत्र में हुई प्रगति पर विचार विमर्श किया। श्री मिश्रे ने भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच अबुधाबी में हुई त्रिपक्षीय बैठक में भी हिस्सा लिया। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि तीनों देशों ने परस्पर साझेदारी मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। वियतनाम के राष्ट्रपति और कम्युनिस्ट पार्टी महासचिव तो लाम कल रात दो दिन की राजकीय यात्रा पर श्रीलंका पहुंचे। उनके साथ 209 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। ये यात्रा दोनों देशों के राजनयिक संबंधों की 55वीं वर्षगांठ पर श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिशा नायके के निमंत्रण पर हो रही है। राष्ट्रपति तो लाम श्रीलंका के नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और कोलंबो में आयोजित श्रीलंका वियतनाम व्यापार, निवेश और पर्यटन फोरम में हिस्सा लेंगे। दोनों पक्षों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है। बांग्लादेश में खसरे की स्थिति और गंभीर हो गई है। खसरे के संक्रमण से कल 12 और बच्चों की मौत हो गई। महानिदेशालय ने बताया है कि परीक्षण किट की कमी से यह संकट और गहरा गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। 1:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं और हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा। पहले सूचनाएं खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में। पुलिस अधीक्षक कार्यालय जनपद चंदौली से प्राप्त सूचना के अनुसार सोनी, पिता का नाम शमसुद्दीन, ये मजगई चकरघट्टा चंदौली की निवासी हैं और 14 फरवरी 2025 से लापता हैं। सोनी की आयु है 24 वर्ष, कद 5 फीट रंग के हुआ, इकहरा शरीर, चेहरा गोल है। आखिरी बार जब इन्हें देखा गया तो इनका पहनावा था काले छीटदार रंग की सलवार और समीज। इनके बारे में कोई जानकारी आपको मिले तो पुलिस अधीक्षक कार्यालय चंदौली को सूचना दें। बाल कल्याण समिति चंदौली के अध्यक्ष से प्राप्त एक सूचना के अनुसार अजय कुमार नामक बालक रेलवे स्टेशन दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर लावारिस अवस्था में बाल संरक्षण जिला इकाई रेलवे चाइल्ड हेल्प डेस्क को 17 सितंबर 2023 को मिला था। इस बालक को बाल गृह शिशु पटपरा टंडिया रोड पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर चंदौली में आवासित कराया गया है। बालक की आयु है 6 वर्ष, कद 130 सेंटीमीटर, रंग सांवला, चेहरा गोल है। जिस किसी भी व्यक्ति को इस बालक यानी अजय कुमार के बारे में कोई जानकारी चाहिए हो तो कोऑर्डिनेटर स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसी मुगलसराय चंदौली से संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है 6386279098। पुलिस अधीक्षक कार्यालय मिर्जापुर से प्राप्त एक सूचना, इसके अनुसार मनोरमा देवी, पति का नाम आदित्य देव पांडे, ये दुबेपुर राजगढ़ मिर्जापुर की निवासी हैं और 2 अप्रैल 2026 की शाम 6 बजे से अपने घर से लापता हैं। मनोरमा देवी की आयु है

0: 75 वर्ष कद 4 फीट 8 इंच रंग गोरा सामान्य शरीर चेहरा गोल है। ये चश्मा पहनती हैं और इनके बाल सफेद हैं। आखिरी बार जब इन्हें देखा गया तो इनका पहनावा था लाल रंग की साड़ी। इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। इनके बारे में कोई जानकारी आपको मिले तो पुलिस अधीक्षक कार्यालय जनपद मिर्जापुर को सूचना दें। ये थी खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं और अब जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष मुख्य कार्यक्रमों की। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में रात में 10:30 पर पंडित जसराज का गायन आप सुनेंगे। रात में 10 बजे विज्ञान पत्रिका प्रसारित होगी। अंजुमन कार्यक्रम होगा रात में 9:30 पर। सुगम संगीत कार्यक्रम में रात्रि 8 बजे कलाकार होंगे भूपेंद्र सिंह। कृषि जगत कार्यक्रम में शाम 6:30 पर बातचीत का विषय होगा गेंदे की व्यावसायिक खेती। विशेषज्ञ डॉक्टर अनिल कुमार सिंह। इसी कार्यक्रम में लोकगीत के कलाकार होंगे शेर सिंह और साथी। इनके गाए कुछ लोकगीत आप 1:45 पर लोक संगीत कार्यक्रम में भी सुन सकते हैं। युवाणी कार्यक्रम में शाम 5:15 पर आज के आकर्षण है आज की बात। सिने दर्पण में अभिनेत्री मीना कुमारी पर जानकारी। यूथ डायरी में आज के शब्द, इतिहास में आज का दिन, रोजगार सूचना और फिल्म संगीत। एक ही कलाकार कार्यक्रम होगा 2:30 पर। गृहलक्ष्मी कार्यक्रम में 1:15 पर आज फोन इन कार्यक्रम होगा आकाशवाणी के 90 वर्ष यादें और आप, साथ ही गीत संगीत। अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में 1:10 पर इलाकाई खबरें लखनऊ केंद्र से रिले की जाएंगी।
1: आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप शाइस्ता बानों से इलाकाई खबरें सुनिए। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल सहारनपुर में 2,131 करोड़ रुपए की लागत से 325 अवामी फलाही मंसूबों का इफ्तिताह और संगी बुनियाद रखा। इस मौके पर प्रोग्राम से खिताब करते हुए वजीर आला ने कहा कि रियासती हुकूमत की पॉलिसियों ने मगरबी उत्तर प्रदेश के चेहरे और तकदीर दोनों को बदल दिया है। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कीमों का फायदा समाज के हर तबके तक पहुँचा है।
2: प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में विकास के समग्र विकास के कार्यक्रमों को भी आगे बढ़ाया है और बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ समाज के प्रत्येक तबके को बांटा है। वंचित को वरीयता मिली है, पिछड़ों को प्राथमिकता मिली है, हर वंचित के घर तक उसकी योजना पहुंचाने का कार्य किया है और उसका परिणाम आज हमारे सामने है।
1: वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ से मर्दमशुमारी 2027 का आगाज किया। इसके साथ ही रियासत भर में खुद मर्दमशुमारी भी शुरू हो गई। शाम 6 बजे तक कल रियासत में 1,00,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी मर्दमशुमारी मुकम्मल की। मर्दमशुमारी के आगाज के मौके पर वजीर आला ने कहा कि ये महज आबादी की गिनती नहीं है बल्कि हमजहत जामे और मनसूबाबंद तरक्की की मजबूत बुनियाद है।
3: प्रदेश में 21 मई तक होने वाली स्वगणना के माध्यम से नागरिक स्वयं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपनी जानकारी दर्ज कर सकेंगे। इसके उपरांत फील्ड कार्य के अंतर्गत जनगणना कार्मिक घर घर जाकर सूचीकरण का कार्य करेंगे। जनगणना के पहले चरण में 22 मई से मकानों की गणना शुरू होगी जो 22 जून तक चलेगी। दूसरे चरण में प्रत्येक व्यक्ति की गणना की जाएगी। इस बार जनगणना में जाति गणना को भी सम्मिलित किया गया है। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
1: गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने कल जनभवन में डिजिटल तौर पर अपनी मालूमात दर्ज करके खुद गिनती के अमल में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने रियासत के शहरियों से अपील की कि वो मर्दमशुमारी के अहलकारों की तरफ से दरखास्त करदा मुकम्मल, दुरुस्त और हकायक पर मबनी मालूमात फराहम करें।
4: जनगणना लोकतंत्र की आधारशिला है। इसके माध्यम से प्राप्त आंकड़े देश और प्रदेश की नीतियाँ, विकास कार्यों तथा कल्याणकारी योजनाओं के निर्माण का आधार बनते हैं। आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, संस्थानों के वितरण और शहरी योजना जैसे अनेक क्षेत्रों में जनगणना की महत्वपूर्ण भूमिका है। आपकी दी गई सही जानकारी न केवल प्रदेश बल्कि पूरे देश के विकास की दिशा तय करने में मदद करेगी।
1: वजारत रेलवे ने ऐलान किया है कि ट्रेनों को

एडवांस पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम में तब्दील करने का अमल अगस्त में शुरू हो जाएगा। कल नई दिल्ली में एक जायजा मीटिंग में रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने अफसरान को हिदायत दी कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि 40 साल पुराने रिजर्वेशन सिस्टम से नए निजाम में तब्दीली के दौरान मुसाफिरों को किसी किस्म की तकलीफ का सामना न करना पड़े। रिजर्वेशन का निजाम 1986 में शुरू किया गया था और गुज़िश्ता 40 वर्षों में इसमें कई तब्दीलियां आई हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 2024 के आदाद और शुमार से पता चलता है कि उत्तर प्रदेश में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में जरायम की शरह में उत्तर प्रदेश मुल्क में 18वें नंबर पर था। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस राजीव कृष्णा ने कहा कि गुज़िश्ता 9 सालों में जदीद पुलिस स्टेशन बनाए गए हैं और ज्यादा चौकस एंटी रोमियो स्क्वाड, हर थाने में खवातीन के लिए वक्फ करदा हेल्प डेस्क, कमजोर तबकात को तेज रफ्तार इंसाफ फराहम करने वाली फास्ट ट्रैक अदालतें और मुनज्जम जराइम के खिलाफ सख्त कार्रवाई ने उत्तर प्रदेश में कानून की हुक्मरानी कायम की है। हुकूमत ने रियासत भर में नस्ब तमाम स्मार्ट मीटरों के पोस्ट पेड मोड में चलाने के अहकामात जारी किए। वजीर तवानाई एके शर्मा ने कहा कि तमाम स्मार्ट मीटर्स को फौरी असर से पोस्ट पेड सिस्टम में तब्दील किया जा रहा है। अब सार्फिन की बिजली इस्तेमाल करने के बाद ही बिल वसूल किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सार्फिन को बिल हर माह की 10 तारीख तक SMS और व्हाट्सएप के जरिए भेजे जाएंगे। वजीर तवानाई ने कहा कि स्मार्ट मीटर और बिजली के बिलों से मुतालिक शिकायात के तस्फीये के लिए 15 मई से 30 जून तक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और सब डिविजनल ऑफिसर के दफ्तर में खसूसी कैंप और इमदादी मराकज कायम किए जाएंगे। रियासत में सिविल पुलिस के सब इंस्पेक्टर उसके मसावी ओहदों पर बराए रास्त भर्ती के लिए 2025 के तहरीरी इम्तिहान के नतायज जारी कर दिए गए हैं। इस भर्ती के अमल के लिए तकरीबन 15,75,760 उम्मीदवारों ने दरखास्त दी, जो कि 4,543 असामियों के लिए मुनक्किद की गई। इनमें से 12,333 उम्मीदवार अगले मरहले के लिए कामयाब करार पाए हैं। ये इम्तिहान 14 और 15 मार्च 2026 को मुनक्किद हुआ था। रिक्रूटमेंट बोर्ड के मुताबिक दस्तावेजात की तस्दीक और फिजिकल टेस्टिंग मई के तीसरे हफ्ते में की जाएगी। की वेबसाइट पर मुकम्मल तफसीलात दस्तयाब कराई गई हैं। आज 8 मई को रेडक्रॉस का आलमी दिन है। आलमी रेडक्रॉस का दिन हर साल 8 मई को मनाया जाता है। इस दिन का मकसद इंसानियत खिदमत और खैरात के जज्बे को फरोग देना है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नशर किया जाएगा।

हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। 1:15 और 35 सेकंड हुए हैं। संदेश के बाद महिलाएं सुनेंगी अपना कार्यक्रम गृहलक्ष्मी।

0: निखार। इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो,
3: 0542227658।
1: ओ
4: 0542227658।
1: लो अभी फोन लगाता हूँ।
4: 0542227658।
5: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
6: सखियों के साथ,
7: सखियों की बात,
6: सखियों के जज्बात,
8: गृह लक्ष्मी।
9: कार्यक्रम सुनने वाली सभी श्रोता सखियों को आपकी सखी सुरे

0: रेखा
1: और तंजील का नमस्कार।
0: प्यार भरा नमस्कार। तंजील बड़ी शांत हो गई, कुछ सोच रही है। क्या सोच रही हो?
1: मैं सोच रही हूँ कि कुछ लोग दुनिया में ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपने लिए जीते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, अपने परिवार के बारे में सोचते हैं। लेकिन दी, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दूसरों की चिंता करते हैं।
0: बिल्कुल सही है तंजील, और हमें अपने अलावा दूसरों की चिंता करनी भी चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर ना बहुत सारे गुण होते हैं। उनमें एक ऐसा गुण है जिसे कहते हैं ना कि जब हम दूसरों के लिए करते हैं ना तो सुकून मिलता है। हम हमेशा अपने लिए खुशी तलाश करते हैं अलग-अलग कार्यों में, और जब सफल होते हैं तो खुशी तो हमें मिलती है लेकिन सुकून नहीं मिलता है। सुकून बहुत कम कार्यों में मिलता है, और सुकून तभी मिलता है जब हम कुछ दूसरों के लिए करें, है ना? अब दूसरों के लिए क्या किया जा सकता है? आजकल तो किसी के पास उतना समय नहीं है ना। क्या किया जा सकता है ऐसा कि दूसरों के लिए कुछ ऐसा करें ताकि हमें बहुत सुकून मिले?
1: कि जब भी कोई किसी मुसीबत में है तो हम उसकी मदद कर सकते हैं, या जब भी हम रास्ते में जा रहे हैं किसी घायल को देखें, चोट लगी, परेशान है, तो उसकी मदद करना।
0: बिल्कुल सही है। आज हमारे पास, देखिए सखियों, ये सही बात है कि बहुत ज़्यादा समय तो नहीं रहता है हम गृहिणियों के पास, लेकिन हाँ, जब हम कहीं जा रहे हैं, किसी से मिलते जुलते हैं और ऐसा महसूस हो कि नहीं, उसे हमारी आवश्यकता है, चाहे सेवा के रूप में या किसी भी प्रकार के मदद के रूप में, जैसे सड़क ही अगर कोई बुज़ुर्ग महिला पार करना चाह रही हो तो थोड़ा सा उसे थोड़ी सी मदद करा दे, या रास्ते में कई बार ऐसा भी होता है कि जाते जाते ऐसा दिखाई दे जाता है कि कोई गिर गया, उसे चोट लग गई या कोई छोटा एक्सीडेंट हो गया, तो उस समय बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं जो सीधा निकल जाते हैं, उसे नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन वहाँ हमारी जिम्मेदारी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही होती है कि थोड़ा रुके, अगर उन्हें मदद की आवश्यकता है तो मदद करें, डॉक्टर तक पहुंचाए, उसके बाद आप अपने काम पर जा सकते हैं। ये है एक सेवा का भाव, है ना?
1: ऐसी ही सेवा, समर्पण और मानवता का नाम है रेड क्रॉस। आज 8 मई के इस खास दिन पर हम बात कर रहे हैं विश्व रेड क्रॉस दिवस की। यह दिन रेड क्रॉस आंदोलन के संस्थापक हेनरी ड्यूना की याद में मनाया जाता है।
0: और जिन्हें आईसीआरसी के संस्थापक और पहले नोबेल प्राइज़ के विजेता के रूप में जाना जाता है, और आज का ये दिन हम विशेष रूप से मनाते हैं। वैसे तो सेवा का भाव जो है वो कभी भी कहीं भी हो सकता है, होना चाहिए, लेकिन विशेष रूप से आज का दिन जो हम मनाते हैं उसका उद्देश्य ये है कि मानवता और सेवा की भावना को बढ़ावा देना, आपदा, युद्ध और स्वास्थ्य संकट में सहायता देने वाले स्वयं सेवाओं का सम्मान करना, रक्तदान, प्राथमिक उपचार और मानवीय सहायता के प्रति जागरूकता फैलाना, सभी को अवेयर करना कि आप सेवा करिए, है ना? और कुछ और भी खास है?
1: और इस बार इस दिवस की थीम रखी गई है मानवता को जीवित रखना, यानी कीपिंग ह्यूमैनिटी अलाइव।
0: ठीक है, वो तो सेवा तो हमें हमेशा करनी ही चाहिए, लेकिन तुम्हें एक बात पता है कि कुछ खास भी हो रहा है आजकल हमारे आकाशवाणी में, खास तौर से क्या
1: आज
0: हो रहा
1: हम
0: है?
1: आप सबके लिए एक खूबसूरत कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं।
0: वो तो हम सखियों से बात करेंगे ही, लेकिन सखियों आपको बता दें कि आकाशवाणी बहुत ही जल्दी पूरा करने जा रही है अपने 90 वर्ष, तो हम बातें करेंगे, कुछ अपनी यादों को ताज़ा करेंगे और बहुत सारी बातें अपनी सखियों से करेंगे। लेकिन सखियों, आपको मैं ये बताऊं कि जो 90 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, आकाशवाणी ने देश को समाचार दिए, संगीत दिया, संस्कृति दी, और हर कठिन समय में लोगों का साथ निभाया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ऑल इंडिया रेडियो या आकाशवाणी की। भारत में रेडियो का जो प्रसारण हुआ वो 1930 के दशक में हुआ, और 1926 में ऑल इंडिया रेडियो का अस्तित्व आया, और बाद में इसका नाम आकाशवाणी मिला, इसे दिया गया आकाशवाणी का नाम। स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर स्वतंत्र भारत के निर्माण तक आकाशवाणी ने देश की आवाज़ बनकर लोगों को जोड़ा। गांव-गांव तक पहुंचने वाली ये ध्वनि केवल सूचना का माध्यम ही नहीं, बल्कि संस्कृति, शिक्षा, मनोरंजन का धड़कन बन गई। तो और एक ख़ास बात और ये है सखियों की, आकाशवाणी जो काम करती है वो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के तर्ज पर कार्य करती है। तो इसी संबंध में हमने बात की है अपनी बहुत सारी सखियों से जो रेडियो की बहुत पुरानी श्रोता रही हैं।

0: हमारी लिसनर हैं, तो चलिए उनसे सुनते हैं कि वो आखिर क्या कह रही हैं। हेलो सखी, क्या नाम है आपका?
1: मैं सुचित्रा,
0: कहाँ से बात कर रही हैं?
1: मैं वाराणसी से बात कर रही हूँ।
0: तो सुचित्रा जी, आप कुछ करती हैं?
1: जी मैं अध्यापिका हूँ, यहाँ एक स्कूल है उसी में।
0: तो आपके ऊपर तो काम की जिम्मेदारी भी बहुत ज्यादा होगी, स्कूल में
1: जी
0: बच्चों
1: जी
0: को पढ़ाना और उसके बाद घर भी आकर बहुत सारे काम स्कूल के करने पड़ते हैं ना?
1: बहुत सारे करने पड़ते।
0: ये तो है ही, लेकिन सारे काम के बीच में अगर आपको कुछ अपने लिए समय निकालना हो, अपने इंटरटेनमेंट के लिए, तो आप क्या करना चाहती हैं?
1: जी देखिए, मैं रेडियो तो तकरीबन डेली सुनती हूँ।
0: आपको पता है कि आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने वाले हैं?
1: जी पता है, आजकल लगातार चल रहा है कि रेडियो के 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं।
0: जी हाँ, और हमारे लिए आकाशवाणी का मतलब रेडियो ही है। तो आप क्या सुनना चाहती हैं? रेडियो पे आपको क्या चीज अच्छा लगता है, या आपने सुनना कब से शुरू किया रेडियो?
1: मैंने रेडियो, मतलब मुझे एग्जैक्टली ऐसे बता नहीं सकती, लेकिन ये मुझे पता है कि जब से मेरी याददाश्त है लगातार मैं रेडियो सुन रही हूँ, क्योंकि पेरेंट्स भी सुनते थे, मैं भी सुनती हूँ, और मेरे घर में मेरी मम्मी पापा सभी लोग रेडियो हम लोग सुना करते थे। पहले तो इतने इंटरटेनमेंट के साधन थे नहीं अपने पास, तो हम लोग रेडियो सुनते थे। रेडियो हम लोग हमेशा से सुनते आ रहे हैं, और इसमें बहुत अच्छी जानकारी मिलती है, और हर चीज के बारे में अवेयरनेस होता रहता है। और रेडियो में एक कार्यक्रम आता है, इनसे मिलिए, वो कार्यक्रम मुझे बहुत अच्छा लगता है।
0: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको वो कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है। लेकिन क्यों अच्छा लगता है आपको?
1: उस कार्यक्रम में देखिए, मुझे जो चीज अच्छी लगती है वो सबसे अच्छी ये है कि उसमें जिन लोगों से जो भी मिलाया जाता है, या जिनके बारे में कैरेक्टर स्केच एक बताया जाता है कि इन्होंने कैसे ये यहाँ तक पहुंचे, चाहे एक्टर हो, एक्ट्रेस हो, या बड़े बड़े कोई
0: बड़ी
1: इस
0: हस्ती,
1: तरह
0: बड़ी,
1: के गवर्नमेंट
0: हाँ
1: ऑफिशियल्स हो,
0: बिल्कुल।
1: जी, तो उनको सुन के ये प्रेरणा मिलती है कि मतलब ये लोग भी हम लोग जैसे नॉर्मल थे, जो आज इन ऊंचाइयों तक पहुंच चुके हैं। तो हम लोगों को कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा लगता है कि हम लोग भी इनसे प्रेरणा लेके आगे बढ़ सकते हैं।
0: और आपको क्या सुनना पसंद है?
1: आपका कार्यक्रम भी बहुत अच्छा लगता है।
0: आप हमारी सखियों के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगी?
1: बस यही कि थोड़ी देर के लिए फोन, इंस्टाग्राम, ये सब बंद करके कुछ देर आप पुराने समय में वापस चले जाइए और रेडियो सुनिए।
0: अपनी पसंद का कोई गीत सुनना चाहेंगी आप?
1: जी बिल्कुल, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है।
0: तो चलिए आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो,
1: हेलो सखी, आप अपना नाम बताइए।
0: मेरा नाम नीलम सिंह है,
1: आप कहाँ से बोल रही हैं?
0: भोजबीर से बोल रहे हैं।
1: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तो आप अपनी रेडियो से जुड़ी कुछ यादें बताना चाहेंगी? आप रेडियो कब से सुनती आ रही हैं?
0: रेडियो तो हम सब बचपन से सुनते आ रहे हैं। रेडियो तो देखिए, हम सब हमेशा से सुनते आए हैं, बहुत पसंद रहा, बचपन से सुनते आए हैं। तो
1: जी
0: रेडियो के गाने हमें जो है समय समय से बहुत बढ़िया लगते हैं। आपका ये बिना का गीत माला हमें बहुत पसंद था, हम सब बहुत सुनते थे, हमारी पूरी फैमिली सुनती थी साथ में।
1: नीलम जी, हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। हेलो, नमस्ते,
0: नमस्ते, रंजना
1: क्या नाम है आपका?
0: श्रीवास्तव।
1: रंजना जी, गृहलक्ष्मी के इस फोन इन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे ये
0: हाँ,
1: जानना चाहेंगे सबसे पहले कि आप क्या करती हैं?
0: मैं अपना बिजनेस चलाती हूँ,
1: क्या करती हैं?
0: महिलाओं को ट्रेनिंग देती हूँ, फैशन डिजाइनिंग, ब्यूटिशियन।
1: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, यानी कि आप खुद भी अवेयर हैं और लड़कियों को और महिलाओं को अवेयर करती हैं कि उन्हें स्किल होना चाहिए।
0: हाँ,
1: अच्छा, आप ये बताइए कि आप रेडियो कब से सुन रही हैं?
0: रेडियो तो बहुत पहले से हम लोग सुन रहे हैं, बचपन से ही, क्योंकि पहले कोई संचार माध्यम नहीं था, और टीवी और रेडियो ही ऐसा माध्यम था जिससे हम लोग मनोरंजन कर सकते थे। तो रेडियो में बहुत सी, जैसे चुटकुला हुआ, झरोखा हुआ, और मतलब मनोरंजन का साधन रेडियो और टीवी ही था, जिससे महिलाएं और घर के पुरुष लोग बैठ करके उसको देखते थे, सुनते थे। यही साधन था और हम लोग इससे एंजॉय करते थे। ज्ञान का भी साधन है, जिससे अगर हम लोग कोई बिजनेस कर रहे हैं, कहीं हम लोग को प्रचार करना है, तो रेडियो के माध्यम से हम लोगों का प्रचार का माध्यम बहुत अच्छा है।
1: तो कोई ऐसी याद जो रेडियो से आपकी जुड़ी हो, आप हमें और हमारी सखियों को साझा करना चाहेंगी?
0: रेडियो के माध्यम से जैसे कि घरेलू महिलाएं हैं जो कुछ जानती नहीं है, और दोपहर में प्रोग्राम चलता है, और उसमें ब्यूटिशियन, फैशन डिजाइनिंग, लोगों को बुला करके उनको अवेयर किया जाता है और बताया

0: जाता है, जिससे महिलाएं जो है उससे बहुत आगे बढ़ती हैं और रेडियो के माध्यम से उनको जानकारी, अपने को निखारना, अपने को संवारना उनसे बहुत अच्छा हो जाता है। अगर कहीं भी टूर पे जा रहे हैं तो अच्छी अच्छी चीजें बताई जाती हैं, चुटकुला बताया जाता है, मनोरंजन होता है और हम लोग का समय इससे बहुत अच्छा कट जाता है, रास्ते भी बहुत अच्छे कटते हैं। तो रेडियो माध्यम बहुत अच्छा साधन हो।
1: हेलो सखी, क्या नाम है आपका?
2: मेरा नाम है पुष्पा।
1: पुष्पा जी, आपका गृहलक्ष्मी के फोन इन कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आप रेडियो कब से सुन रही हैं?
2: रेडियो तो जब से आया है, मतलब बचपन से सुनते आ रहे हैं। पहले टीवी तो हुआ नहीं करता था, रेडियो ही होता था। मेरी उम्र इस समय 25 ईयर है, तो बहुत पहले से जो है, जब छोटे थे तब से सुनते आ रहे हैं।
1: ओह, यानी आप बहुत ही पुरानी लिसनर हैं। आपसे ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि आप बहुत पुराने समय से रेडियो सुनती आ रही हैं। रेडियो में आपको क्या अच्छा लगता है बाकी दूसरे सोशल मीडिया से? रेडियो में आपको क्या अच्छा लगता है?
2: रेडियो के बहुत प्रोग्राम सुना करते थे, अभी भी सुनते हैं। रेडियो में सुबह सबसे पहले शुरुआत वंदे मातरम बजता है, ये बहुत अच्छा लगता है
1: जी।
2: और दोपहर में गृह लक्ष्मी कार्यक्रम आता था, वो भी हम जरूर सुनते हैं, जिसमें महिलाओं के लिए जो है वो काफी कुछ रहता है, तो उसको भी सुनते हैं। इसके अलावा गाने, पहले विनाता गीत माला आया करता था
1: जी,
2: वो मेरा पसंदीदा प्रोग्राम था। इसके अलावा गाने का तो हर प्रोग्राम सुनते थे। अमीर सयानी का प्रोग्राम आता था जो है, गाने बजते थे।
1: यानी आकाशवाणी के कार्यक्रम सुनकर आपका समय अच्छा व्यतीत हो जाता है?
2: हाँ, मेरा समय इसी से कटता था। पूरी दोपहर हम लोग जो है रेडियो सुनते थे, सभी घर के लोग। और रात में जो हवा महल एक कार्यक्रम आता
1: जी,
2: वो नाटक मुझे बहुत अच्छा लगता। हवा महल मतलब इतना मजाकिया कार्यक्रम है।
1: अच्छा, तो आकाशवाणी से जुड़ी हुई कैसी कोई ऐसी याद जो आप हमें और हमारी सखियों को साझा करना चाहें?
2: इस शादी में मुझे घर से रेडियो और ट्रांजिस्टर दोनों दिया गया था। तो हम लोग जो है जब खाना भी बनाते रहते थे, कहीं रहते थे तो ट्रांजिस्टर रख करके सुनते थे। गर्मियों में पत्ते चले जाते थे कोने, तो उसको ट्रांजिस्टर ले करके जाते थे सुनने के लिए। तो बहुत समय तक जो है ये हमारे साथ
1: मुझसे और मेरी सखियों से अपनी बातें साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
1: हेलो सखी
3: जी,
1: क्या नाम है आपका?
3: जी मेरा नाम प्रियंका है।
1: प्रियंका, कहाँ से बात कर रही हैं?
3: जी मैं मड़ुवाड़ी से बात कर रही हूँ।
1: मड़ुवाड़ी से बात कर रही हैं। आप कुछ करती भी हैं या हाउसवाइफ हैं?
3: जी मैं हाउसवाइफ हूँ।
1: हाउसवाइफ हैं, तो हाउसवाइफ की जिम्मेदारी तो बहुत ज्यादा होती है, सारा दिन काम ही रहता है ना?
3: जी बिल्कुल।
1: अच्छा, आप ये बताइए कि आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, तो आप क्या रेडियो सुनती हैं?
3: जी मैं बहुत सुनती हूँ। पहले तो बहुत ज्यादा सुनती थी, जैसे शादी के पहले मैं बहुत सुनती थी। शादी के बाद पीढ़ी हो जाती है, तो वैसे भी समय की व्यस्तता रहती है। फिर भी जैसे खाना बनाते समय या कुछ काम करते समय गाना सुनना हमें बहुत पसंद है। पुराने गाने हम रेडियो लगा लेते हैं।
1: अच्छा, गाने सुनना बहुत पसंद है ना?
3: जी, और रेडियो पे ये कि पुराने गाने आते हैं, हमारे मनपसंद गाने अक्सर बज जाते हैं, इसलिए हम अक्सर रेडियो ही लगा करके सुनते हैं।
1: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। और गाने के अलावा आपको और क्या अच्छा लगता है आकाशवाणी का, रेडियो का?
3: जी आकाशवाणी में देखिए हमें बहुत सारी जानकारियां भी मिल जाती हैं, जैसे हमारी सखियां बहुत सारी कुछ भी पढ़ता है, कोई भी दिवस पढ़ता है, जैसे कि अर्थ डे हो गया या पर्यावरण पे या किसी भी बीमारी पे, ये बातें होती रहती है, लेकिन मुझे जानकारी सखियों से मिल जाती है।
1: बिल्कुल, ये तो ये तो अच्छी बात है कि जानकारी का खजाना भी हम हमेशा अपनी सखियों के लिए लेकर आते ही हैं। ऐसा कोई संस्मरण रेडियो के लिए जो आपको याद हो, कुछ सुनाना चाहेंगी?
3: जी जरूर। एक बार जब मेरी शादी नहीं हुई थी, दोस्तों से एक बार बहुत ज्यादा मेरी नाराजगी हो गई थी। उस समय बहुत ज्यादा नाराज थे, उस समय वही गाना अचानक से बज गया था, तो मन खुश हो गया।

0: और पता शांत भी हो गया, तो मुझे लगा रेडियो एक आपके मन की शांति के लिए बहुत अच्छा है कि जो कहीं ना कहीं समय पे वैसा गाना बज गया तो अच्छा लगा था।
1: शिकायतें दूर हो जाती हैं, है ना?
0: जी।
1: तो आप अपनी पसंद का कौन सा गीत सुनना चाहेंगी?
0: आंधी पिक्चर का अगर कोई भी गाना सुना देंगी तो मुझे अच्छा लगेगा।

0: हेलो सखी, नमस्ते।
1: नमस्ते।
0: गृहलक्ष्मी के फोन इन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम उषा उपाध्याय।
0: उषा जी कहाँ से बात कर रही हैं?
1: मैं वाराणसी से बात कर रही हूँ।
0: वाराणसी से बात कर रही हैं।
1: हाँ,
0: तो आप क्या
1: वाराणसी।
0: करती हैं उषा जी?
1: मैं तो एक गृहिणी हूँ।
0: गृहिणी है,
1: हाँ
0: ये तो बहुत अच्छी बात है। वर्किंग वुमन भी एक गृहिणी ही होती है ना?

0: हाँ, वो तो रहती है,
1: हाँ,
0: सही बात है।
1: बिना घर संभाले एक महिला का काम ही नहीं चलता है।
0: हाँ, उसके बिना तो आप काम नहीं चलता, सही बात
1: बिल्कुल। तो
0: है।
1: आप रेडियो कब से सुन रही हैं, आकाशवाणी कब से सुन रही हैं?
0: रेडियो तो मैं तब से 10-11 साल की तभी से मैं सुन रही हूँ, और उसके जितने लोकगीत आते थे अक्सर करके मैं लिख लेती थी, और वो लोकगीत का इतना हमको प्रभाव आज भी है कि अब भी हम जैसे गाना हम लिखते हैं, कहीं से भी आएगा तो लिख लेते हैं। और बल्कि जैसे हम बच्चे से कहते हैं कि मेरी डायरी, तो बच्चे कहते हैं मम्मी इतनी डायरी तुम भर ले, आपके बेटा ये सब काम आएगा। बहुत पुराने पुराने गीत हैं इसमें, तो उसको हमने लिखा। हमारे पिताजी बहुत एक तरह से संगीत से बहुत वो थे, कहते थे कि लिखो लिखो बेटा, और लिखते थे वही गाना हम लिखे, उसके बाद जो वही गाना हम सबके यहाँ गाने शुरू कर
1: अरे
0: दिए।
1: वाह। और अच्छा, आप ये तो बताइए कि आपकी उम्र क्या है?
0: मेरी उम्र इसमें 70 साल।
1: वाह, यानी आप हमारी बहुत पुरानी श्रोता हैं।
0: हाँ जी,
1: आपको आकाशवाणी से प्रसारित किए गए और कौन-कौन से कार्यक्रम पसंद आते हैं?
0: वैसे तो हमको इस समय हम अंगनैया भी सुनते हैं, सखी सहेली सुनते हैं, और दोपहर में एक प्रोग्राम और आता है 1 बजे से जो आता है, इस समय जो सो विविध भारती भी, इसका प्रोग्राम हम सुनते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है। बल्कि दिन भर मैं रेडियो अकेले रहती हूँ, दिन भर रेडियो में लगा के सुनती रहती हूँ, टीवी से उतना हमको जो सो ज्यादा लगाव नहीं है, बस रेडियो से ही सुनते हैं। बल्कि
1: हाँ,
0: बेटी
1: हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और देखो तंजील, सखियों से बात करते करते कब समय हो गया पता ही नहीं चल रहा है ना, और लग रहा है कि अभी हम और भी बातचीत करते जाएं, क्योंकि यही हमारी सखियां हैं, यही हमारी श्रोता हैं जो हमें सुनती हैं और अपनी ओपिनियन भेजती हैं। और हमारा कार्यक्रम आपको बहुत अच्छा लगता है ये सुनकर, यकीन मानिए हमें बहुत अच्छा लगता है। तो देखो, घड़ी की सुई हमें इशारा कर रही है कि हमें अब चलना चाहिए। तो सखियो, हम अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मिलने आएंगे, लेकिन तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।
2: नमस्कार।
3: सखियों के साथ,
1: सखियों के बाद,
3: सखियों के जज्बात,
4: गृह लक्ष्मी।
5: महिलाएं सुन रही थीं अपना कार्यक्रम गृहलक्ष्मी। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। 1:45 और 14 सेकंड हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक संगीत। इस कार्यक्रम में कलाकार हैं शेर सिंह और उनके साथी। पहले सुनिए इनका गाया एक निर्गुण।

इस दादरा के साथ ही आज का लोक संगीत कार्यक्रम समाप्त होता है। कार्यक्रम में कलाकार थे शेर सिंह और उनके साथी। इनके गाए कुछ लोकगीत आप शाम 6:30 पर कृष्ण जगत कार्यक्रम में भी सुन सकते हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए आज कोलकाता में बैठक। डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी ग्लाइड हथियार तारा का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर को भारत की दृढ़ता, एकता और सभ्यतागत शक्ति का शाश्वत प्रतीक बताया। अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय ने ट्रंप प्रशासन द्वारा भारत तथा अन्य देशों से आयात पर लगाए गए 10% शुल्क को अवैध घोषित किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट है कि ईरान के पास परमाणु हथियार न हो। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला आज शाम दिल्ली में कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल आज अपने नेता का चुनाव करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में शामिल होने के लिए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह कोलकाता पहुंच गए हैं।
1: पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के लगभग डेढ़ दशक के शासन का अंत हो चुका है। कल नवनिर्वाचित सरकार की शपथ ग्रहण के साथ ही बंगाल में राजनीतिक इतिहास में एक नई कड़ी का शुरुआत होगी। कल रविंद्र जयंती के दिन ब्रिगेड परेड ग्राउंड में पश्चिम बंगाल की पहली बीजेपी सरकार शपथ लेगी। बीजेपी के विधायक दल का नेता चुनने का प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए पार्टी के नियुक्त पर्यवेक्षक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले ही कलकत्ता पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में वो नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। इसी बैठक में बीजेपी विधायक दल की नए नेता का चयन किया जाएगा। इसके बाद राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य, आकाशवाणी के लिए।
0: शपथ ग्रहण समारोह कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ लेगी। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। तमिलनाडु में नई सरकार के गठन में देरी से राजनीतिक स्थिति अनिश्चित बनी हुई है। सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 के बहुमत तक पहुंचने के लिए बातचीत जारी है। डीएमके और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी ने कल नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक की। ऑल अन्ना डीएमके पार्टी के महासचिव ई पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना गया। राज्य की सबसे बड़ी पार्टी तमिलक वेत्री कड़गम को समर्थन देने के मुद्दे पर विदुथलाई चिरु थैगल काची, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक आज होगी। केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक अपने नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया है कि विधायक दल के नेता का निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा केरल में पार्टी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर लिया जाएगा। रक्षा अनुसंधान और विकास

0: हेठन डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने कल ओडिशा तट पर सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन तारा हथियार का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: यह भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली है जो किसी भी सामान्य हथियार को घातक और सही दिशा में सटीक मार करने वाले हथियार में बदलने में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर इस एडवांस रेंज वेपन सिस्टम तारा का सफल परीक्षण किया गया। हैदराबाद स्थित डीआरडीओ की रिसर्च सेंटर इमारत ने डीआरडीओ के अन्य प्रयोगशालाओं के साथ मिलकर इसे डिजाइन और विकसित किया है। तारा प्रणाली में अत्याधुनिक लेकिन कम लागत वाली तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। भारत की यह उपलब्धि स्वदेशी रक्षा निर्माण क्षमता और अत्याधुनिक सैन्य तकनीक विकसित करने की दिशा में बढ़ती ताकत को दर्शाती है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए डीआरडीओ, वायुसेना, डीसीपीपी और उद्योग जगत को बधाई दी है। श्री सिंह ने इसे भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमवार को गुजरात जाएंगे। देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई 1951 में पुनः निर्मित सोमनाथ मंदिर का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री ने आज एक राष्ट्रीय दैनिक में लिखे लेख में ये जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि कुछ महीनों के भीतर सोमनाथ मंदिर से जुड़े दो महत्वपूर्ण आयोजनों में शामिल होना उनके लिए सौभाग्य की बात है। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री ने सोमनाथ को भारत की सभ्यतागत शक्ति और मजबूती का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि सोमनाथ मंदिर की यात्रा विध्वंस से सृजन की तरफ बढ़ने का प्रतीक है और ये दिखाती है कि कैसे विश्वास और संस्कृति बार बार हुए आक्रमणों तथा मुश्किलों के बाद भी अस्तित्व में रह सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वाधीनता के बाद मंदिर के पुनर्निर्माण में देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका का स्मरण किया। श्री मोदी ने कहा कि मंदिर के इतिहास से जुड़े शौर्य और बलिदान को सम्मान करने के लिए अगले 1000 दिनों तक विशेष पूजा आयोजित होंगी। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
0: विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि प्रवासन को लेकर भारत का दृष्टिकोण प्रवासियों की सुरक्षा, देश छोड़ने से लेकर उनकी संभावित वापसी तक व्यापक शासन व्यवस्था और मजबूत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के मुख्य संचालन सिद्धांतों पर आधारित है। उन्होंने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय पलायन समीक्षा मंच को संबोधित करते हुए ये बात कही। श्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि भारत प्रवासियों की आवाजाही को सुचारू बनाने के प्रयास कर रहा है।
3: अप्रोच टू माइग्रेशन गवर्नेंस।
4: भारत ने 23 देशों के साथ प्रवासियों की आवाजाही के लिए व्यापक द्विपक्षीय समझौते और समझौता ज्ञापन किए हैं तथा निष्पक्ष और नैतिक आवाजाही के लिए कई और अन्य समझौतों पर विचार किया जा रहा है। भारत का लक्ष्य अवैध पलायन, तस्करी और सामाजिक सुरक्षा में मौजूद कमियों जैसी चुनौतियों से निपटते हुए समावेशी, मानवीय और भविष्य के लिए तैयार ढांचे का निर्माण करना है।
0: केंद्रीय नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा है कि भारत विश्व के सबसे तेजी से बढ़ते विमानन बाजार के बाद अब विमान पट्टे पर देने और वित्तीय सहायता के मामले में एक प्रमुख वैश्विक स्थान बन रहा है। श्री नायडू ने ये बात गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में भारत विमान लीजिंग और वित्त पोषण के दूसरे चरण में मुख्य भाषण देते हुए कही। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने वैश्विक आर्थिक स्थिरता के स्तंभ के रूप में भारत की बढ़ती भूमिका का जिक्र करते हुए अंतर्राष्ट्रीय समृद्धि में देश के महत्वपूर्ण योगदान का उल्लेख किया। श्री जयशंकर ने सूरीनाम में विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि इस वर्ष वैश्विक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमान के अनुसार भारत कुल वैश्विक विकास में 17% का योगदान देता है।
5: इंडिया कंट्रीब्यूट्स।
4: भारत कुल वैश्विक विकास में 17% का योगदान देता है। हम अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के जोखिम को कम करने में मदद कर रहे हैं। हम अधिक अवसर पैदा करने में सहायक हैं। हम आज और अधिक विकल्प तैयार कर रहे हैं। हम आज विभिन्न देशों के लिए ऐसे और अधिक मुक्त व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहे हैं और उन्हें अंतिम रूप दे रहे हैं ताकि वे इनका लाभ उठा सकें।
5: इंक्लूडिंग मोर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स फॉर कंट्रीज टू अवेल ऑफ।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति ट्रंप के 10% के नए टैरिफ को गैर कानूनी बताया है। न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अदालत की 3 सदस्यीय पीठ ने व्यवस्था दी कि राष्ट्रपति ट्रंप ने व्यापार कानून के तहत अमेरिकी संसद से प्रदत्त शक्तियों का उल्लंघन किया। छोटे व्यवसायियों ने राष्ट्रपति ट्रंप के शुल्क संबंधी फैसले को अदालत में चुनौती दी थी। पिछले वर्ष लगाए गए वैश्विक टैरिफ को अदालत द्वारा स्थगित करने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने नए शुल्कों की घोषणा की थी। अमेरिकी प्रशासन ने इसके बाद व्यापार अधिनियम 1974 की धारा 122 का इस्तेमाल कर 24 जुलाई 2026 तक अस्थायी 10% टैरिफ लागू करने का फैसला किया था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हैं कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार न हो। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन के साथ सार्थक बातचीत की और पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की। श्री ट्रंप ने कहा कि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि अपने लोगों की हत्या करने वाले ऐसे शासन को हथियार प्राप्त करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए जिससे लाखों लोगों की जान जा सकती हो। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन ने भी सोशल मीडिया पर बातचीत की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया से जुड़े घटनाक्रमों और क्षेत्रीय साझेदारों के साथ समन्वय पर बातचीत की। आकाशवाणी ने राष्ट्र के प्रति अपनी विशिष्ट सेवा के 90 वर्ष के उपलक्ष्य में आज राष्ट्रीय राजधानी में मैराथन का आयोजन किया। लगभग 3.5 किलोमीटर की मैराथन की शुरुआत आकाशवाणी भवन से हुई। ये मैराथन कृषि भवन, रेल भवन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से गुजरते हुए आकाशवाणी भवन पर समाप्त हुई। मैराथन पूरा करने वाले सभी प्रतिभागियों को पदक प्रदान किए गए। वहीं पुरुष और महिला दोनों वर्गों में शीर्ष 3 प्रतिभागियों को ट्रॉफी प्रदान की गई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने इस मैराथन को रवाना किया।
1: आकाशवाणी के व्यापक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क में इसी प्रकार के मैराथन और वॉकाथॉन कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है जिससे 90वीं वर्षगांठ के समारोह के दौरान व्यापक जनभागीदारी और जागरूकता सुनिश्चित हो सके। इस अवसर पर प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी ने कहा कि मैराथन के माध्यम से फिटनेस का संदेश जनता तक पहुँचाया जा रहा है।
2: इस साल 90 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम आकाशवाणी में आयोजित किए जा रहे हैं। हमारे पूरे देश में जितने भी स्टेशन्स हैं, जो देश में फिटनेस की एक मूवमेंट माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आरंभ हुई, उसका संदेश भी लोगों तक ले जाने के लिए ये उस कड़ी में एक कदम था।
1: आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने बताया कि आयोजन सार्वजनिक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी द्वारा देश की सेवा में किए गए योगदान को दर्शाता है।
3: ब्रॉडकास्टर होने के नाते जब इस तरह का कार्यक्रम हम करते हैं तो इसका संदेश दूर दूर तक, सुदूर प्रदेश तक पहुंचता है और ये बहुत बड़ा उदाहरण होगा।
4: देशभर में जो हमारे 232 मुख्य केंद्र हैं उन पर ये आयोजन इस महीने आयोजित होगा।
1: अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के अंतर्गत 6वें युवा संगम का आयोजन कर रहा है। इसका उद्देश्य विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के युवाओं में सांस्कृतिक एकीकरण को बढ़ावा देना तथा लोगों के बीच संपर्क को सशक्त बनाना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत देश के विभिन्न हिस्सों के युवा प्रतिभागी जीवन, विकास, संस्कृति, विरासत, शिक्षा, पर्यटन, नवाचार और श्रेष्ठ कार्यप्रणालियों के विभिन्न पहलुओं का अनुभव करने के लिए सहयोगी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा कर रहे हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। वर्षा से बाधित मैच का फैसला डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर हुआ। 213 रन के लक्ष्य के जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु निर्धारित 19 ओवर में 6 विकेट पर 203 रन ही बना सका। मिशेल मार्श को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.7% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 527 अंक गिरकर 77,318 पर, जबकि निफ्टी 153 अंक की गिरावट के साथ 24,173 पर था।

0: मौसम विभाग ने 10 से 13 मई के बीच देश के उत्तर पश्चिमी भागों के विभिन्न स्थानों पर बिजली चमकने, बादल गरजने और तेज हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया है। केरला, माहे, दक्षिण आंध्री कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी और करैकाल में तेज बारिश की संभावना है। रविवार तक उत्तर पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए आज कोलकाता में बैठक। डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी ग्लाइड हथियार तारा का सफल उड़ान परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर को भारत की दृढ़ता, एकता और सभ्यतागत शक्ति का शाश्वत प्रतीक बताया। अमरीकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय ने ट्रंप प्रशासन द्वारा भारत तथा अन्य देशों से आयात पर लगाए गए 10% शुल्क को अवैध घोषित किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हैं कि ईरान के पास परमाणु हथियार न हो। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला आज शाम दिल्ली में कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। 2:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही कलाकार।
2: कार्यक्रम एक ही कलाकार के साथ हाजिर हूं मैं, आपका दोस्त शैलेश दुबे। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।

दोस्तों, इस सुरीली सी आवाज को सुनने के बाद आपने अब तक तो अनुमान लगा ही लिया होगा कि हमारी आज की कलाकार कौन है। जी हाँ, हमारी आज की कलाकार हैं श्रेया घोषाल। वो नाम जो किसी परिचय की मोहताज तो बिल्कुल भी नहीं है आज के इस संगीत भरे माहौल में। संगीत भरे माहौल में कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि कोई न कोई बहाना हम ढूंढ ही लेते हैं संगीत से जुड़ने का, और जब ये जुड़ाव होता है तो कानों में एक ऐसी आवाज की मिठास खुलती है जिसे नाम के अगर रूप में हम जानना चाहें तो उसे हम श्रेया घोषाल जरूर कहते हैं।

श्रेया घोषाल, जो कि एक भारतीय पार्श्व गायिका हैं, इनका जन्म एक बंगाली ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वे राजस्थान कोटा के पास एक छोटे से कस्बे रावतभाटा में पली बढ़ी और बहुत ही शिक्षित परिवार में इनका जन्म हुआ। इनके पिता भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र इंजीनियर के रूप में भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम के लिए काम करते हैं, जबकि इनकी माँ साहित्य के क्षेत्र में है। जब श्रेया घोषाल की उम्र महज 4 साल थी, तब इन्होंने हारमोनियम पर अपनी माँ के साथ संगत किया था। उनके माता पिता ने उन्हें कोटा में महेश चंद्र शर्मा के पास हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की विधिवत शिक्षा के लिए भेजा। कहते हैं कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं, और कुछ ऐसा ही रहा श्रेया घोषाल के साथ। जी टीवी पर प्रसारित होने वाला म्यूजिकल प्रोग्राम सारेगामा, जो कि अब सारेगामापा के नाम से जाना जाता है, इसमें इन्होंने चिल्ड्रन स्पेशल एपिसोड की प्रतियोगिता का खिताब जीत लिया था। उस समय आज के प्रसिद्ध गायक सोनू निगम ने इस कार्यक्रम की मेजबानी की थी। कल्याण जी ने, जो प्रतियोगिता के निर्णायक थे, उन्होंने उनके माता पिता को मुंबई आने के लिए मनाया। उन्होंने 18 महीनों तक उनसे शिक्षा भी ली और मुंबई की मुक्त भिंडे से शास्त्रीय संगीत की तालीम को जारी रखा। रावत भाटा के एटॉमिक एनर्जी सेंट्रल स्कूल और अणुशक्ति नगर मुंबई में उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। साथ ही साथ स्नातक के लिए उन्होंने SES कॉलेज के कला संकाय में दाखिला लिया। श्रेया घोषाल के अगर हम करियर की बात करें, तो फिल्म निर्देशक संजय लीला भंसाली का ध्यान इन्होंने अपनी ओर तब खींचा जब उन्होंने सारेगामापा के प्रोग्राम में दूसरी बार भाग लिया। इस समय ये वयस्कों के साथ प्रतिस्पर्धा में भाग ले रही थी। साल 2000 में उन्होंने अपनी फिल्म देवदास में मुख्य महिला किरदार पारो, जिसे ऐश्वर्या राय ने निभाया था, उनकी आवाज के लिए मौका देने का प्रस्ताव रखा। फिल्म में श्रेया ने इस्माइल दरबार के संगीत निर्देशन में 5 गाने गाए। दुनिया भर के फिल्मी दर्शकों ने ऐश्वर्या राय पर फिल्माया गया घोषाल का गाना न केवल सुना, बल्कि बहुत प्यार भी दिया इस गाने को। और इसी प्यार का नतीजा रहा कि ये बहुत ही जल्दी बॉलीवुड में अलका याग्निक, सुनिधि चौहान, साधना सरगम और कविता कृष्णमूर्ति जैसी उस समय के स्थापित गायिकाओं की श्रेणी में अपने आप को शुमार करने में सफल रही।

इस गीत ने उन्हें उस साल का सर्वश्रेष्ठ गायिका का फिल्म फेयर पुरस्कार भी दिलाया। साथ ही उभरती प्रतिभाओं के लिए दिया जाने वाला आरडी बर्मन पुरस्कार भी उन्हें उसी पुरस्कार समारोह में दिया गया। देवदास के बाद एआर रहमान, अनु मलिक, हिमेश रेशमिया, मणि शर्मा, एमएम किरवानी, नदीम श्रवण, शंकर एहसान लॉय, प्रीतम, विशाल शेखर, हंसलेखा, मनुमूर्ति, गुरु किरण, इल्याराजा, युवन शंकर राजा और हैरिज जयराम समेत बहुत सारे संगीत निर्देशकों के निर्देशन में बहुत सारी अभिनेत्रियों के लिए इन्होंने अपनी आवाज दी है। इन्होंने उत्तर और दक्षिण फिल्म उद्योगों के लिए भी बहुत सारे पुरस्कार जीते हैं। भूल भुलैया के लिए, मेरे ढोलना गीत के लिए भी उन्हें बहुत वाहवाही मिली थी। आज श्रेया घोषाल संगीत उद्योग की एक प्रतिष्ठित गायिका हैं और उन्होंने हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, बंगाली, कन्नड़, गुजराती, मेड़ती, मराठी और भोजपुरी समेत विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं के गाने भी रिकॉर्ड किए हैं। इन्होंने बहुत सारे म्यूजिकल रियलिटी शो में भी एक जज की भूमिका निभाई है और साथ ही साथ इन्होंने बहुत सारे भारतीय टीवी धारावाहिकों के लिए भी शीर्षक गीत गाए हैं। वैसे तो श्रेया घोषाल के गाए सभी गीतों को सबने यानी हम सबने बहुत सारा प्यार दिया है और सराहा है, लेकिन देवदास के अलावा जिस्म, साया, इंतहा, आउट ऑफ कंट्रोल, खाकी, मुन्ना भाई एमबीबीएस, धूम, कुछ कहा आपने, अरमान, एलओसी कारगिल, एतबार, क्रिश, पुलिस फोर्स, लगे रहो मुन्ना भाई, गुरु, बिग बी, कुर्बान, गजनी, रब ने बना दी जोड़ी, थ्री इडियट्स, पीके वगैरह के लिए भी इन्होंने बहुत सारे गाने गाए हैं। 2007 में उनके गाए गीतों के लिए सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का आईफा, 2008 में उनका नाम 5 में से 4 नामांकनों में आया था। सर्वश्रेष्ठ गायिका का फिल्म फेयर पुरस्कार 2009 में जीता और सिंग इज किंग में प्रीतम का गाना तेरी ओर के लिए उन्होंने आईफा 2009 भी जीता। वे हिंदी फिल्म उद्योग की अकेली ऐसी गायिका हैं जिन्हें 25 वर्ष की उम्र में ही 3 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। मलयालम में फिल्म नीलात मारा का उनका गाया अनुरागा विल्लू चेन्नई सुपरहिट है। अगर पुरस्कारों की हम बात करें तो नेशनल फिल्म अवार्ड्स में 2002 में इन्होंने नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर द बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर जीता था बैरी पिया, जो कि देवदास फिल्म का गीत था। 2006 में भी इन्होंने नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर द बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर पहली फिल्म के गीत धीरे जलना के लिए जीता और जब वी मेट का गाना ये इश्क हाय इसके लिए इन्होंने जीता था 2007 का बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का नेशनल फिल्म अवार्ड्स। फिल्म फेयर अवार्ड्स की अगर हम बात करें तो 2003 में आरडी बर्मन अवार्ड्स फॉर द न्यू म्यूजिक टैलेंट, 2003 में फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल प्लेबैक अवार्ड्स कविता कृष्णमूर्ति के साथ इन्होंने साझा किया था डोलारे गीत के लिए, जो कि फिल्म देवदास का गीत था। 2004 में इन्होंने जिस फिल्म के गीत जादू है नशा है के लिए ये अवार्ड जीता और बरसुरे फिल्म गुरु का ये गीत है इसके लिए इन्होंने 2008 में ये पुरस्कार जीता था। 2009 में तेरी ओर सिंग इज किंग और 2016 में दीवानी मस्तानी बाजीराव मस्तानी फिल्म के इस गीत के लिए जीता था। चलते चलते हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि श्रेया घोषाल, जिनका की जन्म हुआ था 12 मार्च 1984 को, उनका और हमारा साथ यूं ही बना रहे और ये साथ की जो उम्र है वो बहुत

लंबी हो, क्योंकि गीत संगीत का जो उपहार उन्होंने हमें दिया है और आने वाले समय में भी ऐसे ही देती रहेंगी, इसका हमें इंतजार भी रहेगा और ऊपर वाले से ये गुजारिश भी रहेगी कि उनका प्यार गीत के ही जरिए हमारे हिस्से में हमेशा मिलता रहे। इस कार्यक्रम से विदा लेने के अपने दोस्त शैलेश दुबे को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही कलाकार।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज़, डीटीएच, डीआरएम, वेव्स ओटीटी और न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। अपराह्न के 3 बजे हैं। आज की हमारी पहली सभा अब संपन्न होती है। शाम 5 बजे अपनी दूसरी सभा के कार्यक्रमों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए।

मीडियम वेव 241.5 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्स, डीटीएच, डीआरएम 1233 किलोहर्ट्स और न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे हैं, आरंभ होती है हमारी आज की सांध्यकालीन सभा। सभा के आरंभ में आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

अभी आपने सुना फिल्म बर्फी का गीत। आवाज़ थी मोहित चौहान की, बोल थे स्वानंद किरकिरे के, और संगीत प्रीतम का।

अमान मलिक की गाय फिल्म चीफ के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। वक्त हो चला है युवा साथियों कार्यक्रम युववाणी का। तो आज है हमारे साथ सौरव और अमरजीत। आइए करते हैं अपने दिल की बात इन दो युवा साथियों के साथ। कार्यक्रम है युववाणी।

0: कभी सोचा है इस तेज भागती दुनिया में इंसान आखिर सबसे ज्यादा क्या ढूंढता है? शायद सुकून, या फिर कोई ऐसा अपना जो बिना मतलब के साथ खड़ा रहे।
1: सही कहा, क्योंकि आजकल रिश्ते तो बहुत हैं, लेकिन अपनापन कहीं भीड़ में खोता जा रहा है। और यही वजह है कि जब कहीं प्यार, इंसानियत या मानवता की छोटी सी झलक भी दिखती है, तो दिल खुद ब खुद उस तरफ खींचा जाता है।
0: बिल्कुल, किसी भूखे को खाना खिला देना, किसी उदास चेहरे पर मुस्कान ला देना, या बस किसी की बात ध्यान से सुन लेना, ये छोटी बातें नहीं, इंसानियत की सबसे बड़ी पहचान है।
1: क्योंकि मोहब्बत सिर्फ रिश्तों में नहीं होती है दोस्तों, कभी कभी एक अच्छा व्यवहार भी किसी के लिए पूरी दुनिया बन जाता है।
0: बिल्कुल, और शायद यही वो एहसास है जो समाज को सिर्फ लोगों की भीड़ से नहीं बल्कि एक परिवार बनाता है। तो युववाणी परिवार के आज के इस महफिल में स्वीकार कीजिए अपने दोस्त सौरव
1: और मैं अमरजीत,
0: का
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: निखार। इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
2: दोस्तों, जब दुनिया युद्ध, महामारी, आपदा और अनिश्चितताओं से घिर जाती है, तब इंसानियत की असली पहचान सामने आती है।
3: जी हाँ, कहीं कोई घायल होता है, कहीं किसी को खून की जरूरत पड़ती है, कहीं कोई परिवार संकट में होता है, और ऐसे हर मोड़ पर कुछ हाथ मदद के लिए बढ़ते हैं। इन्हीं मददगार हाथों की याद दिलाता है वर्ल्ड रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट डे। अमरजीत, क्या तुम्हें पता है कि आज का दिन क्यों खास मनाया जाता है?
2: हाँ, आज वर्ल्ड रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट डे मनाया जाता है। यह दिन मानवता, सेवा और निस्वार्थ सहायता की भावना को समर्पित है।
3: सही कहा, लेकिन क्या तुम जानते हो कि यह दिन 8 मई को ही क्यों मनाया जाता है?
2: बिल्कुल, यह दिन हेनरी डुनेंट के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। उन्होंने ही तो इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस की स्थापना की थी।
3: अच्छा, मैंने इनके बारे में थोड़ा पढ़ा है। कहा जाता है कि युद्ध भूमि में घायल सैनिकों की पीड़ा देखकर इनके मन में मानव सेवा का विचार जागा था।
2: बिल्कुल सही, हेनरी डुनेंट ने यह महसूस किया कि घायल व्यक्ति की मदद करते समय यह नहीं देखना चाहिए कि वह किस देश, जाति या पक्ष का है, वह सबसे पहले एक इंसान है।
3: यही तो इस दिवस का सबसे सुंदर संदेश है, मानवता सबसे ऊपर।
2: और आज इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी भी बहुत महत्वपूर्ण काम कर रही है। प्राकृतिक आपदाओं में राहत पहुंचाना, रक्तदान शिविर लगाना, प्राथमिक उपचार सिखाने से ये सब समाज के लिए बेहद उपयोगी है।
3: सच कहूं तो रक्तदान की बात आते ही मुझे लगता है कि यह शायद सबसे सरल लेकिन सबसे बड़ा दान है।
2: बिल्कुल, एक यूनिट रक्त किसी की जान बचा सकता है, इसीलिए वर्ल्ड रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट डे में हमें सिर्फ इतिहास नहीं बताता बल्कि वर्तमान में जिम्मेदारी निभाने की प्रेरणा भी देता है।
3: दोस्तों, आज के समय में जब लोग अक्सर अपने तक सीमित हो जाते हैं, तब ऐसे

0: दिवस हमें याद दिलाते हैं कि समाज केवल अधिकारों से नहीं, कर्तव्यों से भी चलता है।
1: सही कहा। अगर हर व्यक्ति थोड़ा सा सहयोग, थोड़ी सी संवेदना और थोड़ी सी तत्परता दिखाए, तो कई मुश्किलें आसान हो जाती हैं।
0: बिल्कुल, तो आज का संदेश यही हुआ। जरूरी नहीं कि हम सब बड़े काम करें, लेकिन छोटे छोटे काम भी किसी के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं।
1: बिल्कुल, यही वर्ल्ड रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट डे की असली भावना है। इंसानियत की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है।
0: जब इंसानियत की बात होती है तो केवल आपदाओं या युद्धों तक ही सीमित नहीं रहती दोस्तों। कई बार रोजमर्रा की लापरवाहियां भी बड़े संकट का कारण बन जाती है। वर्ल्ड रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट डे हमें सेवा और जीवन बचाने का संदेश देता है। तो वही यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक हमें याद दिलाता है कि जीवन को बचाने की शुरुआत सड़कों से भी होती है। अमरजीत, अभी हम रेड क्रॉस की बात कर रहे थे, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि सड़क हादसों में भी यही सेवा भावना बहुत जरूरी होता है?
1: बिल्कुल, यही वजह है कि यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक मनाया जाता है, ताकि लोग ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक हो और हादसों को रोका जा सके।
0: सही कहा, क्योंकि हादसे के बाद मदद करना तो जरूरी है ही, लेकिन उनसे भी सबसे ज्यादा जरूरी है हादसे को होने ही ना देना, है ना?
1: हाँ, और यही दोनों को जोड़ता है। एक तरफ इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस घायल लोगों की मदद करता है, और दूसरी तरफ सड़क सुरक्षा अभियान लोगों को सतर्क बनाकर जान बचाने की कोशिश करता है।
0: मतलब साफ है, हेलमेट पहनना, सीट बेल्ट लगाना और ट्रैफिक नियमों का पालन करना भी एक तरह का मानव सेवा ही है।
1: बिल्कुल, क्योंकि आपकी एक छोटी सी सावधानी किसी के परिवार को टूटने से बचा सकती है।
0: बिल्कुल, जहां रेड क्रॉस हमें जिंदगी बचाना सिखाता है, वहीं सड़क सुरक्षा हमें जिंदगी संभालना सिखाती है। दोस्तों, पर्दे पर दिखती है सिर्फ कहानी, लेकिन उसके पीछे छुपे होते हैं जज्बात, संघर्ष और सितारों की अनकही दास्तानें। तो आइए उठाते हैं सिनेमा के उसी चमकते पर्दे से थोड़ा सा पर्दा और शुरू करते हैं सीने दर्पण। कुछ चेहरे सिर्फ पर्दे पर नहीं चमकते, वे समय की दीवारों पर अमिट छाप छोड़ जाते हैं। कुछ आवाजें सिर्फ संवाद नहीं बोलती, वे दर्द को कविता बना देती है।
1: और कुछ कलाकार अभिनय नहीं करते, वे अपनी जिंदगी को किरदारों में जी जाते। भारतीय सिनेमा के स्वर्णिम इतिहास में एक ऐसा ही नाम, वो चेहरा जिसमें मासूमियत,
0: वो आंखें जिनमें अधूरी मोहब्बत की नमी थी, वो अदाकारी जिसमें हर दिल को छू लिया। जी हाँ, आज सीने दर्पण में हम बात करेंगे भारतीय सिनेमा की ट्रेजडी क्वीन कही जाने वाली महान अभिनेत्री मीना कुमारी की।

0: 1 अगस्त 1933 को मुंबई में जन्मी मीना कुमारी का असली नाम था महज बीन बानो। बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने महज 4 साल की उम्र में फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। घर की आर्थिक परिस्थितियां कठिन थी। बचपन खेलकूद में नहीं बल्कि स्टूडियो की तेज रोशनी और कैमरों के बीच बीता। लेकिन शायद किस्मत को यही मंजूर था कि यह छोटी बच्ची आगे चलकर अभिनय की दुनिया का सबसे बड़ा मिसाल बने।
1: दोस्तों, उस दौर में अभिनय सिर्फ संवाद बोलना नहीं था, चेहरे के भाव, आंखों की भाषा और आवाज की गहराई ही कलाकार की पहचान बनती थी और मीना कुमारी इन सभी गुणों की जीती जागती मिसाल थी।
2: जब मेरा ब्याह हुआ तो छोटी उम्र थी मेरी। पालकी उठते समय माँ ने कहा, देख बेटी, तन मन से पति सेवा करना, स्वामी ही औरत का देवता है। पर यहाँ आकर देखा

0: हे मैया, स्वामी घर पर ही नहीं रहते, अब तुम ही बताओ सेवा करूं तो किसकी। सच अजीब घर है ये, अजीब घर। इतने बड़े घर की बहू बनी मैं, इतना रुपया पैसा, नौकर चाकर जेवर गहना सभी कुछ तो है, पर ये सारे सुख खोखले हैं भूतनाथ, खोखले।
1: उन्होंने बैजू बावरा, परिणीता, साहिब बीबी और गुलाम, दिल अपना और प्रीत पराई जैसी फिल्मों में ऐसा अभिनय किया कि दर्शक किरदार और कलाकार में फर्क ही भूल गए।
2: अगर भारतीय सिनेमा में दर्द को किसी चेहरे ने सबसे खूबसूरती से जिया तो वो चेहरा मीना कुमारी का था। उनकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी जो शायद अभिनय नहीं उनकी अपनी जिंदगी का हिस्सा थी। फिल्म साहिब बीबी और गुलाम में उनका निभाया छोटी बहू का किरदार आज भी भारतीय सिनेमा के सबसे यादगार किरदारों में गिना जाता है। उस किरदार में तड़प थी, अकेलापन था, प्यार पाने की बेचैनी थी और मीना कुमारी ने उसे सिर्फ निभाया नहीं बल्कि महसूस कराया।
1: मीना कुमारी सिर्फ अभिनेत्री ही नहीं थी बल्कि एक बेहतरीन शायरा भी थी। वे नाज नाम से शायरी लिखा करती थी। उनकी लिखी पंक्तियां आज भी लोगों के दिलों को छू जाती है। टुकड़े टुकड़े दिन बीता, धज्जी धज्जी रात मिली, जिसका जितना आंचल था उतना ही सौगात मिली। उनकी शायरी में वही दर्द था जो उनकी आंखों में दिखाई देता था।
2: कहते हैं कलाकार जितना बड़ा होता है उसकी तन्हाई उतनी ही गहरी होती। मीना कुमारी की निजी जिंदगी भी संघर्षों और अधूरी खुशियों से भरी रही। फिल्म निर्देशक कमाल अमरोही से उनका रिश्ता बहुत चर्चित रहा लेकिन समय के साथ दूरियां बढ़ती गई। शायद यही वजह थी कि पर्दे पर उनका दर्द इतना सच्चा लगता क्योंकि वह सिर्फ अभिनय नहीं था, वो उनकी अपनी जिंदगी की परछाई थी।
0: भूख लगी है ना? चलो मेरे साथ। क्यों नहीं?
3: टीचर, आज दोपहर को तो तुम खिला दोगी, कल कौन खिलाएगा?
0: तुम रोज मेरे साथ खा सकते हो।
3: सच? ठहरो, एक शर्त है, बड़ा होकर जब मैं कमाऊंगा तो सारे पैसे दे दूंगा।
0: चलो अच्छा ही हुआ, तब तक मैं बूढ़ी भी हो जाऊंगी, हाथ पर तो काम नहीं करेंगे, तेरी मदद मिल जाएगी।
1: दोस्तों, आज भी जब पुरानी फिल्मों का जिक्र होता है तो मीना कुमारी का नाम बड़े सम्मान और आदर के साथ लिया जाता है। उन्होंने कई फिल्म फेयर पुरस्कार जीते और भारतीय सिनेमा में अभिनय की नई ऊंचाइयां स्थापित की। लेकिन उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि शायद यह थी कि उन्होंने दर्शकों के दिलों में स्थायी जगह बना ली।
2: और अब बात उस फिल्म की जिसने मीना कुमारी को अमर कर दिया, फिल्म पाखीजा। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, यह उनकी जिंदगी का सपना था। कई वर्षों तक बनती रही इस फिल्म में मीना कुमारी ने अपने जीवन की अंतिम चमक दिखाई। फिल्म रिलीज हुई और देखते ही देखते इतिहास बन गई। लेकिन अफसोस, फिल्म की सफलता को वो ज्यादा समय तक देख नहीं पाई। 31 मार्च 1972 को महज 38 वर्ष की उम्र में यह चमकता सितारा हमेशा के लिए खामोश हो गया।

लेकिन कुछ कलाकार कभी विदा नहीं होते। वे अपनी आवाज, अपने किरदार और अपनी यादों में हमेशा जिंदा रहते हैं। मीना कुमारी भी उन्हीं सितारों में से एक थी जो भारतीय सिनेमा के आकाश में हमेशा चमकती रहेंगी। तो दोस्तों, यही थी कहानी उस अभिनेत्री की जिसने दर्द को कला बना दिया और अभिनय को एहसास।

0: निखार। इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे?
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो
3: 0542227658।
1: ओ
4: 0542227658।
1: लो अभी फोन लगाता हूँ।
4: 0542227658।
5: तो दोस्तों तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होने वाला है दिमाग का असली गेम, जहां आपका सही जवाब दिलाएगा आपको खास पहचान और नाम भी।
6: बिल्कुल, और ये कोई साधारण सवाल नहीं है, ये है आपका पसंदीदा क्वेश्चन ऑफ द डे।
5: लेकिन आज के सवाल पर आने से पहले जरा जोरदार तालियां भी बजा लीजिए भाई उन शानदार साथियों के लिए, जिन्होंने कल अपने बेहतरीन जवाब से सबको पीछे छोड़ दिया है।
6: जी हाँ, क्योंकि अब वक्त है हमारे कल के क्वेश्चन ऑफ द डे विनर्स को बताने का। तो दोस्तों कल का सवाल था, किस राज्य सरकार ने वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान शुरू किया है, और उसका सही जवाब है राजस्थान।
5: जी हाँ साथियों, और सही जवाब देने वाले हमारे साथियों के नाम हैं प्रवीण चौहान खरगोन मध्य प्रदेश से, चंदा चंदौली से, प्रेमलाल वर्मा वेदिका वंश निकेश, धर्मेंद्र मेघा नंदिनी, हर्षिता और ममता बाई वर्मा, रिंग रोड नर्मदा नगर मध्य प्रदेश से सूरज वर्मा, नीरज शिवम धीरज, चिंता वर्मा और ऋषभ कनक और भावना वर्मा भी, रवि मौर्य उत्तर प्रदेश आजमगढ़ ग्राम सिमरौल से, मुकेश कुमार प्रजापति सिगरा वाराणसी से, वहीं ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से हैं दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना भावना बिंदु गोलू कुसुमबाई बाबू दिव्यांश और सूरज कुमार ढाक से।
6: आप सभी विजेताओं को ढेर सारी बधाई है। ऐसे ही आगे भी जुड़े रहिए और विनर्स बनते रहिए। और अब दोस्तों वक्त आ गया है आज के नए सवाल का, तो ध्यान से सुनिए। आज का प्रश्न है, किसके प्रतीक चिन्ह में बहुजन हिताय बहुजन सुखाय अंकित है?
5: जी हाँ दोस्तों, सवाल एक बार फिर से, किसके प्रतीक चिन्ह में बहुजन हिताय बहुजन सुखाय अंकित है? तो दोस्तों जवाब आपको कहाँ भेजना है ये तो आपको पता ही होगा। जी हाँ, आप अपना जवाब हमें हमारे इंस्टाग्राम यूथ AIR वाराणसी या फिर हमारे ईमेल youthairvns@gmail.com पर भेज सकते हैं। तो जल्दी कीजिए, जब तक आप अपना जवाब भेजिए हम आपको कल के विनर्स के लिए सुनाते हैं ये गीत।

0: दोस्तों, कहते हैं कि शब्द सिर्फ अक्षर नहीं होते, ये भावनाओं और एहसासों का माध्यम बन जाते हैं। कभी होठों पर मुस्कान लिख देते हैं तो कभी आंखों में छुपे जज्बात बयां कर जाते हैं। अमरजीत, आज मैंने हिंदी का एक शब्द पढ़ा है, प्रत्यायोजन। शब्द तो काफी गंभीर लगा, लेकिन अर्थ पूरी तरह समझ नहीं आया।
1: यह शब्द प्रशासन और प्रबंधन में बहुत उपयोग होता है। प्रत्यायोजन का अर्थ है अपने अधिकार, कार्य या उत्तरदायित्व को किसी अन्य व्यक्ति को सौंपना।
0: मतलब जब कोई अधिकारी अपने

0: अधीनस्थ, और अधीनस्थ को कोई जिम्मेदारी देता है?
1: बिल्कुल, जैसे किसी विद्यालय का प्रधानाचार्य वार्षिक उत्सव की व्यवस्था की जिम्मेदारी शिक्षकों को सौंप दे, तो इसे प्रत्यायोजन कहा जाएगा। उदाहरण वाक्य प्रत्यायोजन। सफल प्रशासन के लिए कार्यों का उचित प्रत्यायोजन आवश्यक होता है। प्रबंधक ने कर्मचारियों के बीच जिम्मेदारियों का प्रत्यायोजन किया।
0: अब समझ आया। यानी कि किसी कार्य को व्यवस्थित रूप से दूसरे व्यक्ति को सौंपना ही प्रत्यायोजन कहलाता है ना?
1: हाँ, और यही किसी अच्छे नेतृत्व की पहचान भी मानी जाती है।
0: अच्छा, अब मुझे अंग्रेजी शब्द हैकनीड के बारे में बताओ। मैं इसे अक्सर समीक्षाओं और औपचारिक चर्चाओं में सुनता हूँ।
1: हैकनीड रेफर्स टू समथिंग, यूजली एन आइडिया, एक्सप्रेशन, स्टोरी लाइन और स्टेटमेंट दैट हैज बिन यूज सो फ्रीक्वेंटली दैट इट नो लॉन्गर फील्स फ्रेश और ओरिजिनल। इन सिंपल टर्म्स इट मीन्स ओवर यूज स्टाइल।
0: सो इफ अ मूवी रिप्रेजेंट्स द सेम प्रेडिक्टेबल प्लॉट अगेन एंड अगेन, इट कैन बी कॉल्ड हैकनीड।
1: एग्जैक्टली, व्हेन क्रिएटिविटी डिसअपीयर्स बिकॉज ऑफ एक्सेसिव रेपिटिशंस द कंटेंट स्टार्ट्स फीलिंग हैकेंड। एग्जाम्पल, द आर्टिकल वॉज फिल्ड विद हैकेनेड आर्गूमेंट्स एंड लैक्ड ओरिजिनैलिटी। क्रिटिक्स डिस्क्राइब्ड द फिल्म्स एंडिंग एज प्रिडिक्टेबल एंड हैकनेड।
0: अब तो मजा आ गया। एक शब्द जिम्मेदारी सौंपने का, तो दूसरा घिसे पिटे विचारों का। तो दोस्तों, शब्दों के ज्ञान के बाद अब हम चलते हैं इतिहास की ओर और जानते हैं कि आज के दिन की उन बातों को जो आज हमारे लिए इतिहास बन चुके हैं, और उनकी जानकारी रखना हमारे लिए जरूरी भी है।
1: महात्मा गांधी का 21 दिन का उपवास 1933। 8 मई 1933 को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन और सामाजिक सुधारों से जुड़े मुद्दों को लेकर 21 दिन का उपवास शुरू किया था। यह उपवास केवल राजनीतिक नहीं था, बल्कि समाज में अस्पृश्यता और सामाजिक असमानता के खिलाफ एक नैतिक आंदोलन भी माना गया।
0: जी हाँ साथियों, इसी के साथ हम आपको बता दें कि 8 मई 1929 को ही, आज ही के दिन, प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी का जन्म हुआ था। उन्हें ठुमरी की रानी कहा जाता था। बनारसी घराने की इस महान कलाकार ने भारतीय शास्त्रीय संगीत को वैश्विक पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
1: स्वामी विवेकानंद का जन्म 1916। प्रसिद्ध वेदांत विद्वान और आध्यात्मिक गुरु स्वामी चिन्मयानंद का जन्म भी 8 मई को हुआ था। उन्होंने चिन्मय मिशन का स्थापना किया और भारतीय दर्शन तथा गीता के संदेश को दुनिया भर में पहुंचाया।
0: दोस्तों, हम युवाओं के लिए रोजगार सूचना सिर्फ एक विज्ञापन नहीं होती, वो उनके वर्षों की मेहनत, सपनों और भविष्य की दस्तक होती है। तो अमरजीत, हमारे श्रोताओं को बताओ रोजगार सूचना के बारे में।
1: बिल्कुल सौरभ, तो आइए दोस्तों जानते हैं कि क्या है आज की रोजगार सूचना। बिहार लोक सेवा आयोग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर 72वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा यानी CCE Pre-2026 की अधिसूचना जारी कर दी है। इस भर्ती के माध्यम से कुल 1186 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 7 मई 2026 से शुरू हो चुकी है, जबकि आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 मई 2026 निर्धारित की गई है। आयु सीमा की बात करें तो अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 20 वर्ष तक तय की गई है, वहीं अधिकतम आयु सीमा श्रेणी के अनुसार 37 से 42 वर्ष तक निर्धारित की गई है। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट bpsconline.bihar.government.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
0: तो दोस्तों, इस जानकारी के बाद अब बारी आपके दिमाग को रिफ्रेशमेंट देने की।

0: तो दोस्तों, कभी ध्यान दिया है कि दिमाग भी बड़ा चालाक होता है? जब सब ठीक चल रहा हो तब बिल्कुल शांत।
1: हाँ, सही कह रहे हो सौरभ। जैसे ही आप सोने जाओ, दिमाग तुरंत मीटिंग बुला लेता है। चलो भाई, 2015 की सारी गलतियां याद करते हैं।
0: अमरजीत, मेरा दिमाग तो रात में ऐसा एक्टिव हो जाता है जैसे उसे कभी वाईफाई मिलता हो उसी वक्त।
1: सही पकड़े हो। दिन में नो नेटवर्क और रात में फुल स्पीड टेंशन।
0: सच में यार, कभी पढ़ाई का टेंशन, कभी फ्यूचर की टेंशन, दिमाग चैन ही नहीं लेने देता है।
1: देखो सौरभ, दिमाग का काम ही है सोचना, लेकिन हम उसे बिना ब्रेक के काम करवाते रहे, यही तो असली समस्या है। जब दिमाग दोस्त बन जाता है तो जिंदगी अपने आप आसान होने लगती है।
0: बिल्कुल मेरे दोस्त, और जिंदगी तब और आसान और हसीन हो जाती है जब हम समय का भी आदर करें, है ना? तो दोस्तों, घड़ी की सुइयां भी हमें इशारा कर रही है, तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए। कार्यक्रम में आज आपके साथ था मैं, यानी कि सौरभ।
1: और मैं अमरजीत। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: वो रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री ने सोमनाथ को भारत की सभ्यतागत शक्ति और मजबूती का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि सोमनाथ मंदिर की यात्रा विध्वंस से सृजन की तरफ बढ़ने का प्रतीक है और ये दिखाती है कि कैसे विश्वास और संस्कृति बार बार हुए आक्रमणों तथा मुश्किलों के बाद भी अस्तित्व में रह सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वाधीनता के बाद मंदिर के पुनर्निर्माण में देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका का स्मरण किया। श्री मोदी ने कहा कि मंदिर के इतिहास से जुड़े शौर्य और बलिदान को सम्मानित करने के लिए अगले 1000 दिनों तक विशेष पूजा आयोजित होंगी। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री के लेख के अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर साझा कर लिए हमें। श्री योगी कहले हमें कि सोमनाथ खाली एगो मंदिर नहीं बल्कि हमनी के सभ्यता का अटूट संकल्प हो। प्रदेश सरकार राज्य भर में स्थापित सज्जो स्मार्ट मीटरन के पोस्टपेड मोड में संचालित कैले के आदेश जारी कर दिले हो। एगो रिपोर्ट।
2: प्रदेश के ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने कल बताया कि RDSS योजना के तहत स्थापित सभी स्मार्ट मीटरों को तत्काल प्रभाव से पोस्टपेड सिस्टम में परिवर्तित किया जा रहा है। इस व्यवस्था के तहत उपभोक्ताओं को बिजली की खपत के बाद बिल प्राप्त होंगे। मई 2026 में खपत हुई बिजली का बिल जून 2026 में पोस्टपेड प्रणाली के तहत जारी किया जाएगा। यह नई व्यवस्था पूर्वांचल, मध्यांचल, दक्षिणांचल और पश्चिमांचल बिजली वितरण निगमों के साथ साथ KESCO कानपुर में भी लागू की जाएगी, जिससे उपभोक्ताओं को काफी राहत मिलने की उम्मीद है। आकाशवाणी लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रेम चंद्र गुप्ता।
0: स्मार्ट मीटर आ बिजली बिल से जुड़ल शिकायतिन के समाधान बदे 15 मई से 30 जून 2026 ले प्रदेश भर में कैंपो लगावल जाई। ऊर्जा मंत्री आज लखनऊ में बतौलन कि अधिशासी अभियंता आ उपखंड अधिकारी कार्यालयन पर एह विशेष शिकायत निस्तारण कैंप का आयोजन होई। साथ ही हर कार्यालय में विशेष हेल्प डेस्क बनावल जाई, जहां बिल संशोधन आ तकनीकी शिकायतन का ओजुक में निस्तारण कैल जाई। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत 6वां युवा संगम का आयोजन कर रहा हो। एकर उद्देश्य कई गो राज्यन आ केंद्र शासित प्रदेशन के नौजवानन में सांस्कृतिक एकीकरण के बढ़ावा दिहल आ लोगिन के बीचे संपर्क के मजबूत बनावल हो। एकरे तहत देश के कई हिस्सन में नौजवान प्रतिभागी जीवन विकास संस्कृति विरासत शिक्षा पर्यटन नवाचार आ श्रेष्ठ कार्य प्रणालियन के कई गो पहलुअन को अनुभव करे बदे सहयोगी राज्यन आ केंद्र शासित प्रदेशन को दौरा कर रहल हवें। आकाशवाणी राष्ट्र के प्रति अपन विशिष्ट सेवा के 90 साल के उपलक्ष्य में आज राष्ट्रीय राजधानी में मैराथन का आयोजन कैलस। प्रसार भारती का मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी आ आकाशवाणी का महानिदेशक राजीव कुमार जैन आकाशवाणी भवन से एह मैराथन के रवाना कैलें। ए मौका पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी कहने कि मैराथन के जरिया से फिटनेस का संदेशा जनता ले पहुंचावल जा रहा हो।
3: हमारे पूरे देश में जितने भी स्टेशंस हैं, जो देश में फिटनेस की एक मूवमेंट माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आरंभ हुई, उसका संदेश भी लोगों तक ले जाने के लिए ये उस कड़ी में एक कदम था।
0: आकाशवाणी का महानिदेशक राजीव कुमार जैन बतौलें कि ये आयोजन सार्वजनिक प्रसारक के तौर पर आकाशवाणी की ओर से देश के सेवा में कैल गैल योगदान के दर्शावेला।
4: ब्रॉडकास्टर होने के नाते जब इस तरह का कार्यक्रम हम करते हैं तो इसका संदेश दूर दूर तक सुदूर प्रदेश तक पहुंचता है और ये बहुत बड़ा उदाहरण होगा।
5: देश भर में जो हमारे 232 मुख्य केंद्र हैं, उन पर ये आयोजन इस महीने आयोजित होगा।
0: मौसम विभाग आज प्रदेश के पूर्वी या पश्चिमी जिलन में कहीं कहीं बरखा आ गरज चमक के साथ बौछार पड़ने का संभावना जतौले हो। विभाग के मुताबिक पूर्वी जिलन में बिहनहू यह स्थिति रही। ए बीचे मौसम विभाग की ओर से प्रदेश भर में आज कहीं कहीं वहीं पूर्वी जिलन में बिहने कहीं कहीं बिजली गिरले आ तेज झोंकेदार बेयार चलने का येलो अलर्ट जारी कैल गैल बा। समाचार पूरा भइल, नमस्कार।
6: मीडियम वेव 241.5 6 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है आज के शेष और कल के कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

पोपरी समाचार। नमस्कार, समाचारन के साथ हम वेद प्रकाश पाठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहले हमें कि कुछ महीना के भीतर सोमनाथ मंदिर से जुड़ल दुई गो खास आयोजन में शामिल भइल उनके खातिर सौभाग्य का बाती हो। वहां के आज एगो राष्ट्रीय दैनिक में लिखल लेख में बतौनी कि पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन क 75 साल पूरा भइले के उपलक्ष्य में सोमवार के वहां के गुजरात जाइब।

पहले जान लेते हैं आजकल शेष कार्यक्रमों के बारे में। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में रात्रि 10:30 पर आज हम आपको सुनाएंगे गायन, कलाकार होंगे पंडित जसराज। रात्रि 10 बजे सुनिएगा कार्यक्रम विज्ञान पत्रिका।

जूम संगीत आप सुन सकते हैं रात्रि 8 बजे। हमारे हास्य कलाकार होंगे भूपेंद्र सिंह। कृषि कार्यक्रम शाम 6:30 पर, इसमें आज हमको सुनाएंगे गेंदे की व्यावसायिक खेती विषय पर जानकारी देंगे डॉक्टर अनिल कुमार सिंह। ये थी जानकारी आज के शेष कार्यक्रमों की। आइए अब नजर डाल देते हैं कल के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों पर।

खेती की बातें ये कार्यक्रम मक्खन कल पाकर 6:05 गर्मी की जुताई का महत्व विषय पर जानकारी देंगे दिनेश कुमार सिंह। भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना आप सुन सकते हैं प्रातः 6:10। स्वास्थ्य चर्चा ये कार्यक्रम आप सुनेंगे कल प्रातः 6:35।

श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ हम आपको सुनाएंगे कल प्रातः 6:40 पर। प्रातः 7 बजे का समय होगा। गुड मॉर्निंग बनारस का।

शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में कल प्रातः 7:31 पर सुनेगा वायलिन वादन। कलाकार होंगे सुखदेव प्रसाद मिश्र। 9:50 पर सुनेगा कार्यक्रम लोक संगीत। हमारे कल के लोक कलाकार होंगे खरपतराम और साथी। हेलो फोन इन फरमाइश, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे कल दिन में 11 बजे। प्रस्तुति होगी अरुण पांडे की। सुगम संगीत आप सुनिएगा दिन में 12:30 पर। हमारी कल के कलाकार होंगी प्रिया गुप्ता। और 12:45 पर शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में आप सुनेंगे गायन, कलाकार हैं संजय कुमार मिश्र। ये थी जानकारी हमारे आज के शेष और कल के कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

0: अभी आपने सुना फिल्म बेवफा का गीत। आवाज़ थी उदित नारायण की, शब्द रचना समीर की थी और संगीत नदीम श्रवण का।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए
3: 0542227658।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें
4: 0542227658।

0: सोनू निगम गाए फिल्म बेवफा सनम के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही बोलों में आप सुनेंगे समाचार।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। वरिष्ठः भाजपा नेता सुवेन्दु अधिकारी भाजपा विधायक दलस्य नेता निर्वाचितः। सः पश्चिमबंग प्रदेशस्य प्रथमः भाजपेति दलस्य मुख्यमंत्री भवितुं सज्जः अस्ति। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना सोमनाथ मन्दिरं भारतस्य दृढतायाः, एकतायाः, सभ्यतायाः च बलस्य कालातीतं प्रतीकत्वेन वर्णितम्। डीआरडीओ तथा भारतीय वायुसेनया स्वदेशीयस्य तारा ग्लाइड शस्त्रस्य प्रथमोड्डयन परीक्षणं सफलतया पूरितम्। अपि च भारतस्य सिमरनजीत कौर इत्येषा शांघाई नगरे आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 2 मध्ये महिलानां रिकर्व

0: पूर्णे वैश्विक वृद्धेः 17% यावत् अस्ति।
1: इंडिया कंट्रीब्यूट्स,
2: भारत कुल वैश्विक विकास में 17% का योगदान देता है। हम अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के जोखिम को कम करने में मदद कर रहे हैं। हम अधिक अवसर पैदा करने में सहायक हैं। हम आज और अधिक विकल्प तैयार कर रहे हैं। हम आज विभिन्न देशों के लिए ऐसे और अधिक मुक्त व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहे हैं और उन्हें अंतिम रूप दे रहे हैं ताकि वे इनका लाभ उठा सकें।
1: इंक्लूडिंग मोर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स फॉर कंट्रीज टू अवेल ऑफ इट।
0: विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंहः अवदत् यत् प्रवास विषये भारतस्य दृष्टिकोणः प्रवासिनां संरक्षणस्य मूल प्रचालन सिद्धान्तैः प्रवासस्य जीवन चक्रस्य सर्वसमावेशक शासनेन सुदृढ़ अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगेन च मार्गदर्शितः अस्ति। श्रीमंत्री न्यूयॉर्क नगरे संयुक्त राष्ट्र संघस्य भारतस्य स्थायी अभियाने द्वितीयान्तर्राष्ट्रिय प्रवास समीक्षा मंचे प्रतिनिधि दलस्य प्रमुखान संबोधयन आसीत।
2: भारत ने 23 देशों के साथ प्रवासियों की आवाजाही के लिए व्यापक द्विपक्षीय समझौते और समझौता ज्ञापन किए हैं तथा निष्पक्ष और नैतिक आवाजाही के लिए कई और अन्य समझौतों पर विचार किया जा रहा है। भारत का लक्ष्य अवैध पलायन, तस्करी और सामाजिक सुरक्षा में मौजूद कमियों जैसी चुनौतियों से निपटते हुए समावेशी, मानवीय और भविष्य के लिए तैयार ढांचे का निर्माण करना है।
0: प्रशासनेन उक्तं यत् सम्पूर्णे देशे गृह्य एलपीजी इत्यस्य आपूर्तिः सुकरः अस्ति। कस्मिन्नपि वितरण संस्थायां शुष्कतायाः सूचना नास्ति। नवदिल्ल्याम् अन्तर मन्त्रालयीयं वार्तालापं सम्बोधयन्ति पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मन्त्रालयस्य सचिवः सुजाता शर्मा इत्येषा उक्तवती यत् प्रशासनस्य प्रयासः अस्ति यत् देशीय ग्राहकेभ्यः गैस इत्यस्य अभावः न भवेत् तथा च पश्चिम एशियायाः विकसित स्थितौ मूल्यानि स्थिराणि एव भवेयुः।
3: भारत सरकार ने ये कोशिश की अभी तक कि कोई प्राइस इंक्रीज ना हो और इसके लिए एक्साइज ड्यूटी भी कम की। इसके अलावा और भी बहुत सारे कदम लिए, जैसे कि रिफाइनरीज के अंदर एलपीजी प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, पीएनजी कनेक्शंस को प्रमोट करना, हमारे फर्टिलाइजर प्लांट्स को भी धीरे धीरे बढ़ाया गया और अब लगभग 98% तक उनकी सप्लाई इंश्योर की गई है।
0: आकाशवाण्या स्वीय 90वें वार्षिकोत्सवस्यावसरे अद्य राष्ट्रिय राजधान्यां मैराथन इत्यस्य आयोजनं कृतम्। प्रायः 3.5 किलोमीटर मितं मैराथन इत्येतत् आकाशवाणी भवनात् आरभ्य कृषिभवने, रेलभवने, आरबीआई भवने च भूत्वा पुनः आकाशवाण्याम् एव समाप्तम्। आकाशवाण्याः दूरदर्शनस्य प्रसारभारत्याः च कर्मचारिणः स्वीय परिवारस्य सदस्यैः च सह अस्यां मैराथन धावन प्रतियोगितायां भागं गृहीतवन्तः। सर्वे प्रतिभागिनः धावन समापन पदकं प्राप्तवन्तः। पुरुष महिला विभागयोः शीर्षत्रयेभ्यः धावकेभ्यः पारितोषकानि प्रदत्तानि। अस्माकं संवाददात्रानुसारं प्रसारभारत्याः सीईओ गौरव द्विवेदी, आकाशवाण्याः महानिर्देशकः राजीव कुमार जैनः च स्पर्धायै हरितध्वजं प्रदर्शितवन्तौ। भारतस्य सिमरनजीत कौर इत्येषा अद्य सांघाई नगरे आयोजितस्य आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 2 इत्यस्मिन् महिलानां रिकर्व व्यक्तिगत स्पर्धायाः उपांत्य चक्रीय द्वन्द्वे प्रविष्टवती इति वार्ताः।
4: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। आइए सुनते हैं किसान भाइयों कार्यक्रम कृषि जगत।

0: पंचो राम
1: राम
0: राम
1: राम।
0: बुझावन भैया।
1: हाँ सत्तू भैया,
0: अरे कहा हो कुल हालचाल अपनी खेती किसानी का।
1: ये सत्तू भैया कुल नीमन बा हो। अब देखा गेहूं सेहूं का काम तो गयल सकील कहिया, अब खेत भी हो गए खाली। यही में जानत हुआ।

0: लगन बरात भी बड़ा तेज स्वरूप है।
1: भाई लगन बारात तो हइए है, और संगे संगे जोन कहला है कि खेत और तनी खेती से आराम मिलल बा, तो
0: बिल्कुल
1: भाई
0: मिलल भैया।
1: भाई यही मा अपने किसानी में ना बड़ा अलग अलग कुल काम होत रहेला हो, और ई जानला कि अपने किसानी मनई के कब्बो आराम ना हो। जैसे कि अब लगन पत्रिका के बात के लगे लगन चलत है, तो लगन के संगे संगे से देखा अब हमनी का जो कुछ जायद के फसल बोल रही है ना, वो भाई अपनी कह जाओ कि अंतिम अवस्था में चले जाता कि भाई अब तुड़ाई हो गई कोनो कोनो फसल का, कोनो कोनो कब तुड़ाई होत आ फिर अब खरीफ की फसल का तैयारी भी करते हैं जा।
0: अच्छा एक बात जोन कहला भैया ना कि माने मन के कुछ न कुछ काम लगले रहला, तो कुछ न कुछ जोन काम लगले रहला भैया किसान भाइयन के ना, तो कहे के मतलब ये बा कि भैया खेती बाड़ी ऐसे अपन पेट हो चाहे देश भर के जनता का पेट हो, तो ये किसान भाई भरा ना तो
1: बिल्कुल।
0: कुछ न कुछ खेते में तो उगत रहे, तब मैंने भैया खाए के व्यवस्था बनी।
1: अब भाई खेत में उगावे के हमें बुझाओन भैया,
0: हाँ
1: तो
0: सतो
1: ई
0: भैया।
1: जान ला कि जो ना यंत्र से हमनी के खेती करत है ना, ओ के बड़ा मेल जोल और ट्रक रखाओ के बड़ा ध्यान देवे के हो।
0: अच्छा माने खेती के जोताई के जोन बात कैला है, जोनी से खेत जोतल जात बा, भाई खेत जोताई नहीं तो मन बीज कैसे बुआई, आ जब बीज ओमन बुआई नहीं तो फसल कैसे पैदा होई। तो माने जोन जिसे कहे का मतलब ई बा जोन कृषि यंत्र बा, हल खुरपी कुदार हेंगा हरीस थ्रेसर रोटावेटर कल्टीवेटर सीड ड्रिल स्प्रेयर, माने कुल के ध्यान रखे के चाहिए।
1: एकदम कुल का ध्यान रखे के चाहिए। और ई जानला बुझान भी है ना कि
0: हाँ
1: जब हमनी को छोट रहनी जाए तो बाबा दादा जब कहल जाओ कि एक खेती से दूसरी खेती में का समय आवे, तो जब बोवे का समय आवे ना, तो उसे पहले ही जो अपन लोहार भाई लोग रहे ना उनकरी के हैं पहले ही हसुआ कुदार फौड़ा हर चीज़ के ले जाके ओके पिटवा दो। पिटवावे का मतलब हमारी यह कि जो ना उनका धार तनी कम हो गई है ओके धार लगवा दो, ताकि हमनी का जो खेती जब खेत का समय आवे खेती का समय आवे तो उस समय भाई उसे जोन ओकर उपयोग करे के हो, तो अगर मान लो फौड़ा है ओकर मिट्टी खोदे में उपयोग करे के हो तो आसानी से और कहल जाओ कि ठीक तरह से वो यंत्र काम करे।
0: अच्छा एक चीज़ और भैया जोन बात कहला है ना कि ओके लोहार के यहाँ ले जा करके ओके ठीक करावा ना, तो ठीक करेले से थोड़ा सा मजबूत भी हो जाए। अब पहले भैया अब तो ट्रैक्टर के व्यवस्था हो गई है, पहले बैले से खेती हो, तो औजार जब सही रही चोंक रही तो जुताई भी बढ़िया से करी,
1: बिल्कुल
0: अब बैलन के लोड भी कम पड़ा है।
1: भाई, अब तो आज जो ने बैल अपने ट्रैक्टर का इंजन हो गई है ना
0: बिल्कुल
1: भाई, देखा ओहू के वहीं रख रखाव करे के है। और ई जान ला कि भैया जेवन भी अपन कृषि वाला यंत्र हुआ, जैसे तू कल है रोटावेटर हल और
0: हाँ
1: जितना ई
0: खुरपी
1: यंत्र
0: कुदार
1: बते,
0: हेंगा।
1: हाँ जितना यंत्र बतैला ना भैया, देखा जब जुताई कर लेला या कहल जाओ कि जब तुहार तो जुताई संपन्न हो गई, वो खेती का काम तनी संपन्न हो गई मैंने ढीला गई नरमा गई, तो वो समय भाई ओकर हर पार्ट का अगर तोहके मतलब ढंग है तोहके आवत है तो खुदे से करा, नहीं तो जोन ओकर मैकेनिक जोन मिस्त्री हुआ ओकर जोन की ओकर जानकार लोग हुआ
0: बिल्कुल भैया
1: उनकरी लगे ले जाके जरूर ओकर जांच करावा ओके देख रेख करावा। और इतने नहीं ओमे भाई जितना अगर मान लो कि जहाँ ग्रीसिंग का काम है
0: हाँ मतलब ग्रीस लगाओ के बाद
1: हाँ
0: चाहे
1: तो
0: मोबिल लगाओ के बाद ओके लगा दे।
1: बिल्कुल ओके लगावो और उसे ना बुझान भैया ये जान लो कि बहुत फायदा है वो।
0: अच्छा ये सतु भैया जोन बात कहला ना कि ओकर ध्यान रखे के चाहिए ना, तो जैसा भैया यही से ना कहल जाला कि 9 के लकड़ी 90 खर्चा, अगर कृषि यंत्र बा जुताई के जोन यंत्र बा ओके समय से देखभाल आदमी न करी तो कल के डेट में जानत हुआ और खराब हो जाई, तो
1: भाई
0: और पैसा लगी।
1: भाई ये जान लो कि हमारे चाचा का रोटावेटर चलत रहे
0: अच्छा
1: और ओकर एगो पत्ती ढील रहे, और अगर वो निकलल ना पत्ती तो वो 2-3 गो पत्ती की तोड़त लेके निकलल, तो ये जान ला कि तुहार एगो चीज अगर खराब है तो ये मत सोचा कि वो एक ही चीज खराब है, अगर वो खराब है तो वो कई गो जुन्नुस के खराब कर चली।
0: माने तोहार चचा अगर एकट जोन पतिया ढील रहे
1: हाँ
0: ओकर जो नट बोल्टवा रहे अगर ओके कस देले रहता तो हो जोन बताओ थुआ कि 3-4 ठे और नुकसान हो गए ना, तो कम से कम वो तो बच गए रहत।
1: बिल्कुल
0: अच्छा जान थुआ जब हल खराब हो जाला चाहे कृषि यंत्र कौनो भी खराब खराब हो जाला तो भैया जब खेती के समय चरचरायल बा और वही में तोहर गयल यंत्र बिगड़ तो अब तो चलाओ के बनेबा के खेती के काम करबा।
1: बिल्कुल। और एक और चीज कह
0: हाँ।
1: कि देखा हर खेती बारी वाला जितना अपन सामान है अगर ओके तू समय से ठीक करा लेते हो ना बुझाउन भैया तो

0: जान लो कि तुहार अगर खेती के समय कोनो चीज खराब हो गई तो कहीं मिनले मिलेला नाही, काहे से कि सबकी लगे ओकरे खेती करे भर का ही यंत्र हो, वो अपनी लगे दूसरा के देवे बदे ना रखले हो। और ओमे बड़ा कहल जाओ कि एगो अपनी ओर से भी लज्जा लागेला कि तू कोई से मांगे जात हुआ और वो देवे में भी अशक्त रहेला, ना दे पावेला, ये चीज को ओहू के भी बड़ा शर्मिंदगी रहेला। तो ढंग से सही से अगर वो यंत्र के रख रखाव रहे अपन ना बिगड़े तो भाई दूसरे के ना जाए के पड़ी, ऐसे दोनों आदमी के शर्मिंदगी से बचे के हुई।
1: बिल्कुल, कितना बढ़िया बात बतौला हस तू भैया, कि माने वो समय खेती के जौन समय होले
0: हाँ
1: भैया,
0: भाई
1: सबके समय समय पर होले भैया, आ सबके जरूरत बा।
0: बिल्कुल
1: अब हमार हर हेंगा खराब हो गयल, यंत्र खराब हो गयल, तो दूसरे के यहाँ जाओ तो वह तो वह कमवा करत बा।
0: बिल्कुल बिल्कुल भैया। और ये जान लो ना कि इससे बहुत फायदा हो, अगर तुहरी लगे मशीन हो, मशीन का अगर तू रख रखाव ढंग से सहूर से अच्छा से करत हो ना बुझाओन भैया, तो ओकर आयु बढ़ जाला।
1: बिल्कुल
0: अगर
1: बढ़
0: वो
1: जाला
0: 4 साल
1: भैया,
0: चले के हो तो 6 साल चली, हो सके ओकरी दुगुना 8 साल चल सकेला।
1: बिल्कुल चले। अच्छा एक चीज़ और भैया, अब जैसे है ना, अब खेती बाड़ी कर के आई ना आदमी, हमारे किसान भाई आई ना, तो अब खेती बाड़ी करे का मतलब कि वो हॉल हो चाहे कल्टीवेटर हो चाहे सीड ड्रिल हो, जला भैया जवन भी खुरपी बा फावड़ा बा, तो अब ओके लिए ना तो मन माटी तो जरूर लगल रही। तो अभी कहे का मतलब ये बा कि अब माटिए लगल है ओके धय न दें, ओके साफ सफाई कह के धरा। आ एक बात का और ध्यान रखे के चाहिए भैया, जान
0: का
1: तो का सतु भैया, कि ओके छाया में रखे के
0: बिल्कुल।
1: चाहिए।
0: और ओकरी संगे संगे अगर ऊपर यंत्र पर तनी पानी लगल है ना तो
1: हाँ
0: देखो पानी के पोछ दे, नहीं तो देखेला
1: बिल्कुल
0: ना कि अपन कुल मूर्छा लग जाई। और मूर्छा लगेला तो जो अपन लोहे वाला यंत्र हुआ कितना जल्दी नुकसान हो जाला, मतलब कि अरे 2 साल चले के तो 6 महीना में
1: हाँ,
0: खराब हो
1: माने
0: जाए।
1: सत्तू भैया कह कहे का मतलब ये बा कि जो अगर मोमन पानी लग गल बा या फिर कुछ लग गल बा, तो ओके अगर ठीक से सफाई न करबा तो ओकर उम्र घट न जाई।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो भैया हम कहम ना कि जितना अपन भाई खेती किसानी में जैसे हमनी का अपन हाथ पाँव है ना, वैसे ही कहल जाओ कि अपने खेती किसानी का जौन खेती वाला यंत्र हुआ ना, वो अपने खेती बाड़ी का हाथ
1: हाथ
0: पैर
1: है
0: हुआ।
1: पाँव, अब जैसे अपने हाथ पाँव को हमन सुरक्षा ध्यान रखल जाला ना, तो वैसे भाई ओहू के रखे के चाही।
0: बिल्कुल बिल्कुल। ए बुझाओन भैया
1: हाँ हो
0: देखा
1: सत्तू
0: आगे
1: भैया,
0: भी बात बत कही कही जी, लेकिन है कुछ सने से सुनवा दे जा फिर बत कही हो।
1: बिल्कुल सुनवा दे भैया।

0: निखार। इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: बुझान भैया।
2: हाँ सतु भैया।
1: देखो सनेश तो सुनवा दिया नहीं जा, अब तनी चलल जा अपनी व्यवसायिक खेती की ओर। भाई दो पैसा आमदनी भी तो अपनी किसान भैया उनके और खुद करे के है।
2: ये भैया बहुत जरूरी बात।
1: तो क्या सुनवाओ तो आज?
2: ये भैया आज के बातचीत में गेंदे की व्यवसायिक खेती का जानकारी डॉक्टर अनिल कुमार से नहीं है और इनसे बड़ा फरीज बतियोले बना रामकृष्ण मिश्रा।
1: तो आवाज सुनवा दिया जा भैया।
2: बिल्कुल सुनवा दे भैया।
3: सर अनिल कुमार सिंह जी, आप विभागाध्यक्ष हुआ उद्यान विज्ञान विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। आज आपसे ही जानल चाहल जाए कि जोन गेंदा का फूल है एकर व्यवसायिक तरीके से खेती कौने तरीके से कल जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है किसान के लाभ हो।
4: देखें भैया, गेंदा का खेती तो बहुत समय से हो रही बा
3: जी,
4: लेकिन एकर थोड़ा सा वैज्ञानिक ढंग से अगर करी तो वहन उपज भी बढ़े, मुनाफा भी होए और बाजार में ओकर कीमत भी अच्छी से मिले अगर हमन थोड़ा सा मूल्य संवर्धन कर दही तब।
3: अच्छा,
4: तो सबसे पहले तो हमन नर्सरी तैयार करे के बात होता। तो नर्सरी तैयार करे बिना किसान भाई 3 मीटर लंबी चौड़ी, 1 मीटर और 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारी बनाए।
3: अच्छा,
4: ऐसी क्यारियां बनाने के बाद प्रति वर्ग मीटर 8 से 10 किलो गोबर की सड़ी खाद डाल दें।

0: खाद डाले के बाद हमन फिर खूब अच्छी नमी रहे तो हमन खूब बढ़िया से लाइन बना लें 3-3 4-4 सेंटीमीटर दूरी पे, और
1: अच्छा।
0: बीज का हमन बुआई करें। बीज का बुआई करते समय एक बात सावधानी बरतें कि दुई बीज न गिरे, एक लाइन में जब डालत हैं तो बीज थोड़ा दूर दूर गिरे।
1: अच्छा।
0: और ओके, फिर बुआई के बाद ढकाई पड़े, अब ढकाई बिना एक भाग गोबर सड़ी खाद, एक भाग मिट्टी और एक भाग बालू अगर रहे तो ओके मिलाए के उसे ढक दें। ढके के बाद ओके फिर पुआल से कथों से ढक के और हल्का सा ऊपर से हजारा से सिंचाई कर दें। तो
1: अच्छा।
0: सिंचाई किए के बाद रोज सुबह शाम हल्का सा हजारा से सिंचाई कर दें। ओकर बाद देखें कि 4-5 दिन बाद 6 दिन बाद हमन अंकुरण निकलब शुरू हो जाए।
1: अच्छा, तो ये जो नर्सरी किसान भाई डाला तो एकर समय का रहा है?
0: एकर समय देखें सितंबर अक्टूबर से पड़ाई लगा था। कुछ किसान भाई एक गर्मी में भी करे चाहते हैं या बरसात में करे चाहते हैं, तो उतना फिर ओकर पौध इधर एक सेराकुल वैरायटी है हुआ जो उनकी मिदनापुर वेस्ट बंगाल से ले आवत हैं
1: अच्छा।
0: पश्चिम बंगाल से, तो की भी लगा सकते हैं। लेकिन एक उचित समय जो जाड़ा का फसल होता है ओकर सितंबर में नर्सरी तैयारी करे चाहे।
1: अच्छा।
0: हाँ, तो हमन फिर नर्सरी तैयारी जब करी तो ओकरे बाद हमन देखें पौधक बढ़वार ज्यादा ना हो। हमन कुल मिला के 3 से 4 पत्ती जब आवे ओकर दिन देखें कि कितना जगह लिखा हुआ है कि 30 दिन में या 1 महीना बाद या 35 दिन बाद, नहीं हमें 3 से 4 जब पत्ती आवे तब ओकर रोपणी कर दें।
1: तो मान ले कि मैंने 3-4 पत्ती आ गई तो मान ले कि हमारा नर्सरी तैयार हो गया
0: तैयार हो
1: एकदम।
0: गए, तैयार हो गए। कुछ जने 8-8 10-10 पत्ती आए पर जब ओकर रोपणी करते हैं तो हमन पैदावार घट जाता है, अंग निकले
1: कली भी
0: और
1: आ
0: हाँ
1: जाता।
0: कली भी आ जाता है। वो तो बहुत देर का अवस्था हो गया, तो 4 पत्ती आवे तब ओकर जो अच्छे ढंग से रोपणी कर दें।
1: अच्छा, तो ये तो हो गल नर्सरी। लेकिन जब रोपे का बात आई तो जो ने खेत में रोपे के है वो खेत के कैसे तैयार कर जाए ओके बताओ तुम।
0: देखें खेत की तैयारी तो गेंदा का फसल 4-5 महीना खोत है तो हमन खूब बढ़िया खेत की जुताई कर लें 3-4 बार, और अंतिम जुताई के समय हमन गोबर की सड़ी खाद 8 से 10 टन 1 हेक्टेयर के हिसाब से हमन डालें, और
1: अच्छा।
0: डाले के बाद ओके जुताई करे के बाद पाटा लगाए के तब ओकरे बाद पौधन के लगावें। एकरे अलावा खाद और उर्वरक जो उनका बाहर नत्रजन फास्फोरस पोटास, ता अब किसान भाई जैसे हमन फास्फोरस और पोटास ये 90-90 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डाल दें अंतिम जुताई के समय।
1: अच्छा।
0: नाइट्रोजन जो होते जो यूरिया के रूप में देते हैं किसान भाई तो न डालें, ओके 20 दिन पर डाल दें 3 भाग में ओके बांटे बाहे। कुल मिला करके अपने बनारस के एरिया में जमीन अच्छी बाहे उपजाऊ बाहे, तो यहाँ 120 किलो नत्रजन का आवश्यकता पड़े जोने के कि 20 दिन पे 40 दिन पे और 60 दिन पे
1: अच्छा।
0: एके डाले के बाहे 3 भाग में, मतलब 120 किलो जनवा 3 भाग में बांट ले, मतलब 40-40 किलो एक बार में डाले के बाहे 20 दिन पे 40 दिन पे और 60 दिन पे।
1: अच्छा।
0: वह समय डालें, एके बुआई के समय या रोपणी के समय ना डाले की जरूरत बाहे
1: अच्छा।
0: नतजन वाला।
1: तो जैसे खेत तो तैयार हो गए, रोपाई का जब बात आई तो रोपाई का तरीका का हो चाहिए प्रोफेसर साहब?
0: रोपाई देखें हमन किसान भाई ध्यान रखें कि एकर जैसे जगह जगह किताब में भी या दूसरे जगह लिखा हुआ है 30x30 पे 60x30 पे 45x, हमन किसान भाई एकर रोपणी करे बिना का करें कि दुई लाइन एक साथ लगावें, दुई लाइन की
1: अच्छा।
0: दूरी रखें कुल मिला करके 35 से 40 सेंटीमीटर, और ओकरे बीच में भी 45 से 60 सेंटीमीटर जगह छोड़ें और पर रोपाई करें। और जब जौने से कि दुई लाइन तीन लाइन लगाई तो हमन का होए कि जमीन भी ज़्यादा इस्तेमाल हो जाए और फिर फूल तोड़े के छिड़काव करे के या कोनो हमन
1: जगह रही।
0: जगह रहे तो उसे आसानी से काम हो जाता है।
1: अच्छा, जैसे कि बेड एक थे व्यवस्था होले जिस मेड़ जे कहते हो, तो
0: हाँ,
1: मेड़ पे के ना लगा सकत?
0: तो मेड़ पे देखें मेड़ पे तो ना ही लगावें, मेड़ पे न लगाए के वह 40 दिन बाद हमन मिट्टी गुड़ाई करके ऊपर हल्की सी मिट्टी चढ़ा सकते हैं।
1: अच्छा। माने समथल है।
0: हाँ, समथल जमीन लगा हमन एक और जरूरी काम हो जाता है आजकल कि हमन एकर फुनगी तोड़ाई वाला काम वहाँ
1: अच्छा,
0: पर
1: ये कहा?
0: बहुत एकर जैसे लगा दिए। अब रोपणी के बाद जो दिन लगान उसे

0: 40 दिन पे एकर ऊपर का फुनगी तोड़ दें। तो अगर
1: अच्छा।
0: फुनगी ऊपर तोड़े से का हो, हमन कली ना निकले और फिर नीचे से हमन शाखा निकली।
1: अच्छा।
0: शाखा जब हमन निकली तो उसे फिर हर शाखा में से फूल निकले, और फिर जब वो फूल तोड़ी तो हमन से फिर नई शाखा निकले। तो हमन यह फायदा होता कि जौन किसान भाई अगर फुनगी ना तोड़ते तो पौधा लंबाई में काफी बढ़ जाता,
1: अच्छा,
0: और हमन शाखा भी कम निकलती तो उससे पैदावार घट जाता।
1: मैंने शाखा के ज्यादा निकाले बजे फुनगी तोड़ दे।
0: फुनगी तोड़े बा और 40 35 40 दिन पर फुनगी जरूर तोड़ दें। कुछ जगह तो संस्कृति बा है कि एक बार 40 दिन पर सौ तोड़ दें, और फिर उसके बाद जो हमन आवाता है कल्ला आवाता है ओके भी करीब करीब 50 दिन पे या 60 दिन पे ओके भी एक बार तोड़ दें।
1: अच्छा।
0: लेकिन ज्यादा न 2 बार तोड़े तो एक बार कम से कम जरूर 40 दिन पे ऊपर की फुनगी तोड़ दें।
1: हमन के तो भाई जे किसान लगावत हुआ डॉक्टर साहब, तो ओकरे बदे तो ये हो कि ज्यादा से ज्यादा फूले चाहिए, उन्हें पौधा का
0: हाँ।
1: लंबाई
0: नहीं नहीं
1: चौड़ाई तो चाहिए
0: नहीं
1: नहीं।
0: नहीं हम तो फिर पौधा जोन भाव पूरा घना हो जाए और फिर ओकर जोन भाव पैदावार ज्यादा हुए।
1: तो मैंने एकर ध्यान जो है किसान भाई के देवे के
0: बिल्कुल
1: पड़ी।
0: बिल्कुल एकर ध्यान देंगे।
1: अच्छा, ये जैसे खेत के तैयारी करत के घरी तक खाद का व्यवस्था हो गल कि जोताई के समय ही डाल वाल के
0: हाँ।
1: तैयार करेगा, लेकिन अब जब बढ़वार पे पौधा हो तब ओ घरी खाद का क्या स्थिति रही?
0: हाँ, तो वह समय वह जैसे बताया हम कि फास्फोरस और पोटास तो पड़ गया हमन, अब यूरिया जो डाला एक बार के 20 दिन पे 40 दिन पे 60 दिन पे डाले एक बार।
1: अच्छा।
0: अगर बीच में उनके लगाता है जरूरत बाहे तो हमन 2% यूरिया का छिड़काव भी कर सकते हैं।
1: अच्छा। तो ये तरह से जो है खाद दे हम,
0: हाँ,
1: सिंचाई कैसे करें?
0: सिंचाई हमने देखा है कि शुरू में जौन दिन एक लगे ही वह दिन तो हल्की सिंचाई कर दें, ओकरे बाद 10 दिन पे सिंचाई कर दें, और नहीं फिर आगे जब बरस खूब बढ़िया जब ठंड पड़े लगा था तब सिंचाई कम आवश्यकता पड़ा था, और वह समय 15 दिन पे 20 दिन पे 15 दिन पे सिंचाई करें।
1: सिंचाई कौन तरीके से करें जैसे?
0: सिंचाई तो हमन देखें हमन तो सीधे खेत की सिंचाई करें और पानी लगाए के ज्यादा पानी नहीं लग पावे, एक बार
1: अच्छा।
0: खेत भर जाए ओके बाद ओके बंद कर दें।
1: माने कि बस नमी हो
0: हाँ,
1: जाए
0: नमी
1: खेत
0: हो
1: में
0: जाए बढ़िया
1: तो
0: से
1: छोड़
0: ओमन पानी
1: दे।
0: नहीं लग पावे। हाँ, ओके बंद।
1: अच्छा इमा डॉक्टर साहब, फिर रोग कौन तरह से, अब कीट कौन लगत है
0: हाँ,
1: ओके तनी
0: हमन तो
1: बताओ।
0: देखा है ज्यादा रोग और कीट ना लगत, लेकिन हमन आप देखिए कि गेंदा फसल तो हमन छोटा छोटा छोटा छोटा पत्तिन पे धब्बा पड़ जाता है, ठीक बा। अच्छा, कभो कभो वो धब्बा का प्रभाव फूलन पे भी आवत है,
1: अच्छा।
0: तो एके बिना का करें कि जब हल्का सा धब्बा हमन पड़े लगे काला काला छोटा छोटा सरसों के दाना तो पड़ जाता है, तो हमन का करें कि हमन एक बेबिस्टिन दवाई होता
1: अच्छा।
0: बेबिस्टिन जोने का कि 2 ग्राम 1 लीटर के दर से, मतलब 20 ग्राम 10 लीटर पानी मिला के कर छिड़काव कर सकते हैं ना, 2 बेरी कह दे तो रोग खत्म हो जाता है।
1: अच्छा।
0: अब जहाँ तक कीड़न का बात बा है तो हमन एक पत्ती काटे वाला कीड़ा लगाते हैं।
1: अच्छा।
0: हाँ, ओके बिना का ओहन पत्ती देखी काट दे जगह जगह कभो को फूल के भी थोड़ा सा खा लेते हैं कीड़ा, तो एक बिना का करें कि एक रोगार सस्ती दवाई आवा था रोगार, उसे काफी हद तक फायदा हो जाता किसान भाई के, एक एक कीड़ा मर जाते हैं। तो 1.5 ग्राम 1.5 ML मतलब मिली लीटर 1.5 मिली लीटर 1 लीटर पानी में घोल बना कर छिड़काव कर दें,
1: अच्छा।
0: तो ओकर कीड़ा भी खत्म हो जाता है।
1: आका कोनो जैविक भी विधि है जैसे एकर रोकथाम हो?
0: ना है तो ओके बिना तो फिर जैविक विधि से तो खेत में मिलावे पड़े ओके, लेकिन हमन आवत हैं कुछ ऐसा बायो कंट्रोल एजेंट हैं जो
1: अच्छा।
0: उनका प्रयोग कर सकते हैं किसान भाई।
1: माने ये सब तरीके से जो है
0: हाँ
1: रोग
0: हाँ
1: कीट का
0: हाँ
1: अपने नियंत्रण
0: हाँ
1: करके ज्यादा
0: हाँ
1: से ज्यादा उत्पादन ले
0: हाँ ले
1: लेते
0: सकते हैं।
1: हैं, एकर तोड़ाई कैसे हो?
0: देखें हम तो जैसे किसान भाई का करें कि बाजार में कभों कभों खूब रेट सस्ता हो जाता तो फूल तोड़ा बंद कर देते हैं ना, तो के तोड़ें फूल में बीज न बने चाहे, फूल जब
1: अच्छा।
0: पूरा खिल के बाद तो के तुरंत तोड़ ले चाहे, अब एक फिर एकर ग्रेडिंग कर लें, बड़ा फूल मध्यम आकार फूल छोटा फूल, जब भी फूल आओ पूरा अपन आकार ले ले एकर तोड़ाई कर लें, और तोड़ाई के बाद के ग्रेडिंग के बाद ओकर माला बनाओ, माला
1: अच्छा।
0: बनाए के बाद ओकर भाव देखें माला का हमेशा बाजार में अच्छा रहा था, और माला बनाए से किसान भाई के ज्यादा फायदा हुए फूल बेचे के वनस्पति।
1: हाँ, माने माला बना के ओके
0: हाँ
1: बेचे
0: हाँ
1: फिर।
0: अगर रेगुलर अगर फूल को तोड़ाई करते हैं तो आप समझ लें कि 1 हेक्टेयर में 3 4 क्विंटल उपज अपने आप बढ़ जाता है, अगर वह छोड़ देते हैं तो उसे बीज बनने लगता है, जब बीज बनने लगा सारी शक्ति जनवा खेते

0: पौधा का बीजेम चला जाता है और फिर
1: अच्छा
0: वही तोड़ के फिर बेचही की बाहर। तो एक एक का करें कि जब फूल पूरा खिल जाए तो तुरंत तोड़ ले चाहे, और भले वो के बाजार में कम बाहर रेट, तो कोल्ड स्टोरेज में 2 दिन या 4 दिन या 5 दिन में रख दें,
1: अच्छा
0: और चाहे फिर बाजार में बेच दें ओके, लेकिन फूल को रेगुलर तोड़ाई करे चाहे
1: छोट
0: उस।
1: किसान रहे तो फ्रिज या
0: हाँ
1: फ्रीजर बना के भी अपन उम्मा रख
0: हाँ
1: सकते हैं।
0: हम थोड़ा बहुत रख सकते हैं।
1: तो माने ये तरीके से जब किसान भाई खेती करी है गेंदा का
0: हाँ
1: तो ज्यादा से ज्यादा मुनाफा उन्हें
0: हाँ
1: मिले।
0: ज्यादा ज्यादा वो जैसे प्रजाति है ना, कुछ अच्छी प्रजाति अपने देश में पैदा होगी, जैसे पूसा नारंगी गेंदा बा, पूसा बसंती गेंदा बा है,
1: अच्छा
0: एक सेराकुल हुआ है, तेनहन
1: एक
0: प्रजाति से आप
1: दाम
0: समझ
1: ज्यादा मिलत।
0: दाम इनका ज्यादा मिले। हमन एक अच्छे आकार के फूल भी आवत हैं, ज्यादा छोटा बड़ा नहीं, मध्यम आकार, जिसमें ज्यादा माला बन जातीन और उपज भी काफी अच्छी बा है। अच्छे किसान
1: अच्छा
0: भाई 20 से 22 टन मतलब 2 से 1 क्विंटल तक एक उत्पादन ले सकत
1: ये
0: हैं।
1: जो कहना हुआ
0: हाँ
1: पूसा
0: पूसा नारंगी
1: नारंगी।
0: गेंदा, हाँ एक ऊपर ले सकत खूब बढ़िया।
1: अच्छा माने
0: हाँ
1: ये ज्यादा इसमें लोगों के
0: हाँ
1: मांग
0: हाँ
1: पर भी
0: हाँ
1: हो।
0: मांग में भी है और किसान एकर बीज भी आसानी से उपलब्ध हो जाता है, और अपने देश के वैरायटी है वो, दूसरा बीज तो बहुत महंगा मिलते हैं, एकर 2,000 रुपया किलो बीज मिल जाए।
1: अच्छा
0: हाँ
1: आज अगर 1 हेक्टेयर में लगाओ तो कितना बीज हो जाए?
0: देखा वहां तो अच्छा बीज अगर पाए जाए तो 1 से 1.5 किलो, 1.5 किलो बीज में खूब बढ़िया 1 हेक्टेयर एरिया लग जाए उनका, एक
1: अच्छा
0: हेक्टेयर खेत लग जाए बड़े आराम से।
1: तो मैंने एक तरह से कुल ध्यान दी है अगर किसान भाई तो
0: हाँ
1: बढ़िया तरीके से जो है अपने गेंदा का खेती करी है और उसे ज्यादा से ज्यादा
0: ज्यादा ज्यादा
1: मुनाफा
0: उत्पादन
1: पाई है।
0: मुनाफा।
1: प्रोफेसर अनिल कुमार सिंह जी आप हमन के बीच में ही ना आए इतनी बढ़िया जानकारी देना किसान भाई लोगन के एकरे बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
2: सत्तू भैया
3: हाँ भैया
2: देखा भैया, हमन धान गेहूँ मटर चना के खेती तो करबे कैल जाए, अगर साथे साथे फूले का भी खेती कैल जाए तो कितना बढ़िया। जैसे डॉक्टर अनिल कुमार सिंह गेंदे की व्यावसायिक खेती के बारे में कितना फरीज फरीज बत्ती हूँ
3: और
2: आ
3: कितना बढ़िया बताइना कि ये खेती का ना
2: हाँ
3: अगर लोग करत है ना
2: हाँ
3: तो कह लो कि 20 से 22 टन प्रति हेक्टेयर ऐसे फूल निकल सकेला। और ये फूल का भाई ये जान ला कि इतना मांग है गेंदा के फूल चाहे कोनो फूल का, लेकिन भाई हर फूल में तनी गेंदा का फूल हमने के देखे में आवेला अपने आसपास के क्षेत्र में।
2: देखा ये भैया फूल के बात है, देखा मंदिर में चढ़ाओ के हो तो फूल के जरूरत, शादी ब्याह भैल तो फूल के
3: हाँ
2: जरूरत, कितना जरूरत पड़े
3: अरे हर
2: आपके।
3: जगह सजावट में फूल
2: हाँ
3: लगत
2: फूल
3: हो
2: लगत बा
3: और सुंदर भी लगेला
2: बिल्कुल
3: वो।
2: लगेला भैया। अच्छा
3: बिल्कुल
2: इसे भैया बीज का भी डॉक्टर साहब कितना बढ़िया बात बताऊँ ना, बढ़िया बीज होए के चाहिए, वैसे कह भैया जैसन बोईबा वैसन कटबा, मान लो खाद बीज अगर बढ़िया हो गए तो तुहार फायदे फायदा है, लाभ
3: बिल्कुल
2: कमेबा भैया।
3: आप बुझान भैया
2: हाँ भैया सत्तू भैया
3: हम तो अब कहब कि तनी मन मनसाइन हो जा।
2: हाँ हम बुझत रही है तुमके कि अब तुम मुश्कियात बाड़ा, अब तुहार सुने के मन बाय कुछ।
3: तो शेर सिंह और उनकी साथी लोगों का ना ये देशभक्ति गीत है आओ हमने को सुना जाए भैया उनके भी सुना हो जाए।
2: बिल्कुल सुनवा दें भैया।

0: सोने का चिड़ैया अपन देशवा कहाला। बुझान भैया,
1: हाँ सुधीर
0: देखो
1: जी,
0: ना, अपने देश का भाई बखान जितना सुने के मिलेला ना, हमनी को उस देश कहल जाओ कि बड़ा सुंदर हो।
1: अच्छा एक बात बताइए हो सत्तू भैया, जोन बात कर रहा कि अपने देश के बखान सुने में कितना बढ़िया, तो अंदर से तबीयत न भैया एकदम गदगद हो जाले हो।
0: और गदगदे की संगे संगे मन करेला ना कि खाली बस आदमी अपने देश का, अपने आवे अपने पीढ़ी का, अपने समाज का ऐसे ही अनुभव लेते रहे, अपन देश का हमेशा मान सम्मान ऊंचा करे, बढ़ावे।
1: बिल्कुल भैया,
0: शेर सिंह और उनकर साथी लोगों का ये देशभक्ति गीत रहा। बुझान भैया,
1: हाँ भैया,
0: कालो के कार्यक्रम के बारे में बता दिया जाए।
1: हाँ भैया, तो कल सवेरे 6:05 पर खेती की बातें में विषय रही गर्मी की जुताई का महत्व, एक जानकारी दी है दिनेश कुमार सिंह।
0: हाँ, और संध्या के का सुनवाओ थोड़ा।
1: असंध्या के भैया यही अपने 6:30 पर कृषि जगत कार्यक्रम में अल बचत के विभिन्न उपाय,
0: अच्छा,
1: एकरे में जानकारी दी है धीरेन्द्र कुमार मिश्रा से रामकृष्ण का वार्ता है।
0: बिल्कुल भाई, कहल जाओ कि हमनी का तो छोटा छोटा बचत अपनी खेती किसानी में करबे करे नहीं जा, और भी कोनो बचत हुई तो वो विषय में हमनी का ये वैज्ञानिक भैया बताई हैं,
1: बिल्कुल
0: तो
1: भैया,
0: बुझान भैया।
1: हाँ सत्तू
0: अब
1: भैया,
0: कहब कि अपन धीरे धीरे समय हो गई है चले का, तो अपनी भैया लोगों से आज्ञा लिया जाए।
1: बिल्कुल भैया,
0: तो पंचो
1: पंचो
0: राम
1: राम
0: राम।
1: राम।

अभी किसान भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम कृषि जगत। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

शंकर एहसान लॉय के संगीत निर्देशन में अभी आपने जावेद अख्तर का लिखा गीत सुना। आवाजें थी अलका याग्निक और उदित नारायण की। फिल्म थी कल हो न हो।

अभी आपने सुना फिल्म बादल का गीत। आवाजें थी सोनू निगम और कविता कृष्णमूर्ति की। समीर के बोल थे और संगीत अनु मलिक का।

रेखा भारद्वाज गाए फिल्म दिल्ली 6 के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। आइए सुनते हैं खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना। पुलिस अधीक्षक जनपद मिर्जापुर से प्राप्त सूचना के अनुसार अमरी देवी पत्नी स्वर्गीय मोतीलाल निवासी सेटलमेंट एरिया मोहना वार्ड नंबर 7 चुनार से दिनांक 29/3/2026 से लापता हैं। इनके संबंध में जानकारी की बातें इस प्रकार हैं। उम्र

75 वर्ष, कद 5 फुट, रंग गोरा व चेहरा गोल है। इनके संबंध में यदि आपको कोई भी जानकारी प्राप्त हो तो कृपया इस पते पर सूचित करें। पुलिस अधीक्षक, जनपद मिर्जापुर। कोई भी व्यक्ति के संबंध में सूचना समाप्त हुई।

0: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना। स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं।
1: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और बृजेश पाठक सहित विभिन्न सांसदों और मंत्रियों ने स्वगणना प्रक्रिया पूरी की। सामाजिक आर्थिक आकलन के लिए सबकी भागीदारी को बताया जरूरी। प्रदेश में कल और 10 मई को होने वाली प्रवक्ता संवर्ग परीक्षा को लेकर तैयारी पूरी। परीक्षा केंद्र एआई कैमरों से लैस, 4 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी होंगे शामिल। बुलंदशहर में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में 3 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत। और कल पूर्वी उत्तर प्रदेश में गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी। मौसम विभाग ने 10 मई के बाद फिर से बारिश का जताया अनुमान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं राघवेंद्र त्रिपाठी, और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कल से डिजिटल

0: जनगणना के प्रथम चरण के शुभारंभ के बाद स्वगणना की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। इसी क्रम में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आज ऑनलाइन माध्यम से जनगणना प्रक्रिया के प्रथम चरण को सफलतापूर्वक पूर्ण किया। इस अवसर पर उन्होंने अपील करते हुए कहा कि जनगणना देश के विकास की आधारभूत प्रक्रिया है और इसमें प्रत्येक नागरिक की भागीदारी अत्यंत आवश्यक है। वहीं उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने भी आज अपना जनगणना प्रपत्र ऑनलाइन भरा। उन्होंने लोगों से जनगणना प्रपत्र ऑनलाइन या भौतिक रूप से भरकर जल्द से जल्द जनगणना प्रक्रिया पूरी करने की अपील की।
1: देखिए, जनगणना का प्रथम चरण चल रहा है। मैं प्रदेशवासियों से अपील करता हूं कि सभी लोग जनगणना प्रपत्र ऑनलाइन या फिजिकल भर करके जनगणना की प्रक्रिया को शीघ्र शीघ्र पूरा करें। इससे जनगणना पूरी होकर के और आगे जो संवैधानिक कार्य हों पूरे हो सके। आज जनगणना प्रपत्र हमने ऑनलाइन भर दिया।
0: इसी क्रम में डुमरियागंज से सांसद जगदम्बिका पाल, पंचायती राज्य मंत्री ओम प्रकाश राजभर, कैबिनेट मंत्री कपिल देव अग्रवाल और विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने भी आज स्वगणना की प्रक्रिया पूरी की। लखनऊ स्थित यूनिसेफ कार्यालय में आज जनगणना संचालन क्षेत्रीय निदेशालय उत्तर प्रदेश ने यूनिसेफ के सहयोग से जनगणना 2027 स्वगणना पर सेंसस मैटर्स फॉर चिल्ड्रन विषय पर जागरूकता और क्षमता विकास सत्र आयोजित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश की मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी शीतल वर्मा ने बताया कि स्वगणना जनगणना 2027 का एक प्रमुख नवाचार है। यह देश की पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना होगी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज द्वारा प्रवक्ता संवर्ग के 18 विषयों के कुल 624 पदों के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन कल और 10 मई को किया जाएगा। परीक्षा प्रतिदिन दो पालियों में आयोजित होगी, जिसमें कुल 464,605 अभ्यर्थी शामिल होंगे। आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने आज 17 जनपदों के 319 परीक्षा केंद्रों की तैयारियों की गहन समीक्षा की। उन्होंने बताया कि परीक्षा केंद्रों के सभी कक्षों और महत्वपूर्ण स्थलों को AI आधारित CCTV कैमरों से लैस करते हुए जिला कंट्रोल रूम और आयोग के इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड रूम से जोड़ा गया है। प्रदेश में संचालित स्मार्ट प्री पेड मीटर व्यवस्था को समाप्त कर सभी स्मार्ट मीटरों को पोस्ट पेड मोड में संचालित करने के संबंध में औपचारिक आदेश जारी कर दिया गया है। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने बताया कि RDSS योजना के अंतर्गत स्थापित सभी स्मार्ट मीटरों को तत्काल प्रभाव से पोस्ट पेड मोड में परिवर्तित किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
2: प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ने बताया कि अब मई 2026 की विद्युत खपत का बिल जून 2026 में पोस्टपेड प्रणाली के अंतर्गत जारी किया जाएगा और उपभोक्ताओं को बिल SMS और WhatsApp के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि स्मार्ट पोस्टपेड बिल प्रत्येक माह की 10 तारीख तक जारी किए जाएंगे। जिन क्षेत्रों में नेटवर्क अथवा संचार संबंधी समस्या के कारण स्मार्ट मीटर की ऑटोमेटिक रीडिंग प्राप्त नहीं होगी, वहां एजेंसियों के माध्यम से मैनुअल रीडिंग लेकर समय से बिल उपलब्ध कराया जाएगा। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
0: राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के वर्ष 2024 के आंकड़ों ने राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति को दर्शाया है। रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रीय क्राइम रेट 252.3 के सापेक्ष उत्तर प्रदेश का क्राइम रेट 180.2 रहा। कुल अपराधों में उत्तर प्रदेश का देश में 18वां स्थान है। एक रिपोर्ट।
3: NCRB रिपोर्ट में हत्या के मामले में देश में यूपी का स्थान 29वां है, जबकि हत्या के प्रयास के मामलों में ये 26वें स्थान पर है। वहीं फिरौती के लिए अपहरण के मामलों में राज्य पूरे देश में सबसे नीचे 36वें नंबर पर है। दुष्कर्म के मामले में यूपी देश में 24वें स्थान पर है, जो राज्य में बेहतर हुई कानून व्यवस्था को बताता है। जेलों में क्षमता और अनुशासन के मामले में भी यूपी का प्रशासन अन्य राज्यों से बेहतर है। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने कहा कि ये सुधार सतत और सुविचारित प्रयासों का प्रतिफल है। पिछले 9 वर्षों में आधुनिक पुलिस स्टेशन, सतर्क एंटी रोमियो स्क्वाड, हर थाने पर समर्पित महिला हेल्प डेस्क, कमजोर वर्गों को त्वरित न्याय दिलाने वाले फास्ट ट्रैक कोर्ट और संगठित अपराधों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई ने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज स्थापित किया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे

0: यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। बुलंदशहर में आज नेशनल हाईवे 34 पर तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार परिवार को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक पर सवार पति पत्नी और उनके 3 मासूम बच्चों की मौत हो गई। हादसे की सूचना पर घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने सभी मृतकों के शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं। मौसम विभाग ने कल पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई भागों में गरज चमक के साथ बारिश का अनुमान जताया है। विभाग ने कई जगहों पर तेज हवा और आकाशीय बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया कि आगामी 2 दिनों में मौसम साफ रहेगा। वहीं 10 मई के बाद पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मध्य और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 12 मई से हल्की बूंदाबांदी का दौर शुरू होगा।
1: 9 मई को जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है वहाँ छिटपुट वर्षा होने की संभावना बहुत लाइट रेनफॉल छीटाकसी हो सकता है, बाकी उसके बाद मौसम साफ है। फिर से जैसा कि नया पश्चिमी विक्षोभ 10-11 तारीख से एक्टिवेट हो रहा है, जिसके वजह से 12 तारीख से पश्चिमी उत्तर प्रदेश और सेंट्रल पार्ट में फिर से धीरे धीरे एक्टिविटी बढ़ेगी, हल्की बूंदाबांदी का दौर शुरू होगा।
0: आकाशवाणी ने राष्ट्र के प्रति अपनी विशिष्ट सेवा के 90 वर्ष के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की श्रृंखला के क्रम में आज राष्ट्रीय राजधानी में मैराथन का आयोजन किया। एक रिपोर्ट।
2: आकाशवाणी के व्यापक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क में इसी प्रकार के मैराथन और वॉकाथॉन कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिससे 90वीं वर्षगांठ के समारोह के दौरान व्यापक जनभागीदारी और जागरूकता सुनिश्चित हो सके। इस अवसर पर प्रसार भारती के CEO गौरव द्विवेदी ने कहा कि मैराथन के माध्यम से फिटनेस का संदेश जनता तक पहुँचाया जा रहा है।
3: इस साल 90 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम आकाशवाणी में आयोजित किए जा रहे हैं। हमारे पूरे देश में जितने भी स्टेशन हैं, जो देश में फिटनेस की एक मूवमेंट माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आरंभ हुई, उसका संदेश भी लोगों तक ले जाने के लिए ये उस कड़ी में एक कदम था।
2: आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने बताया कि आयोजन सार्वजनिक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी द्वारा देश की सेवा में किए गए योगदान को दर्शाता है।
4: ब्रॉडकास्टर होने के नाते जब इस तरह का कार्यक्रम हम करते हैं तो इसका संदेश दूर दूर तक, सुदूर प्रदेश तक पहुँचता है और ये एक बहुत बड़ा उदाहरण होगा।
5: देश भर में जो हमारे 232 मुख्य केंद्र हैं उन पर ये आयोजन इस महीने आयोजित होगा।
2: अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रदेश भर में कल राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायालय, कलेक्ट्रेट परिसर और समस्त तहसीलों में किया जाएगा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली और उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार लोक अदालत में पारिवारिक और वैवाहिक विवाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, उपभोक्ता मामले, बैंक रिकवरी सहित विभिन्न प्रकार के वादों का निस्तारण किया जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक सहित विभिन्न सांसदों और मंत्रियों ने स्वगणना प्रक्रिया पूरी की। सामाजिक आर्थिक आकलन के लिए सबकी भागीदारी को बताया जरूरी। प्रदेश में कल और 10 मई को होने वाली प्रवक्ता संवर्ग परीक्षा को लेकर तैयारी पूरी। परीक्षा केंद्र AI कैमरों से लैस, 4 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी होंगे शामिल। बुलंदशहर में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में 3 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत। और कल पूर्वी उत्तर प्रदेश में गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी। मौसम विभाग ने 10 मई के बाद फिर से बारिश का जताया अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूँ कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है।
1: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है, प्रस्तुत है फिल्म संगीत कार्यक्रम रसरंग।

अभी आपने सुना फिल्म अक्सर का गीत, आवाज थी हिमेश रेशमिया की, गीत लिखा था समीर ने और धुन तैयार की थी हिमेश रेशमिया ने।

अभी आपने सुना फिल्म हाईवे का गीत। आवाज़ थी सुल्तान नूर की, इरशाद कामिल के बोल थे और धुन तैयार की थी AR रहमान ने।

अभी आपने मोहित चौहान का गाया फिल्म कमीने का गीत सुना, गुलजार के बोल थे और विशाल का संगीत।

अभी आपने अतरंगी फिल्म का सीन गीत सुना, आवाज़ थी अरिजीत सिंह की, इरशाद की बोल थे और धुन तैयार की थी ए आर रहमान ने।

हमशिका और अरिजीत सिंह के गाए फिल्म एजेंट विनोद के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत कार्यक्रम रसरंग यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं सुगम संगीत।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत। सुगम संगीत में रियायत से कलाकार थे भूपेंद्र सिंह। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम रसमाधुरी।

अभी आपने सुना फिल्म दीवाना का गीत, आवाज थी कुमार सानू की, समीर की बोल थी और नदीम शरण का संगीत।

0: लता मंगेशकर और मुकेश के गाए फिल्म फर्ज के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत कार्यक्रम रसमाधुरी ही संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार संध्या।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को कांग्रेस, आईयूएमएल, वीसीके और वामपंथी दलों का समर्थन मिला, कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा। भारत और सिंगापुर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सूचना साझा करने में तेजी लाने पर सहमत। और चीन में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में सिमरनजीत कौर रिकर्व स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। कोलकाता में आज उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को चुना गया और श्री अधिकारी को निर्विरोध विधायक दल का नेता चुना गया।
2: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
1: श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत ऐतिहासिक है।
2: 100 साल की वैचारिक यात्रा के बाद गंगोत्री से गंगा सागर तक हर जगह पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। हम सब के लिए बहुत आनंद है। 1950 से जिस विचार की यात्रा को लेकर हम निकले और जिसके नेतृत्व

0: तो में निकले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व, उनकी ही जन्मभूमि में आज 2026 में श्यामा प्रसाद जी की ही पार्टी की सरकार बन रही है।
1: शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदर्शों पर राज्य का विकास करेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: संकेत मिल गया था कि भवानीपुर में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चुनाव में शिकस्त देने वाले शुभेंदु अधिकारी बंगाल की अगले मुख्यमंत्री की दौड़ में सबसे बड़े उम्मीदवार है। आखिरकार वही आजकल सच साबित हुए। परिषदीय दल के नेता चुने जाने के बाद शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के साथ लेकर लोक भवन गए। उनके साथ दिलीप घोष, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी सहित दल के कई केंद्रीय और राज्य नेता मौजूद थे। वहाँ राज्यपाल आरएन रवि के पास शुभेंदु ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। संवैधानिक परंपरा के पालन करते हुए बहुमत का दावा पेश किया गया और इसके साथ ही कल ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए राज्यपाल को औपचारिक निमंत्रण भी दिया गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच दिन रात एक करके वहां तैयारी के काम चल रहा है। आकाशवाणी के लिए कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य।
1: तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को कांग्रेस, आईयूएमएल, वीसीके और वामपंथी दलों का समर्थन मिल गया है। वे कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 51 वर्षीय जोसेफ विजय ने आज तीसरी बार राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर से भेंट कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। एक रिपोर्ट।
3: दो दिनों तक चली बैठकों के बाद तमिल वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, विदुथलाई चिरुथिगल काची, वीसीके और आईयूएमएल से समर्थन पत्र प्राप्त हो गए हैं। पार्टी ने सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 विधायकों का समर्थन हासिल कर लिया है, जिससे उसे स्पष्ट बहुमत मिल गया है। अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय अब राज्य के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। उनका शपथ ग्रहण समारोह जल्द ही चेन्नई में आयोजित होने की संभावना है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में निर्णय राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार लगातार तीसरी बार मंगलवार को शपथ लेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों और उपचुनावों के लिए सूचकांक कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट ईसीआई नेट ऐप पर जारी की है। सूचकांक कार्ड में उम्मीदवारों, मतदाताओं, डाले गए वोटों, गिने गए वोटों, पार्टीवार और उम्मीदवारवार वोटों सहित विभिन्न डेटा दिए गए। इसे चुनाव नतीजों की घोषणा के 72 घंटे के रिकॉर्ड समय में उपलब्ध कराया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। न्यायालय की पीठ ने हाल ही में मादक पदार्थों की लत के कारण एक महिला के पांचों बेटों को खोने की घटना का संज्ञान लिया। पीठ ने कहा कि मादक पदार्थों के खतरे से निपटने के लिए केंद्र सरकार का हस्तक्षेप आवश्यक हो गया है। मुख्य न्यायाधीश ने राज्य और केंद्र की एजेंसियों से मादक पदार्थों के खतरे को जड़ से खत्म करने को कहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA द्वारा जांच किए जा रहे 10 से 15 लंबित मामलों की सुनवाई के लिए कम से कम एक विशेष अदालत गठित की जाए। न्यायालय ने कहा कि विशेष न्यायालयों का गठन एक महीने के भीतर किया जाना चाहिए। मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए शीर्ष न्यायालय ने निर्देश दिया कि कोई अन्य मामले विशेष न्यायालय को नहीं सौंपे जाएंगे और सुनवाई प्रतिदिन के आधार पर की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का सशक्तिकरण और सुरक्षा केवल सीमाओं की रक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज, पर्यावरण और नागरिकों की सुरक्षा से भी जुड़ी है। नई दिल्ली में तिरंगा पर्वतीय बचाव दल के 10 वर्ष होने पर एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने दल के कार्यों और उपलब्धियों का उल्लेख किया।
2: तिरंगा माउंटेन रेस्क्यू के लोग वो हैं जिनकी उपस्थिति हमारी सेनाओं को संबल प्रदान करती है। आपने सैनिकों के मनोबल को बढ़ाया।

0: है। आपने हिमालयी क्षेत्र में रहने वाले समुदायों को यह एहसास कराया है कि वे अकेले नहीं है। टीएमआर जैसे संस्थानों का कार्य केवल रेस्क्यू तक सीमित नहीं है, आप इनडायरेक्टली बॉर्डर स्टेबिलिटी, कम्युनिटी कॉन्फिडेंस और नेशनल रेजिलियंस को भी मजबूत कर रहे हैं।
1: रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO तथा वायुसेना ने ओडिशा तट पर सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन तारा हथियार का पहला सफल परीक्षण किया है। यह अत्याधुनिक कम लागत वाली प्रणालियों का उपयोग करने वाला पहला ग्लाइड हथियार है। एक रिपोर्ट।
2: यह भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली है जो किसी भी सामान्य हथियार को घातक और सही दिशा में सटीक मार करने वाले हथियार में बदलने में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर इस एडवांस रेंज वेपन सिस्टम तारा का सफल परीक्षण किया गया। हैदराबाद स्थित DRDO की रिसर्च सेंटर इमारत ने DRDO के अन्य प्रयोगशालाओं के साथ मिलकर इसे डिजाइन और विकसित किया है। तारा प्रणाली में अत्याधुनिक लेकिन कम लागत वाली तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। भारत की यह उपलब्धि स्वदेशी रक्षा निर्माण क्षमता और अत्याधुनिक सैन्य तकनीक विकसित करने की दिशा में बढ़ती ताकत को दर्शाती है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि को भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में भूमि संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तीसरे चरण की समीक्षा करते हुए श्री चौहान ने कहा कि आधुनिकीकरण के प्रयासों से भूमि संबंधी सेवाओं को पारदर्शी, कुशल और परेशानी मुक्त बनाया जाएगा। इससे नागरिकों और राजस्व अधिकारियों की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने बताया है कि पिछले वर्ष अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे की अंतिम जांच रिपोर्ट एक महीने में जारी होने की संभावना है। गुजरात में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से जांच कर रहा है।
3: एक साल पूरा होने वाला है और वो इन्वेस्टिगेशन अभी बहुत ही सक्षम से चालू है। जब भी ये इन्वेस्टिगेशन होता है और खास करके इंटरनेशनल वाला फ्लाइट है, इसको कोई भी क्वेश्चन कर सकता है। जो रिपोर्ट आता है इट विल बी अप फॉर स्क्रूटनी, कोई भी देश कर सकता है, कोई भी इंस्टीट्यूशन देश का कर सकता है। तो हमें बहुत ही सीरियसनेस के साथ, फेयरनेस के साथ, ट्रांसपेरेंट नेचर के साथ हमें इन्वेस्टिगेशन करना है।
1: सरकार ने कहा है कि देश भर में घरेलू LPG की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें।
4: पिछले दो दिन में भी तो हमने लगभग 97 लाख घरों को LPG सिलेंडर पहुंचाए और इसके अगेंस्ट जो बुकिंग थी लगभग 87,66,000 थी। जो हमारी कमर्शियल सप्लाई है अभी भी वो 70% पर है, लेकिन पिछले दो दिन में 15,400 टन से अधिक कमर्शियल LPG की सेल हुई है। पिछले दो दिन में 1,11,000 से अधिक 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल हुई।
1: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल संयुक्त अरब अमीरात का आधिकारिक दौरा किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। भारत और सिंगापुर ने रणनीतिक साझेदार के रूप में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए द्विपक्षीय सहयोग के महत्व पर बल दिया। आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराध से निपटने के लिए गठित संयुक्त कार्य समूह की 5वीं बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। संयुक्त कार्य समूह ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा करते हुए उसे कतई बर्दाश्त न करने की नीति दोहराई। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और ट्रिनिडाद टोबैगो के संबंध इतिहास, मानवीय संपर्क और साझा आकांक्षाओं का अनूठा संगम है। ट्रिनिडाद टोबैगो के अखबार में एक लेख में विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और पिछले 5 वर्षों में यह लगभग दोगुना होकर अब $35 करोड़ तक पहुंच गया है। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को आयोजित इस पर्व में शामिल होंगे। एक रिपोर्ट।
5: वर्षा इस आयोजन के प्रमुख आकर्षण रहेंगे। आध्यात्मिक अनुष्ठानों के पश्चात प्रधानमंत्री प्रभास पाटन के सद्भावना मैदान में एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बार बार हुए विनाशकारी हमलों के बावजूद सोमनाथ मंदिर आज भी स्वाभिमान और साहस के प्रतीक के रूप में अडिग खड़ा है। गौरतलब है कि 75 वर्ष पहले 11 मई को ही भारत के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने इस पुनर्निर्मित मंदिर का उद्घाटन किया था। अपर्णा खुंट, आकाश।

0: समाचार अहमदाबाद।
1: गृहमंत्री अमित शाह रविवार को बाढ़ और लू से निपटने की तैयारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता नई दिल्ली में करेंगे। बैठक में बाढ़ के पूर्वानुमान और प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ आपदाओं, विशेष रूप से बाढ़ और लू की चुनौतियों से निपटने की तैयारियों पर भी चर्चा होगी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जघन्य दुष्कर्म के मामलों में त्वरित सुनवाई, कड़ी निगरानी और पैरोल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आयोग ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों में शामिल दोषियों के लिए वर्तमान पैरोल व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा कि आयोग शीघ्र ही केंद्र सरकार को सिफारिशें सौंपेगा। इनमें दुष्कर्म, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अन्य गंभीर अपराधों के मामले में दोषी व्यक्तियों के लिए पैरोल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की जाएगी।

0: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं शबाना बेगम। शुभेंदु अधिकारी मगरीब बंगाल के पहले बीजेपी के वजीर आला होंगे। हलफ बरदारी की तकरीब कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगी। टीवीके के सरबरा सी जोसेफ विजय को कांग्रेस, वीसीके, आईयूएमएल और बाएं बाजू की पार्टियों की हिमायत हासिल हो गई है। वो कल तमिलनाडु के वजीर आला के तौर पर हलफ लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में मुनशियात की बढ़ती हुई लानत पर तशवीश का इजहार किया है। उसने रियासत की पॉलिसी में बुनियादी तब्दीली और गैर कानूनी मुनशियात की तजारत करने वाले बड़े ताजिरों को गिरफ्तार करने पर जोर दिया। भारत और सिंगापुर ने दहशतगर्दी से मुकाबला करने में मालूमात शेयरिंग को बढ़ाने से इत्तेफाक किया है। और तीरंदाजी में सिमरनजीत कौर शंघाई में आलमी कप स्टेज टू में खवातीन के रिकर्व मुकाबले के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। अब खबरें तफसील से। सीनियर बीजेपी लीडर शुभेंदु अधिकारी मगरीब बंगाल के नए वजीर आला होंगे। रियासत में बीजेपी कानून साज पार्टी में आज कोलकाता में मुनाकिदा एक मीटिंग में उन्हें लीडर मुंतखब किया गया, जिसके साथ ही रियासत के पहले बीजेपी के वजीर आला बनने के लिए उनकी राह हमवार हो गई है। मीडिया से खिताब करते हुए मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि मीटिंग में जनाब अधिकारी के नाम की तजवीज रखी गई और चूंकि कोई दूसरा नाम सामने नहीं आया, इसलिए उनके नाम को हतमी तौर पर मंजूर कर लिया गया।
1: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं।
0: कल सुबह सरकार की हलफबरदारी की तकरीब ब्रिगेड परेड ग्राउंड में मुनक्किद की जाएगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ साथ मरकजी वज़रा और बीजेपी के ज़ेर इक़्तदार रियासतों से बहुत से वजीर आला इस तकरीब में शिरकत करेंगे। चूंकि ये तकरीब रविंद्र जयंती के मौके पर मुनक्किद की जा रही है, इसलिए सकाफती परफॉर्मेंसेस भी प्रोग्राम का हिस्सा होंगी। पेश है एक रिपोर्ट।
2: आज शुभेंदु अधिकारी को भारतीय जनता पार्टी का कानून साज पार्टी का लीडर मुंतखब कर लिया गया है। वो मगरबी बंगाल के अगले वजीर आला होंगे। अधिकारी ने ममता बनर्जी को भवनीपुर में शिकस्त दी है। आज मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की सदारत में कोलकाता में हुई एक मीटिंग में, जिसमें बीजेपी के सभी मुंतखब अराकीन असेंबली ने शिरकत की, अधिकारी को लेजिस्लेटिव पार्टी का लीडर मुंतखब किया गया है। मीटिंग से खिताब करते हुए वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि मगरबी बंगाल की आवाम ने तृणमूल कांग्रेस के जरिए पैदा करदा डर और खौफ के माहौल के खिलाफ अपना मैंडेट दिया है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि हुकूमत तश्कील देने के बाद कमेटियां तश्कील दी जाएंगी जो आरजी कर और संदेश खली मामलात की छानबीन करेंगी। उन्होंने मजीद कहा कि दराजाती बदनवानी और मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस अफराद के खिलाफ भी छानबीन की जाएगी। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं महताब आलम।
0: तमिलनाडु में तमिजगा वेतरी कसगम टीवी के सी जोसेफ विजय को कल सुबह 11 बजे तमिलनाडु के वजीर आला के तौर पर हलफ दिलाया जाएगा। इससे कबल आज टीवी के चीफ ने गवर्नर राजेंद्र आर्लेकर से मुलाकात की और इत्तेहादी पार्टियों की हिमायत के दस्तावेजात पेश करके सरकार तश्कील देने का दावा पेश किया। 4 मई को असेंबली इंतखाबात के नतीजे आने के बाद सी उनकी गवर्नर के साथ तीसरी मीटिंग थी। हमारे नुमाइंदे ने खबर दी है कि सीपीआई, सीपीआईएम, बीसीके और आईयूएमएल ने टीवीके को अपनी हिमायत दी है। इसके साथ ही इत्तेहाद अब असेंबली में मतलूबा तादाद की हिमायत रखता है, जो अक्सरियत से ज्यादा है। टीवीके के 107 अरकान कानून साज असेंबली हैं, अरकान कानून साज असेंबली हैं कांग्रेस के 5, जबकि वीसीके, सीपीआई और सीपीआईएम नेज आईयूएमएल के 2-2 अरकान कानून साज असेंबली हैं। टीवीके के सरबरा ने दावा किया कि अब उन्हें 120 अरकान कानून साज असेंबली की हिमायत हासिल है। पेश है एक रिपोर्ट।
3: आज टीवीके पार्टी के लिए एक बहुत अहम दिन था। हालांकि वो अक्सरियत के साथ सरकार तश्कील देने के लिए मतलूबा तादाद हासिल करने में कामयाब रही। टीवीके की हिमायत करने वाले अफराद सड़कों के दोनों अतराफ बड़ी तादाद में ढोल ताशे बजाकर अपने मनपसंद लीडर को देखने के लिए मौजूद थे। फिल्म सरकार ब्लॉकबस्टर के हीरो हलफ लेने के बाद रियासत के वजीर आला बन जाएंगे। नामजद वजीर आला सी जोसेफ विजय लाल तिलक लगाए हुए थे, नीले रंग की जीन्स पहने हुए थे और उन्होंने बाएं हाथ पर लाल धागा बांधा हुआ था। उनका यह रूप इससे कबल के वजीर आला के मुकाबले में कतई मुख्तलिफ है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट।

0: Current Affairs. Good evening, listeners. Welcome to our program, Current Affairs. I'm Tina Jha. Today,
1: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है. प्रस्तुत है गैर फिल्मी गीतों गजलों कार्यक्रम अंजुमन.

कुछ ऐसी अदा से तेरा देखना बिना पिन पिए ही मेरा लड़खड़ाना, मुझे याद है वो गुजरा ज़माना। जी हाँ श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अंजुमन।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अंजुमन, ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत कार्यक्रम विज्ञान पत्रिका।

0: श्रोताओं नमस्कार, विज्ञान पत्रिका के संक में आपका स्वागत है।
1: कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कारवा इंडस्ट्री, मदर टेरेसा मार्ग, आजाद पार्क नियर पोस्ट ऑफिस, कैंटोनमेंट बोर्ड, वाराणसी। शहर के इस भागदौड़ और शोर शराबे से दूर क्या आप तलाश रहे हैं सुकून के कुछ पल? तो चलिए जहां प्रकृति की छांव है और लजीज जायकों का संगम, कारवां अंडर ट्री, एक ऐसा रेस्टोरेंट जहां हर निवाला कुदरत की ताजगी में घुला है। चाहे हो परिवार के साथ खास डिनर या दोस्तों संग गपशप की महफिल, हमारे खुले आसमान के नीचे और पेड़ों की ठंडी छांव में बिताया हर लम्हा यादगार बन जाएगा। शुद्धता, स्वाद और बेहतरीन सर्विस, यही है हमारी पहचान। यहाँ का सुहाना माहौल और दिलकश सजावट आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएंगे। तो आज ही आएं कारवां अंडर ट्री में और अपने शाम को बनाएं और भी हसीन। कारवां अंडर ट्री, स्वाद का सफर कुदरत के साए में, मदर टेरेसा मार्ग, आजाद पार्क नियर पोस्ट ऑफिस, कैंटोनमेंट, वाराणसी।
0: श्रोताओं, क्या आप जानते हैं अपने मस्तिष्क के बारे में? क्या है इसका विज्ञान? जी हाँ, अगर नहीं जानते तो आज के संग में हम आपको बताएंगे इसी विज्ञान के बारे में। लीजिए सुनिए वार्ता मस्तिष्क का विज्ञान। वार्ताकार हैं राजीव कुमार सिंह।
2: मानव मस्तिष्क का वजन लगभग 3 पाउंड या 1.5 किलो होता है, जो शरीर के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है, बाहरी दुनिया से प्राप्त जानकारी को इंटरप्रेट करता है। इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, इमोशन और मेमोरी मस्तिष्क द्वारा शासित कई चीजों में से कुछ हैं। मस्तिष्क कपाल के भीतर संरचित होता है, जो मुख्यतः सेरेब्रम, ब्रेन स्टेम और सेरिबेलम से बना होता है। हमारी 5 इंद्रियों के माध्यम से मस्तिष्क को जानकारी प्राप्त होती है, जैसे साइट यानी दृष्टि, स्मेल गंध, टच स्पर्श, टेस्ट स्वाद और हियरिंग यानी श्रवण। यह संदेशों को इस प्रकार से इकट्ठा करता है जो हमारे लिए अर्थपूर्ण होता है, और उस जानकारी को हमारी स्मृति मेमोरी में संग्रहित कर सकता है। हमारे विचारों, याददाश्त यानी स्मृति, वाणी, बाहों पैरों की गति और हमारे शरीर के भीतर कई अंगों के कार्य को मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित किया जाता है। हमारा तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम मुख्यतः 2 भागों में बटा होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम यह मस्तिष्क व रीढ़ की हड्डी में स्थित मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कार्ड से बना होता है। दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यह स्पाइनल नर्व से बना होता है जिसकी ब्रांचेस रीढ़ की हड्डी से निकलती हैं, साथ ही क्रेनियल नर्व्स जिसकी ब्रांचेस मस्तिष्क से निकलती हैं।

वैसे मस्तिष्क कई सारे भागों से मिलकर बना होता है। दिमाग के सभी हिस्से मिलकर कार्य करते हैं, लेकिन हर भाग की अपनी खास जिम्मेदारी होती है। मस्तिष्क को मुख्यतः तीन भागों में बांटा जा सकता है। अग्र मस्तिष्क, जिसे सेरिब्रम, थैलमस और हाइपोथैलमस में बांटा जा सकता है। दूसरा है मध्य मस्तिष्क, जो ब्रेन स्टेम का ऊपरी हिस्सा नलिका के आकार का होता है। तीसरा पश्चिम मस्तिष्क, सेरिबेलम, पॉन्स या मेडुला ऑब्लॉन्गेटा। अग्र मस्तिष्क मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा और सबसे विकसित हिस्सा होता है। यह कुल मस्तिष्क का 2/3 भाग होता है। अग्र मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम 2 गोलार्धों में बटा होता है और बुद्धि, स्मृति, सोच का केंद्र है। अग्र मस्तिष्क के 2 गोलार्ध कार्सम कालोसम नामक संरचना से जुड़े होते हैं, जो बाएं गोलार्ध से शरीर के दाएं भाग को और दाएं गोलार्ध से बाएं भाग को नियंत्रित करता है। हालांकि कार्य में विशेषीकरण होता है, फिर भी दोनों गोलार्ध सहयोग से कार्य करते हैं। बाएं गोलार्ध के क्या कार्य हैं? यह तार्किक सोच, भाषा, गणित और विश्लेषणात्मक कार्यों का केंद्र है। बोलना, पढ़ना, लिखना, क्रमबद्धता और तथ्यों पर आधारित निर्णय मुख्य रूप से संसाधित होते हैं। दायां गोलार्ध के कार्य, यह रचनात्मकता, स्थानिक बोध, पैटर्न पहचान, भावनाएं, संगीत और समग्र सोच से जुड़ा है। चेहरों की पहचान, कल्पना, अंतर्ज्ञान और दीर्घ स्थानिक क्षमताएं यहाँ प्रमुख कार्य हैं। ये विभाजन पूर्ण नहीं है। अधिकांश जटिल कार्य दोनों गोलार्ध के सहयोग से होते हैं। ब्रेन स्टेम के सबसे ऊपरी हिस्से को मध्य मस्तिष्क कहा जाता है, जो कुछ प्रत्यावर्ती रिफ्लेक्स क्रियाओं को नियंत्रित करता है। आंखों की मूवमेंट एवं अन्य वॉलंटरी मूवमेंट के नियंत्रण में शामिल सर्किट का हिस्सा है। तीसरा भाग जो मस्तिष्क का होता है, वह ब्रेन स्टेम का शेष हिस्सा, रीढ़ की हड्डी का ऊपरी भाग व रिंकल टिश्यू से युक्त सेरिबेलम होता है, जो संतुलन व गति में समन्वय करता है। मस्तिष्क की सबसे बाहरी कोशिकाओं की परत को कार्टेक्स कहते हैं, जहां सोच व ऐच्छिक गति की शुरुआत होती है। मस्तिष्क को कई क्रियात्मक इकाइयों यानी लोब्स में भी बांट सकते हैं। पहला है फ्रंटल लोब। इसके कार्य के अंतर्गत ध्यान, एकाग्रता, सेल्फ मॉनिटरिंग, ऑर्गेनाइजेशन, बोलना, क्षमताओं में सीमाओं में के बारे में जागरूकता, व्यक्तित्व, मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी, भावनाएं, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्लानिंग, जजमेंट आदि। इस पर लगी चोट से व्यक्ति की भावनाएं, आवेगों और व्यवहार नियंत्रित क्षमता प्रभावित होती है, साथ ही बोलने में कठिनाई महसूस होती है। दूसरा टेम्पोरल लोब। इसके कार्य के अंतर्गत मेमोरी, भाषा की समझ, सिक्वेंसिंग, सुनवाई, ऑर्गेनाइजेशन। इस पर चोट लगने से व्यक्ति को संचार या स्मृति में कठिनाई होती है। तीसरा पेरिएटल लोब के कार्य, स्पर्श अनुभूति, गहराई बोध, साइज, शेप, रंग की पहचान, दृष्टिबोध। यहाँ चोट लगने से पांचों इंद्रियों की कार्य प्रणाली प्रभावित होती है। चौथा है ऑक्सिपिटल लोब के कार्य, यह दृष्टि से संबंधित होता है। यहाँ चोट से शेप और साइज को देखने और समझने में परेशानी होती है। पांचवा ब्रेन स्टेम, जो कि मध्य मस्तिष्क का हिस्सा है। सांस लेना, उत्तेजना, चेतना, हृदय गति, नींद व जागने का चक्र यहीं से नियंत्रित होता है। यह शरीर के अनैच्छिक कार्यों को नियंत्रित करता है, जो जीवित रहने हेतु जरूरी है, जैसे सांस व हृदय की गति। छठा है सेरिबेलम के कार्य, बैलेंस और कोऑर्डिनेशन, स्किल्ड मोटर एक्टिविटी, दृष्टिबोध। यहाँ चोट लगने पर संतुलन, मूवमेंट व कोऑर्डिनेशन प्रभावित होता है। मस्तिष्क की क्या कार्य प्रणाली है? तो मस्तिष्क हमारा जो है 100 अरब न्यूरॉन का बना होता है। मस्तिष्क न्यूरॉन नामक कोशिकाओं से कार्य करता है, जिसमें सेल बॉडी, डेंड्राइट्स जो संदेश प्राप्त करने का इकाई होती है, और एक्सॉन जो संदेश भेजने का मुख्य भाग शामिल है। न्यूरॉन्स सिनाप्सिस नामक जंक्शन पर विद्युत और रासायनिक संकेतों न्यूरोट्रांसमीटर्स के माध्यम से संवाद करते हैं। जब कोई उत्तेजना आती है तो न्यूरॉन में विद्युत आवेश उत्पन्न होता है, जो एक्सॉन से सिनाप्सिस तक पहुंचता है और न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करता है। यह प्रक्रिया इतनी तेज होती है कि हम तुरंत प्रतिक्रिया दे पाते हैं। उदाहरण, गर्म तवा पर हाथ लगने पर मस्तिष्क तुरंत हाथ हटाने का संदेश भेजता है। ब्रेन द्वारा भावनाओं का नियंत्रण, मस्तिष्क विभिन्न प्रकार के न्यूरोट्रांसमीटर और हार्मोन्स जारी कर भावनाओं को नियंत्रित करता है। ये रसायन मूड, खुशी,

0: तनाव और सामाजिक बंधनों को प्रभावित करते हैं। ये हाइपोथैलेमस और पीयूष ग्रंथि से उत्पन्न होकर न्यूरॉन्स के बीच संदेशवाहक के रूप में कार्य करते हैं। कुछ प्रमुख हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर के नाम जैसे डोपामाइन, यह आनंद, प्रेरणा और पुरस्कार की भावना पैदा करता है। लक्ष्य प्राप्ति पर यह रिलीज होता है। सेरोटोनिन मूड स्थिर रखता है, अवसाद कम करता है। नींद और भूख और संतुष्टि नियंत्रण जब होती है तब यह सिक्रिट होता है। एंडोर्फिन तीसरा प्राकृतिक दर्द निवारक है, तनाव कम करता है, खुशी देता है, व्यायाम या हंसी पर रिलीज होता है। चौथा है ऑक्सीटोसिन, यह प्रेम हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है। यह विश्वास व बंधन बढ़ाता है, स्पर्श या सामाजिक संपर्क पर रिलीज होता है। तनाव का मस्तिष्क के कार्यप्रणाली पर क्या प्रभाव पड़ता है? तनाव लगातार या ज्यादा हो तो दिमाग की संरचना, कार्य और कार्य क्षमता पर स्पष्ट नुकसान पहुंचता है। यह सिर्फ मूड खराब करने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि स्मृति, निर्णय क्षमता और भावनात्मक संतुलन पर सीधा असर डालता है। तनाव में शरीर कोर्टिसोल और अन्य स्ट्रेस हार्मोन ज्यादा छोड़ता है, जो ब्रेन की न्यूरोकेमिकल बैलेंस खराब कर सकते हैं। लंबे समय तक तनाव में रहने की स्थिति में एचपीए एक्सिस, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, एड्रिनल ओवर एक्टिव होता है, जिसे दिमाग लड़ो या भागो मोड में रहने लगता है। लंबे समय तक तनाव में मस्तिष्क का हाइपोकैम्पस, जो कि स्मृति व सीखने का केंद्र होता है, उसका आकार कम हो जाता है, जिससे याददाश्त कमजोर हो सकती है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, यह निर्णय, ध्यान व आवेग नियंत्रण का केंद्र है, से दूसरी कार्य क्षमता प्रभावित होती है, जिससे गलत निर्णय, जल्दबाजी और आवेगी व्यवहार बढ़ते हैं। एमिगडाला भय व चिंता का केंद्र है, जो तनाव से अति सक्रिय होकर डर, चिंता और पैनिक जैसी भावनाएं बढ़ाता है। तनाव से संज्ञानात्मक और भावनात्मक असर पड़ने से लोगों में अल्माइजर, डिमेंशिया जैसी बीमारियों का जोखिम रहता है। साथ ही लंबे समय तक तनाव के कारण निर्णय लेने की क्षमता 40% तक कम हो जाती है। तनाव के चलते मानसिक बीमारियां, एंजाइटी, डिप्रेशन, बीपीटी आदि को बढ़ा सकती है और मस्तिष्क के उम्र को बढ़ा सकती है। मस्तिष्क को स्वच्छ रखने के क्या उपाय हैं? तो मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के कई उपाय हैं। आजकल के आधुनिक जीवन शैली में ब्रेन को स्वस्थ रखना अत्यंत जरूरी है। इसके लिए कुछ सरल लेकिन प्रभावी उपाय अपनाए जा सकते हैं, जैसे नंबर वन, नियमित व्यायाम। रोजाना 30 मिनट की वॉक, योग, प्राणायाम या एरोबिक एक्सरसाइज जैसे तैराकी से ब्रेन को ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है और नए न्यूरॉन्स बनते हैं, जिससे स्मृति मजबूत होती है, डिमेंशिया का खतरा कम होता है, हृदय गति बढ़ने से ब्रेन हेल्दी रहता है। दूसरा है संतुलित आहार। ओमेगा 3 युक्त मछली, अलसी का बीज, चिया सीड, हरी सब्जियां, फल, नट्स, अखरोट और विटामिन ई वाले खाद्य पदार्थ जैसे पालक ब्रेन कोशिकाओं को मजबूत बनाते हैं। तीसरा है अच्छी नींद। रात में 7 से 9 घंटे की गहरी नींद लें, जो ब्रेन से विषाक्त पदार्थ साफ करती है। नींद कमी से चिंता व अवसाद बढ़ता है। नियमित स्लीप साइकिल बनाए रखें। चौथा है मानसिक उत्तेजना। पजल, सुडोकू, शतरंज, नई भाषा सीखना या पढ़ना ब्रेन को सक्रिय रखता है। ये गतिविधियां न्यूरल कनेक्शन मजबूत करती हैं। रोजाना नया शौक अपनाएं। पांचवा है तनाव प्रबंधन। ध्यान या मेडिटेशन से तनाव कम होता है, जो ब्रेन को स्वस्थ रखता है। सोशल कनेक्शन बनाएं, स्क्रीन टाइम को सीमित करें। इस तरह से बहुत सारे उपाय करके आप अपने ब्रेन को हेल्दी और वास्तविक समाज के अनुरूप रख सकते हैं।
1: विज्ञान पत्रिका में आगे हम आपको सुनाते हैं अंबिका सिंह से चंद्र सिंह की भेंट वार्ता। विषय है खाद्य रसायन और हमारी सेहत।
2: हम हर रोज खाना खाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी थाली में रखा भोजन वास्तव में एक अद्भुत मिश्रण है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं खाद्य रसायन की, यानी फूड केमिस्ट्री की। और इस विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं अंबिका सिंह जी, आप उदय प्रताप इंटर

0: कॉलेज में रसायन विज्ञान में प्रवक्ता के तौर पर कार्यरत हैं। हमारे इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है सर।
1: धन्यवाद।
0: सबसे पहले हमारे श्रोताओं को आप बताएं कि जो खाद्य रसायन होता है ये क्या है, इससे हम क्या समझते हैं?
1: खाद्य रसायन यानी फूड केमिस्ट्री रसायन विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत बायोलॉजिकल और नॉन बायोलॉजिकल जो घटक होते हैं उनके गुणों की व्याख्या, उनकी संरचना, उनकी प्रॉपर्टी, किस तरह से वो केमिकली रिएक्ट करते हैं, इन सब का अध्ययन हम फूड केमिस्ट्री के अंतर्गत करते हैं।
0: अच्छा, तो अगर हम बात करें हमारे रोजमर्रा के जीवन की या रोजमर्रा के जो भोजन है उसमें केमिस्ट्री जो रसायन विज्ञान है वो कैसे छिपा हुआ है?
1: मैं आपको बताना चाहूंगा कि सुबह से लेकर के शाम तक
0: जी
1: जो भी चीजें हमारे सामने घटित होती हैं सब में केमिस्ट्री इन्वॉल्व है। जैसे पौधे अपने भोजन का निर्माण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से करते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधों के पत्तियों में क्लोरोफिल नामक एक केमिकल पाया जाता है जिसकी उपस्थिति में ये पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की क्रिया से सनलाइट की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करते हैं जिसको हम लोग उपयोग में लाते हैं। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण एक प्रोसेस है जिसके तहत पौधे अपने भोजन का निर्माण करते हैं। दूसरी बात, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूं कि डेली हम लोग चाय पीते हैं लेकिन चाय के अंदर भी केमिस्ट्री छिपी हुई है
0: जी।
1: तो आज हम लोग हम आपके समक्ष चाय की केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे। चाय जब पानी को हम गर्म करते हैं, चाय की पत्ती डालते हैं, तो चाय की पत्ती से टैनिन नामक एक केमिकल निकलता है। साथ ही साथ चाय में एक केमिकल पाया जाता है कैफीन। कैफीन निकलता है जो पानी में डिजॉल्व होता है। कैफीन हमारे नर्वस सिस्टम को एक्साइट करता है। साथ ही साथ चाय की पत्ती में वोलाटाइल एरोमा कंपाउंड भी बाहर निकलते हैं जो चाय को खुशबू प्रदान करते हैं जो पूरे कमरे में फैलती है। चाय में जैसे ही हम दूध मिलाते हैं वो कलर चेंज करता है क्योंकि दूध में कैसीन नामक एक प्रोटीन पाया जाता है। ये कैसीन टैनिन से कंबाइन करता है जिसके तहत कलर का परिवर्तन होता है। लेकिन अगर हम चाय को बहुत देर तक उबाल दें तो आप देखेंगे चाय का जो टेस्ट है बिगड़ जाता है। चाय का टेस्ट क्यों बिगड़ता है? क्योंकि टैनिन की मात्रा बढ़ जाती है। ऑक्सीडेशन एक प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया बढ़ जाती है, ठीक है, जिससे चाय में बिटरनेस आ जाती है और चाय का टेस्ट आपका खराब हो जाता है। इस तरह से रोजमर्रा के जीवन में जो हम कपड़े पहनते हैं, कपड़ा क्या है? कपड़ा एक केमिकल है, पॉलिएस्टर है। पॉलिएस्टर एक केमिकल कंपाउंड है
0: जी,
1: जो कि एक पॉलीमर है, ठीक है। पॉलीथीन डेली हम यूज करते हैं जो कि एक केमिकल है, वो एथिलीन से बनता है। तो शुरू से लेकर के लास्ट तक जो भी चीजें हम खाते हैं हर प्रोसेस में केमिस्ट्री आपकी इन्वॉल्व होती है।
0: तो सिर्फ हम मानवों की बात ना करें, अगर जो पेड़ पौधे हैं वो भी अपने भोजन का निर्माण जो करते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री जो है वो मौजूद रहती है। अच्छा, यहां हमारे श्रोताओं को बताएं आप कि जो भोजन के पोषण है और उनके जो रासायनिक घटक हैं उसके बीच में कोई संबंध है क्या?
1: बिल्कुल, बहुत गहरा रिलेशनशिप है
0: जी।
1: भोजन के जो मेन कंपोनेंट होते हैं
0: जी
1: दो प्रकार के होते हैं, एक माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है और एक माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है। माइक्रो मतलब बृहत मॉलिक्यूल। बृहत मॉलिक्यूल में जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, और जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें आपके विटामिन्स हैं और मिनरल्स हैं। सबके अपने अपने कार्य हैं। सपोज करिए जैसे कार्बोहाइड्रेट में आपका जो है, जो चावल आप खाते हैं चावल में स्टार्च होता है
0: जी,
1: और चीनी में आपका सुक्रोज होता है। दोनों में फर्क क्या है? जो चीनी है उसमें कार्बोहाइड्रेट के सिंपल मॉलिक्यूल हैं, जैसे उसको खाएंगे तो तुरंत आपको एनर्जी मिलेगी, तुरंत ग्लूकोज मिलेगा, ठीक है, जल्दी हमको ऊर्जा प्राप्त होगी। लेकिन जब हम स्टार्च चावल के रूप में खाते हैं तो चूंकि स्टार्च क्या है, बृहत मॉलिक्यूल है, वो धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है और उससे हमको धीरे धीरे ऊर्जा मिलती है
0: जी।
1: उसी तरह से प्रोटीन, प्रोटीन हमारे पूरे बॉडी का एक प्रकार से कहिए कि जैसे हम एक मकान बनाते हैं, ठीक है, तो उस मकान में जो आपका ईंट है, ठीक है, वो प्रोटीन का काम करता है। बॉडी का निर्माण, पूरे बॉडी का ग्रोथ जो होता है प्रोटीन के माध्यम से होता है
0: जी।
1: फैट जो हम लेते हैं, फैट से हमको ऊर्जा मिलती है। सबका एक निश्चित अमाउंट होना चाहिए, रेशियो भी निश्चित होना चाहिए, जैसे कार्बोहाइड्रेट कम से कम 50 से 60%, प्रोटीन 15 से 20%, और जो फैट है वो 20 से 30%। लेकिन जो विटामिन्स और मिनरल्स हैं उनकी मात्रा थोड़ी कम होती है, लेकिन पूरा केमिकल रिएक्शन विटामिन और हार्मोन्स वगैरह ही नियंत्रित करते हैं।
0: अच्छा, आपने माइक्रो

0: न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताया, जिसमें आपने बताया कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट के बारे में बताया। मैं यहां पे ये जानना चाहूंगा कि जो हमारे शरीर में प्रोटीन हो गए, कार्बोहाइड्रेट हो गए और फैट, इनका महत्व क्या है हमारे शरीर के लिए?
1: कार्बोहाइड्रेट जिसको हम पॉलीसेक्राइड कहते हैं, मोनोसेक्राइड कहते हैं, कई वैरायटी के होते हैं
0: जी,
1: ठीक है। और ये जो आपके कार्बोहाइड्रेट होते हैं हमारे शरीर के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं, एनर्जी का मेन स्रोत कार्बोहाइड्रेट है। प्रोटीन जो होता है वो बॉडी को बिल्डअप करता है, बॉडी के विकास के लिए उसकी आवश्यकता पड़ती है
0: जी, जी।
1: लेकिन एक सबकी एक लिमिट होनी चाहिए, नियंत्रित मात्रा में उसको खाने से उसका फायदा हमको ज्यादा होगा। अगर उसको हम कम मात्रा में लेते हैं, डाइट में कम लेते हैं, तो उससे तमाम प्रकार की बीमारी भी आपकी उत्पन्न होती है
0: जी। अच्छा, यहाँ पे आपने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में हमारे श्रोताओं को बताया था
1: जी,
0: जिसमें आपने बताया था कि विटामिन और मिनरल्स भी हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, तो ये विटामिन और मिनरल्स ये कैसे काम करते हैं हमारे श्रोताओं को बताएं आप इसके बारे में।
1: जैसे विटामिन सी है
0: जी,
1: विटामिन सी एक ऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है जो कि एस्कार्बिक एसिड, साइट्रिक एसिड में पाया जाता है, ठीक है। हमारे शरीर में फ्री रेडिकल निकलते हैं जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, लेकिन विटामिन सी का प्रयोग करने पर वो ऑक्सीडेंट काम करता है और वो फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करता है
0: जी,
1: ठीक है, जिससे वो केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करता है
0: जी।
1: उसी तरह से आपके जो आपके मिनरल्स होते हैं, जैसे मिनरल में आयरन हो गया, आयरन किसमें है, हीमोग्लोबिन में, तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है
0: जी।
1: अगर हीमोग्लोबिन की मात्रा हमारे शरीर में कम हो जाती है, यानी आयरन की मात्रा कम हो जाती है, तो ऑक्सीजन का परिवहन कम होता है, जिससे आदमी में थकावट महसूस होती है, कमजोरी महसूस होती है।
0: हमारे श्रोताओं को आप जरा बताएं कि केमिस्ट्री के नजरिए से एक संतुलित आहार जो होता है वो क्या है, उसे हम कैसे समझें?
1: केवल भोजन को ही आप संतुलित आहार नहीं कर सकते हैं
0: जी,
1: भोजन के जो कंपोनेंट हैं उसका निश्चित प्रोपोर्शन होना उसमें आवश्यक है। तो जो बैलेंस डाइट होती है उसमें आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल्स, ये उसके मेन घटक हैं, और इनका जो कंपोजिशन है फिक्स रेशियो में उसको लेना चाहिए
0: जी।
1: तो जैसा कि हमने पीछे बताया आपको कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो 50-60% होना चाहिए, जो प्रोटीन है वो 15-20% होना चाहिए, फैट 15-20% होना चाहिए, और जो माइक्रोन्यूट्रिएंट हैं, ठीक है, उनकी मात्रा बहुत ही कम होती है
0: जी।
1: और ये विटामिन सी वगैरह जैसे आपका साइट्रिक एसिड और नींबू वगैरह में पाया जाता है, तो उसका सेवन भी बीच बीच में करना चाहिए
0: जी। अच्छा, इसके जो रेशियो आपने बताया
1: जी,
0: क्या उम्र के हिसाब से इसके रेशियो में कुछ बदलाव भी करना चाहिए, या फिर अगर कोई खिलाड़ी है तो वो अपने हिसाब से इसको, उसके हिसाब से इसमें कुछ बदलाव रहना चाहिए, या फिर कोई ऑफिस जाने वाला हो उसके लिए कुछ अलग तरह का डाइट में कुछ परसेंटेज की बदलाव हम कर सकते हैं?
1: जैसे खिलाड़ी है
0: जी,
1: तो अपना बॉडी बिल्डअप करता है
0: जी,
1: तो बॉडी बिल्डअप के लिए प्रोटीन ज्यादा नेसेसिटी होती है, तो प्रोटीन की मात्रा थोड़ी उसको बढ़ानी चाहिए जिससे उसके मसल्स वगैरह ज्यादा डेवलप होते हैं
0: जी,
1: ठीक है। लेकिन हर चीज की मात्रा नियंत्रण में होनी चाहिए। अब जैसे हम स्टार्च अगर अधिक खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट अधिक खाते हैं, तो जब कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक हो जाएगी तो उसका फैट में कन्वर्जन हो जाएगा
0: जी,
1: और जब फैट में कन्वर्जन हो जाएगा तो बॉडी का मोटापा बढ़ जाएगा, ठीक है, साथ ही साथ और भी बीमारियां वहां उत्पन्न हो सकती हैं
0: जी। आजकल अगर हम देखें, जब हम भोजन की बात करते हैं, तो एक तो प्राकृतिक तौर पर जो भोजन हमें मिलता है वो उसकी रंगत अलग होती है, वो हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक होता है, साथ ही साथ भोजन को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए, वो लोगों के बीच में और भी सुंदर दिखे, कई तरह के एडिटिव्स उसमें मिलाए जाते हैं, जिसमें कई बार जो है प्राकृतिक उसमें फ्लेवर ना देकर के कोई केमिकल कंपाउंड मिला दिया जाता है, और कई बार रंग उसको देने के लिए केमिकल कंपाउंड कुछ ऐसे केमिकल्स उसमें मिलाए जाते हैं, तो ये क्या होते हैं और इसकी आवश्यकता क्यों है?
1: एडिटिव जो आपका भोजन खाते हैं, ठीक है, उसकी बनावट को चेंज कर देते हैं, उसमें फ्लेवर डाल दीजिए तो उसका जो है फ्लेवर आ जाता है, कलर डालते हैं जिससे वो अट्रैक्टिव लगे
0: जी।
1: तो तमाम प्रकार के केमिकल हैं जिसका प्रयोग हम एडिटिव के रूप में करते हैं। आजकल प्रोसेस्ड फूड में एडिटिव डाले जाते हैं, इनका उद्देश्य रंग प्रदान करना, स्वाद प्रदान करना, टेक्सचर देना, सेल्फ लाइफ सुधारना है। जैसे एमएसजी क्या करता है, ये हमारे जो जीव है उसमें उमामी रिसेप्टर एक्टिवेट करता है
0: जी,
1: ब्रेन को प्लेजर सिग्नल देता है, इसलिए प्रोसेस्ड फूड एडिक्टिव लग सकता है।
0: अच्छा, आजकल भोजन को जो है जब हम खाने की बात करते हैं तो कई बार देखते हैं कि जब

0: के लेबल को हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा रहता है कि प्रिजर्वेटिव एडेड या प्रिजर्वेटिव्स, ये शब्द लिखा रहता है। तो हमारे श्रोताओं को बताएं कि ये प्रिजर्वेटिव्स जो हैं वो क्या हैं और ये भोजन में इनका क्या उपयोग है, क्या ये खराब होने से बचाते हैं या फिर ये क्या करते हैं?
1: भोजन को खराब होने से बचाने के लिए जी उसमें हम प्रिजर्वेटिव का प्रयोग करते हैं।
0: जी
1: जैसे हम अचार बनाते हैं तो अचार में साल्ट डालते हैं, तो साल्ट क्या करता है, ये नमक सोडियम क्लोराइड, तो साल्ट जो है वो अचार में जो मॉइस्चर है, जो नमी है, उसको एब्जॉर्ब करता है
0: जी।
1: क्योंकि अगर मॉइस्चर की मात्रा अधिक रहेगी तो उसमें जो फंगस है उनका ग्रोथ ज्यादा होगा
0: जी।
1: ठीक है, जो तमाम प्रकार के अचार मुरब्बे बनाए जाते हैं उसमें एस्टिक एसिड का प्रयोग करते हैं जो कि फूड प्रिजर्वेटिव का काम करता है। तो ऐसे तमाम केमिकल भी यूज में आते हैं जो फूड का संरक्षण करते हैं, उसकी सुरक्षा करते हैं, उसको कलर देते हैं
0: जी। तो क्या ये जो जितने भी प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, कई बार ये कुछ ऐसे केमिकल्स भी होते हैं, ऐसे रसायन भी होते हैं जो कि हमारे खाने को सुरक्षित रखते हैं, तो क्या ये सभी जो प्रिजर्वेटिव्स हैं ये सभी सुरक्षित हैं या किन्हीं से हमें हमारे स्वास्थ्य को नुकसान भी है?
1: देखिए, हर चीज की एक लिमिट होती है
0: जी।
1: जब किसी चीज को हम लिमिट में लेंगे तो हमको सुरक्षा प्रदान करेगी, लेकिन जब कोई चीज लिमिट से ज्यादा हो जाती है तो वो हमारे लिए हानिकारक भी साबित होती है
0: जी। अच्छा, हम जब बात करते हैं खाने की तो अक्सर एक चिंता बनी रहती है, क्या किसी खाने के सामान में कुछ मिला हुआ तो नहीं है? तो अक्सर लोग कहते हैं कि इसमें खाद्य मिलावट है, तो ये खाद्य मिलावट जो होते हैं वो क्या होते हैं और ये कितने खतरनाक होते हैं?
1: खाद्य मिलावट बहुत ही खतरनाक होते हैं
0: जी।
1: ये आदमी अपने प्रॉफिट के लिए, पैसा कमाने के लिए जानबूझकर उसमें मिलावटी पदार्थ मिला देता है
0: जी।
1: जैसे सिंपल सी बात देखिए, दूध की बात हम करते हैं, दूध में पानी मिला देते हैं, डिटर्जेंट मिला देते हैं, ठीक है, जैसे पनीर है, पनीर में हम स्टार्च मिला देते हैं, तो इस तरह से मसाले तमाम जो आपके आते हैं
0: जी,
1: जैसे हल्दी है, हल्दी में हम पीला कलर देने के लिए लेड क्रोमेट मिला देते हैं
0: जी।
1: अब ये जो लेड क्रोमेट है उसमें जो लेड है, लेड हमारे शरीर में जाता है और ये वाटर इनसॉल्युबल, पानी में अघुलनशील होता है और ये बॉडी में जाकर के स्टोर होता है, बाद में वो स्टोन पत्थर के रूप धारण करता है जिसको डॉक्टर काट के निकालते हैं और फालतू उसमें पैसा भी खर्च होता है
0: जी।
1: ये बहुत ज्यादा उसमें जो मेटल वगैरह का हम यूज करते हैं, ठीक है, तो ये मेटल वगैरह भी हमारे लिए हानिकारक साबित होते हैं
0: जी।
1: मिर्च में ब्रिक पाउडर मिला देते हैं
0: जी। घर में हम तमाम मसालों का प्रयोग करते हैं, जैसे हल्दी हो गया या मिर्च हो गया या फिर दूध ही हो गया, तो इसमें जो आम मिलावट है उसको हम कैसे पहचाने, इसकी पहचान जो है वो घर में कैसे की जा सकती है?
1: जैसे पहले हम दूध की बात करते हैं
0: जी,
1: तो उसको हम कई तरह से घर में दूध की पहचान कर सकते हैं। तो पहला तो ये है कि अगर एक प्लेन सरफेस पर दूध की एक ड्रॉप गिराई जाए और वो अपना लकीर छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आता हो तो मान के चलिए कि दूध आपका शुद्ध है, लेकिन अगर वो फास्टली बह जाए और अपना कोई छाप नीचे न छोड़े
0: जी,
1: इट मीन्स उसमें पानी मिला हुआ है। दूसरा, दूध में हम स्टार्च डालते हैं, स्टार्च की पहचान के लिए हम आयोडीन टिंचर का प्रयोग करते हैं, आयोडीन में स्प्रिट इथाइल अल्कोहल डालते हैं, उसको आयोडीन टिंचर कहते हैं, घाव साफ करने के भी काम आता है
0: जी।
1: तो अगर उसमें स्टार्च मिला है तो जैसे ही उसमें एक ड्राफ हम आयोडीन टिंचर डालेंगे तो अपना ब्लू कलर वहां डेवलप कर देगा
0: जी,
1: जिससे हमको मालूम चल जाएगा इसमें मिलावट है। दूध में डिटर्जेंट का प्रयोग करते हैं, दूध को लेकर के उसको खूब हिलाइए, सेक करिए, तो उसमें देखेंगे झाग बनेगी, और अगर झाग काफी समय तक बनी हुई है तो इसका मतलब उसमें डिटर्जेंट भी मिलाया हुआ है
0: जी। जी
1: जी। मिर्च की बात करते हैं तो मिर्च में ईट का पाउडर डाल देते हैं, तो जैसे ही उसको मिर्च को लीजिए, पाउडर पिसा हुआ, उसको आप पानी में डालिए और अगर उसमें ईंट का पाउडर है तो तुरंत वो नीचे बैठ जाएगा
0: जी,
1: जिससे आपको मालूम चल जाएगा कि उसमें आपका ईंट का पाउडर मिला हुआ है
0: जी।
1: हल्दी में जो लेड क्रोमेट मिलाते हैं, मेटानिल रेड मिलाते हैं, सुडान रेड मिलाते हैं, जो कि डाई है, ये जो डाई है जो कि बहुत ही खतरनाक होते हैं
0: जी,
1: जो हमारे जैविक क्रियाओं को प्रभावित करते हैं, हमारी किडनी को फेलोर करते हैं, लीवर को डैमेज करते हैं, पता नहीं चलता लेकिन बाद में धीरे धीरे ये प्रोसेस चलता रहता है और वो हमारी किडनी वगैरह को डैमेज करते हैं
0: जी।
1: इस तरह से आज की डेट में मिलावट हमारे शरीर के लिए, हमारे भोज्य पदार्थों के लिए बहुत ही खतरनाक है
0: जी। अंबिका सिंह जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और

0: खाद्य रसायन से संबंधित इतनी सारी जानकारियां हमारे श्रोताओं के साथ आपने साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कारवा इंडस्ट्री, मदर टेरेसा मार्ग, आजाद पार्क, नियर पोस्ट ऑफिस, कैंटोनमेंट बोर्ड, वाराणसी।
3: शहर के इस भागदौड़ और शोर शराबे से दूर क्या आप तलाश रहे हैं सुकून के कुछ पल? तो चलिए, जहां प्रकृति की छांव है और लजीज जायकों का संगम, कारवां अंडर ट्री, एक ऐसा रेस्टोरेंट जहां हर निवाला कुदरत की ताजगी में घुला है। चाहे हो परिवार के साथ खास डिनर या दोस्तों संग गपशप की महफिल, हमारे खुले आसमान के नीचे और पेड़ों की ठंडी छांव में बिताया हर लम्हा यादगार बन जाएगा। शुद्धता, स्वाद और बेहतरीन सर्विस, यही है हमारी पहचान। यहाँ का सुहाना माहौल और दिलकश सजावट आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएंगे। तो आज ही आएं कारवां अंडर ट्री में और अपने शाम को बनाएं और भी हसीन। कारवां अंडर ट्री, स्वाद का सफर कुदरत के साए में, मदर टेरेसा मार्ग, आजाद पार्क, नियर पोस्ट ऑफिस, कैंटोनमेंट, वाराणसी।
1: विज्ञान पत्रिका के संक में आज इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विज्ञान पत्रिका। जी, आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं पंडित जसराज का गायन। प्रस्तुत है इनका गाया राग बागेश्री।

0: शास्त्र सिंह कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे गायन। कलाकार थे पंडित जसराज। आज आपने सुना इनका गाया राग बागेश्वरी। आपके साथ तबले पर संगत की थी केदार पंडित ने। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। रात के 11 बजने को हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। कोलकाता में आज उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को निर्विरोध चुना गया।
2: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
1: श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत ऐतिहासिक है।
2: 100 साल की वैचारिक यात्रा के बाद गंगोत्री से गंगा सागर तक हर जगह पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। हम सब के लिए बहुत आनंद है। 1950 से जो विचार की यात्रा को लेकर हम निकले और जिसके नेतृत्व में निकले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व, उनकी ही जन्मभूमि में आज 2026 में श्यामा प्रसाद जी की ही पार्टी की सरकार बन रही है।
1: शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदर्श पर राज्य का विकास करेगी। उधर तमिलनाडु में एनडीए गठबंधन के सहयोगी एएमएम के प्रमुख टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेरकर से मुलाकात की और एआईएडीएम के महासचिव एडापाडी के पलानीस्वामी को सरकार बनाने के लिए अपना आधिकारिक समर्थन पत्र सौंपा। दिनाकरन ने राज्यपाल को सौंपे पत्र में स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी मन्नारगुड़ी से नवनिर्वाचित एकमात्र विधायक एस कामराज के समर्थन के साथ पलानीस्वामी के दावे का समर्थन करती है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि समाचार चैनलों ने यह खबर फैला दी थी कि उनकी पार्टी टीवीके का समर्थन कर रही है। उन्होंने राज्यपाल से मामले की गहन जांच करने की शिकायत की है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने उन्हें आगे की कार्रवाई का आश्वासन दिया है। केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों और उपचुनावों के लिए सूचकांक कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट ईसीआई नेट ऐप पर जारी की है। सूचकांक कार्ड में उम्मीदवारों, मतदाताओं, डाले गए वोटों, गिने गए वोटों, पार्टीवार और उम्मीदवारवार वोटों सहित विभिन्न डेटा दिए गए हैं। इसे चुनाव नतीजों की घोषणा के 72 घंटों के रिकॉर्ड समय में उपलब्ध करा दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरों पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा गया है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। न्यायालय की पीठ ने हाल ही में मादक पदार्थों की लत के कारण एक महिला के 5 बेटों को खोने की घटना का संज्ञान लिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए द्वारा जांच किए जा रहे 10 से 15 लंबित मामलों की सुनवाई के लिए कम से कम एक विशेष अदालत गठित की जाए। न्यायालय ने कहा कि विशेष न्यायालय का गठन 1 महीने के भीतर किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जघन्य दुष्कर्म के मामलों में त्वरित सुनवाई, कड़ी निगरानी और पैरोल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आयोग ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों में शामिल दोषियों के लिए वर्तमान पेरोल व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा कि आयोग शीघ्र ही केंद्र सरकार को सिफारिशें सौंपेगा। सरकार ने कहा है कि देश में घरेलू एलपीजी की सुचारू आपूर्ति जारी है।